मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा के सभी श्रोताओं को नंदिता चतुर्वेदी का नमस्कार, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी ग्वालियर है। सुबह के 6 बजने को हैं। समाचार अब से बस थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले प्रसारण।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में

0: मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना का श्री गणेश हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस देशगान से।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में ये देश गान। वंदना की अगली प्रस्तुति अब लीजिए सुनिए, वेणुगोपाल गोस्वामी एवं साथियों के स्वर में ये कृष्ण भजन।

अभी आप सुन रहे थे वेणुगोपाल गोस्वामी एवं साथियों के स्वर में ये कृष्ण भजन भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अब लीजिए सुनिए बालाजी राजेंद्र सिंह के स्वर में एक भजन।

बालाजी, राजेंद्र सिंह के स्वर में अभी आपने सुना ये सबद। इस सबद की प्रस्तुति के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में एक भजन।

अभी आप सुन रहे थे भजन स्वर्ण उप जलोटा कथा। अब आज की वंदना का समापन हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस कृष्ण आरती के साथ।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर किशोर अरोरा के विचार। विषय है समयबद्धता। वाचक स्वर है आभा गुप्ता का।
1: समयबद्धता अथवा समय की पाबंदी, पूर्व निर्धारित समय पर या समय से पूर्व किसी आवश्यक कार्य को पूर्ण करने

0: अथवा किसी दायित्व का निर्वहन करने की क्षमता को कह सकते हैं। समय निष्ठ शब्द का प्रयोग अक्सर समय पर के अर्थ में होता है। विश्व में लगभग सभी संस्कृतियों में समय की पाबंदी हेतु एक स्वीकार्य स्तर माना जाता है। जहां समय की पाबंदी को महत्व न देकर विलंब से कोई कार्य होता है, वह समय का अनादर करने अथवा अपमान के समान होता है। समयबद्धता का महत्व कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। यदि कोई चिकित्सक समयबद्धता का पालन न करे तो जन सामान्य की चिकित्सा में कठिनाई आएगी। किसी अध्यापक या प्राध्यापक द्वारा समयबद्धता का पालन न करने पर समाज की नई पीढ़ी को शिक्षित करने में, नई पीढ़ी के निर्माण में कमी आएगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी समयबद्धता अथवा समय की पाबंदी का पालन न करे तो जनहित में लिए जाने वाले छोटे से छोटे अथवा बड़े से बड़े निर्णय भी जनमानस के जीवन पर, जीवन स्तर पर कुछ न कुछ असर जरूर डालते हैं। सेना में यदि समयबद्धता ना हो तो किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। छात्र या छात्राओं में समयबद्धता की कमी उन्हें जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छूने से दूर कर सकती है और नई पीढ़ी डगमगाती हुई बिना लक्ष्य की प्राप्ति के दिशाहीन मार्ग पर बढ़ती पाई जा सकती है। समय पर संपन्न न किए गए कार्यों को कोई स्वीकार नहीं करता, उनका परिणाम अधूरा और अर्थहीन हो जाता है। पुरातन संस्कृति के अनुसार जीवन काल को 16 संस्कारों में विभाजित किया गया है। यह संस्कार मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे गर्भाधान, जन्म, शिक्षा दीक्षा, विवाह, गृहस्थ आश्रम प्रवेश और निर्वाह, वानप्रस्थ, संन्यास और मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार एवं मोक्ष प्राप्ति से संबंधित हैं। प्रत्येक संस्कार जीवन की अवस्थाओं पर आधारित समयबद्धता के साथ समय चक्र में पूर्ण किए जाने का महत्व है। यदि किसी भी चरण में समयबद्धता का पालन करना सुनिश्चित न किया जाए तो मानव जीवन में व्याधियां और विकृतियां उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती हैं। प्रकृति भी समयबद्धता के साथ चलती है। ऋतुओं का समय अनुसार परिवर्तन, एक निश्चित काल पर दिन निकलना, रात होना समयबद्धता का ही उदाहरण तो है। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति की दिनचर्या पर नजर डालें और एक दिन के 24 घंटों को भी समयानुसार देखें तो पाएंगे कि दिन में सारे कार्य समय की पाबंदी से जुड़े रहते हैं। यदि एक दिन भी समयबद्धता का पालन न किया जाए तो हमारे जीवन में बाधाएं, व्याधियां और विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए समय पर विश्राम न करने से अगले दिन की दिनचर्या लड़खड़ा जाती है, शरीर में थकान या अनिद्रा की स्थिति आ जाती है, हमारे अगले दिन का कार्य भले भांति पूर्ण नहीं हो पाता, जिससे हमारा और हमारे साथ साथ समाज का, राष्ट्र का कुछ न कुछ नुकसान अवश्य होता है, क्योंकि एक एक इकाई से मिलकर ही संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारी प्रगति समाज की और राष्ट्र की प्रगति से संबंधित है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि क्रमबद्ध तरीके से समयबद्धता से किए गए कार्यों में ही एक इकाई के रूप में हमारी और हमारे साथ साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति निहित है। अतः एक सच्चे देशभक्त होने का, एक उत्तरदायित्व बोध को समझने वाले नागरिक होने का यही अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों का समयबद्ध तरीके से निर्वहन करें और स्वयं को, समाज को और राष्ट्र को विकास की राह पर ले जाने में योगदान दें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर किशोर अरोड़ा के विचार। विषय था समयबद्धता। वाचक स्वर आभा गुप्ता का था। श्रोताओ, अब लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है।

0: श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ अभी आपने सुना। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई क्यों और कैसे विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह।
1: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं अभी आपकी रबी की फसल कट रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें कट चुकी हैं, चना है।

0: है, मटर है या सरसों है, इन सब फसलों कट चुकी हैं। कुछ मात्रा में गेहूं की फसल कट चुकी है। किसान भाइयों, ये अप्रैल मई का महीना बहुत ही जो है अच्छा मौसम है गर्मी गहरी जुताई करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम मृदा स्वास्थ्य को सुधारने एवं निरोग बनाने का सर्वोत्तम समय है। रबी फसलों के कटाई के उपरांत अधिक से अधिक किसान भाई अपने खेत को खाली छोड़े रहते हैं, जिससे उसमें जो है तेज़ हवाओं के कारण जो है मृदा में नमी समाप्त हो जाती है। जब वर्षा होता है तो वर्षा का पानी जमीन अवशोषित नहीं कर पाती और पानी बाहर चला जाता है। साथ ही में उस पानी के साथ मृदा के ऊपरी कण से जो है कटते हुए मिट्टी भी जो है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वह भी बह करके जो है नालों में चली जाती है या अन्य स्थानों पर चली जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। फसलों की अधिक उपज प्राप्त करने व मृदा की संरचना सुधारने के लिए गर्मी की जुताई अति आवश्यक है। गर्मी की जुताई से मृदा में वर्षा जल का शोषण अधिक होता है, वही नमी संरक्षित होती है। मृदा में उपस्थित कीड़े मकोड़ों के जो लार्वा या अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जो है खरपतवार जो होते हैं, जो पौधों में उग करके जो है पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी जो है नष्ट हो जाते हैं। साथ ही किसान भाई, मृदा की जो संरचना होती है उसमें भी सुधार होती है। यदि गर्मी की गहरी जुताई की जाए तो ये देखा गया है कि कम से कम जो है 15 से 20% जो है आपकी उत्पादन क्षमता जो है बढ़ जाती है। साथ ही जो है भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं गुणों में भी जो है सुधार होता है। इससे भूमि की ऊपरी परत जो है खुल जाती है, ये जो है बहुत मतलब कि हो जाता है, जिससे सूर्य की तीव्र किरणें भूमि में प्रवेश कर जाती हैं और क्रिया का जो है एक तरह से सौर विकिरण हो जाता है, जिससे जो है उसमें जो है हानिकारक कीट हों, लार्वे हों या पौधों के जड़ हों, ये नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, जैसे ही आप रबी की फसल की कटाई करें और कटाई करने के बाद 10 दिन तक जो है उसमें जो है पर्याप्त नमी होती है, उस नमी का फ़ायदा उठा करके आप जो है अपने खेत का जो है तुरंत जुताई कर दें। इससे ज़्यादा समय यदि लेते हैं तो गर्म हवा चलने से जो है मिट्टी कड़ी हो जाएगी और उससे फिर आप जुताई नहीं कर सकते। इसलिए जो आपको सलाह दी जाती है कि आप फसल कटने से 5 से 10 दिन के अंदर में ही जो है अपनी खेत की जुताई कर दें। हाँ किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप यंत्र के बारे में जानें कि किस यंत्र से करना चाहिए। जैसे इसके लिए जो गर्मी में जुताई करते हैं उसके लिए है कम से कम आपकी खेत जो है 45 से 60 सेंटीमीटर गहरी जुताई होनी चाहिए। इसके लिए जो दो तरह के यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, एक तो बैल चालित यंत्र होते हैं, दूसरा जो है ट्रैक्टर चालित यंत्र होता है। इसके अंतर्गत जो है एक आता है ट्रैक्टर चालित या बैल चालित भी आता है डिस्क हल, दूसरा आता है मिट्टी प्लट हल, जिसे आज किसान भाई भी जो है प्लाऊ के नाम से जानते हैं। इसके बाद सब सॉयलर आता है, एकल तवेदार हैरो आता है और ऑफसेट तवेदार हैरो आता है। इनका प्रयोग करके आप जो है खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। इन यंत्रों से ये देखा गया है, ऐसा होता है कि ऊपर की मिट्टी नीचे चले जाती है और नीचे की मिट्टी जो है ऊपर आ जाती है, जिससे सूर्य की प्रकाश की किरणें जो है सीधे जो है उस मिट्टी पे पड़ती है और जितने भी फायदा होना चाहिए जुताई से वो फायदा मिलता है। किसान भाइयों, यदि आप ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं तो इससे जो है बहुत सारी मतलब के लाभ हैं। क्या? जैसे खरपतवार नियंत्रण। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने से जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं उनके जो है कंद, राइजोम और जड़ें जो हैं वो जमीन के ऊपर आ जाती हैं और मई जून की कड़ी धूप के प्रभाव से सभी लगभग नष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में नमी की कमी हो जाती है, इसलिए जुताई करने से इन खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसी तरह से मृदा का संरक्षण, जैसे ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं, ग्रीष्मकालीन जुताई करने से मिट्टी की परत ढीली हो जाती है और मृदा सूख जाती है, इससे भूमि की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार खेत में पानी इकट्ठा होता रहता है तो वर्षा का पानी सीधे जमीन पर आता है और मिट्टी जो है उसको अवशोषित करती है। इसी तरह से किसान भाइयों, मिट्टी की गहरी ग्रीष्मकालीन जुताई करने से जल संरक्षण में भी वृद्धि होती है।
1: ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई क्यों और कैसे? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा में इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले जानकारी कक्षा 12वीं CBSE बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए CBSE की 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन करने की समय सीमा आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी। बोर्ड के अनुसार अब तक 70,000 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। इनमें सत्यापन, वेरिफिकेशन और पुनर्मूल्यांकन यानी री इवेल्युएशन के लिए आवेदन है। तो यदि आप भी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस काम को आज ही कर डालें। श्रोताओ, आज है रविवार और यदि आज आप अपने परिवार के साथ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो शाम के समय निकलें, क्योंकि दोपहर में काफ़ी तेज़ धूप रहती है। फिर भी यदि निकलने का मूड है तो पहले मॉल जा सकते हैं, शाम को आप किसी पार्क में जा सकते हैं, थीम रोड पर जा सकते हैं या फूलबाग स्थित चौपाटी भी जा सकते हैं। यहाँ आप घूमने के साथ साथ बच्चों को उनके पसंदीदा व्यंजन भी खिला सकते हैं। श्रोताओ, आज हम मना रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। आज का दिन दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। तो आज के इस दिन हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि खाने की बर्बादी हम किसी भी प्रकार से होने ना दें, और इसके साथ ही जो भोजन हम स्वयं खा रहे हैं या अपने परिवार वालों को खिला रहे हैं उसकी शुद्धता का पूरा पूरा ध्यान रखें। श्रोतो, आज के कार्यक्रम दर्पण में जो अगली जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी शिक्षा जगत से संबंधित है। चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय DTE ने बी फार्मेसी, डी फार्मेसी और फार्म डी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए संशोधित ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश भर के हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। ये प्रवेश प्रक्रिया प्रदेश के शासकीय, स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय और निजी फार्मेसी संस्थानों में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आयोजित की जा रही है। और अब अगली जानकारी करदाताओं के लिए। आयकर विभाग ने करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त समय पर जमा करने की सलाह दी है। इसकी अंतिम तिथि 15 जून है। तो यदि आपको भी अपना कर जमा करना है तो निर्धारित तिथि से पहले ही ये कर जमा कर दें, क्योंकि आयकर अधिनियम के अनुसार जिन करदाताओं की वर्ष भर की अनुमानित कर देनदारी 10,000 या उससे अधिक है उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान निर्धारित किश्तों में करना होता है। तो ये काम 15 जून तक आप कर डालिए। NTA ने UGC NET जून 2026 परीक्षा का विषयवार शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 22 से 30 जून के बीच आयोजित की जाएगी। आज के दर्पण में इतना ही। हम आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब से बस थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमंत्री परिषद सदस्याश्च वैश्विका निश्चितता काले भारतस्य भूयोपि आर्थिक वृद्धिं कर्तुं विभिन्नेषु परामर्शोपायेषु चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमीकर्तुं अपि सविस्तरं विचारणा जाता। सदस्यैः भारते विश्वे च पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्न प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेशमंत्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घ मुक्त सीमायां सुरक्षा व्यवस्थां प्रवर्तयितुं दृढतया सहयोगं कुरुतः। अपि च उभौ देशौ संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं सा

0: साहाय्यं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनालेन सह उपवेशने डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धः जीवित जनसम्बन्धस्य सीमापार सम्पर्कस्य पारस्परिक सांस्कृतिक धार्मिक परम्पराणां च सुदृढाधारे विनिर्मितः अस्ति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अन्ताराष्ट्रिय सीमासु वित्तीय व्यवहारस्य भवन निर्माणस्य सम्पत्तिक्रय विक्रयणस्य च विषये विशेष समवधानतायै आहूतवान्। एषः निर्देशः BSF इति सीमासुरक्षाबलस्य त्रिपुरा सीमा मुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तर राज्य सीमा क्षेत्र विषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमन्त्री विगत पञ्चवर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंकसत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदन समर्पणाय अन्तिमां तिथिं जून मासस्य सप्तमदिनांकपर्यन्तं अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदन समर्पणाय अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य षष्ठः दिनांकः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीय पुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च उत्तम प्रदर्शनपरकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पद भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चण्डीगढे भारताफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडासमाप्तिपर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकम् 68-300 धावनाङ्काः अर्जिताः। अद्य भारतम् इतः अग्रे क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन

0: प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। KL राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद यानी सुबह 7:10 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद हमारी श्रोता ले सकेंगे सुबह 7:20 से, समाचार प्रभात सुबह 8 बजे से और मॉर्निंग न्यूज़ सुबह 8:15 से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगी। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुबह 8:30 से हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे मुस्कान गौतम के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ सारंगी पर संगत करेंगे उस्ताद अब्दुल मजीद खान।

इस घंटे की खास खबर आज की इस सभा में आप सुन सकेंगे सुबह 8:58 से, सुबह 10:58 से, 11:58 से, 12:58 से और दोपहर 2:58 से। सूचनाओं और समाचारों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रसारित होगा सुबह 9 बजे से। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पॉडकास्ट सीरीज, सुबह 9:10 से आप इसे सुन सकेंगे। इस पॉडकास्ट सीरीज में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 5वीं कड़ी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास अवार्ड से पुरस्कृत ग्राम पंचायत सरढ़ी पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे। सिंधी कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से रिले होगा सुबह 9:30 से। जिले की चिट्ठी सुबह 10 बजे से व्हाट्सएप फरमाइश, श्रोता अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश सुन सकेंगे आज सुबह 10:05 से। सुबह 11 बजे से सभा की समाप्ति तक हम अपने सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। यहाँ से सुबह 11 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, दोपहर 12 बजे से फिल्म संगीत का कार्यक्रम, 12:30 से कार्यक्रम संग्रहालय से, दोपहर 12:58 से इस घंटे की खास खबर, दोपहर 1 बजे से महिला कार्यक्रम, दोपहर 1:30 से लोक संगीत का कार्यक्रम और दोपहर 1:45 से सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान होंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार दोपहर 2:10 से, दोपहर समाचार दोपहर 2:15 से और बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान प्रसारित होगा दोपहर 2:30 से। दोपहर 2:50 से चित्रपट संगीत और दोपहर 3 बजे से हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। आज की दूसरी सभा में कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होगा दोपहर 5:02 पर। कार्यक्रम भजन संध्या शाम 6:02 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार शाम 7:10 पर रिले होंगे। हम अपने केंद्र से आज शाम 7:20 पर प्रसारित करेंगे ग्रामीण महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम घर आंगन। आज के इस कार्यक्रम में हम अपनी ग्रामीण बहनों को सुनवाएंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर डॉक्टर रश्मि वाजपेयी से आरती शुक्ला की बातचीत। विशेष पॉडकास्ट सीरीज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे आज रात्रि 8 बजे से और नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 9:30 से। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा प्रसारित होगी रात्रि 10 बजे से। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी ग्वालियर है। प्रादेशिक समाचार अब हमारे भोपाल केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश की अपील की। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के

0: स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी की। समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में, और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश तेजी से भारत के नए वैश्विक निवेश एवं निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कल इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 में प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में निवेश, उत्पादन और नवाचार के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हम आपके साथ एक ठोस और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के मध्य में होने के कारण व्यापार और व्यवसाय के लिए सबसे अनुकूल स्थान है। यहाँ औद्योगिक कुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी होने वाला है और इस तरह के सम्मेलन प्रदेश के विकास में अहम योगदान देंगे।
1: ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में 1-9 से 11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके आधार पर ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं।
0: स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया कल 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति के बाद विभाग ने अपनी अलग स्थानांतरण पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन होंगे। विभागीय आदेश के अनुसार प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्तावों का पंजीयन 8 जून से शुरू होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 8 से 15 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। जिला कैडर संभाग और राज्य कैडर स्थानांतरण के लिए 8 से 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। CBSE ने कहा कि ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है, ताकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। आवेदन जमा करने की पहले की अंतिम तिथि इस महीने की 6 तारीख थी। भोपाल में जनजाति संग्रहालय की स्थापना के 13वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर कल 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। 10 जून तक आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत में संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश की संस्कृति और उनकी कलाओं को लोकव्यापी बनाने के प्रयत्न निरंतर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्नपत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि एक छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह से बनी हुई है। उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म और साइबर अपराध अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के लिए सूचना उपलब्ध करा रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है, जिससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है, जिसके तहत ताड़ का तेल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली तेल और चावल की भूसी के तेल तथा कपास के बीज के तेल और मक्का के तेल सहित प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में आयोजित की जाएगी। समिति की सदस्य एवं शिक्षाविद डॉक्टर शोभा पैठणकर विभिन्न वर्गों से सुझाव लेंगी। ये खुला मंच होगा जिसमें जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, पत्रकार और आम नागरिक भाग ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से बैठक में आकर अपने सुझाव देने की अपील की है। वहीं मंदसौर में भी समान

संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन कल किया गया। भोपाल में आज तंदुरुस्ती के लिए साइकिल चलाने का संदेश देते हुए संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत लोगों ने साइकिल चलाई। टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए इस आयोजन में खेल मंत्री कैलाश विश्वास सारंग भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे देश को हिट करने के लिए लोगों का फिट रहना काफी जरूरी है, जिसके तहत इस अभियान का आयोजन प्रत्येक संडे को किया जाता है। जापान के काकामेगाहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए और कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। इस ऐतिहासिक सफलता में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी के 6 खिलाड़ियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। वहीं शतरंज में ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानंद ने अपने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। तीसरे स्थान से दिन की शुरुआत करने के लिए के बाद प्रज्ञानंद ने महत्वपूर्ण क्लासिकल जीत से 3 अंक प्राप्त किए और 18 अंकों के साथ खिताब अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय अंडर 18 पुरुष और महिला हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि पुरुष टीम ने चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जबकि महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम देश के युवा खिलाड़ियों के समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने पर आर प्रज्ञानंद को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये शानदार उपलब्धि उनकी निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित और एक ही जगह पर उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में अपार आईडी निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को मेगा अपार दिवस का 30 जून तक आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में कल स्कूलों में पहले अपार दिवस का आयोजन किया गया। अपार आईडी का निर्माण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1,39,38,000 स्कूली विद्यार्थियों की आईडी बनाई जानी है, जिसके तहत अब तक 93,97,000 विद्यार्थियों की अपार आईडी का निर्माण हो चुका है। अब रुख करते हैं मौसम का। पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पर तेज आंधी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में 2 दिवसीय गृह उद्योग व्यापार एक्सपो एवं मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर के द्वारा किया गया। भोपाल के गोविंदपुरा इंद्रपुरी की लेबर कॉलोनी में सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाकर दुकानों और झुग्गियों को हटाया गया और शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया। आईटीआई इंदौर में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगर मालवा में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। डिंडौरी कलेक्टर ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बैठक में पशु चिकित्सकों एवं अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए। और राजगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी ग्वालियर है। दोस्तों, ये सिर्फ एक संगीत या धुन नहीं है, ये तो एक ऐसा टाइम मशीन का बटन है जिसे दबाते ही हम

सीधे एक अनोखे गलियारे में पहुंच जाते हैं। आज जब हमारे हाथों में स्मार्टफोन है और स्क्रीन पर रील्स स्क्रॉल हो रही हैं, तब हमारा अपना हम सब का प्यारा ऑल इंडिया रेडियो पूरे 90 साल का हो गया है। जी हाँ, वही ऑल इंडिया रेडियो जो 9 दशक के बेमिसाल सफ़र में कई उतार चढ़ावों से गुजरते हुए आज की डिजिटल दुनिया में पूरी शिद्दत के साथ अपनी भूमिका को नई चुनौतियों के साथ निभाने की कोशिश कर रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे आपके अपने ऑल इंडिया रेडियो की और सुनेंगे गीत संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में सबसे पहले फिल्म रेडियो में हिमेश रेशमिया का गाया ये गीत।

भारी भरकम मर्फी रेडियो से लेकर आज आपके फ़ोन में मौजूद न्यूज़ ऑन AIR ऐप तक, क्या गजब का सफ़र रहा है रेडियो का। इस सफ़र की आधिकारिक शुरुआत 8 जून 1936 को हुई थी, जब इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम मिला और बाद में महान कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के कहने पर इसे एक बेहद खूबसूरत नाम दिया गया, आकाशवाणी, यानी आकाश से आने वाली वाणी। श्रोताओ, वो सिग्नेचर ट्यून जो अभी थोड़ी ही देर पहले आप सुन रहे थे, इसे वॉल्टर कॉफमैन ने कंपोज किया था। आज भी जब ये ट्यून कानों में पड़ती है तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे घर का कोई बुजुर्ग मुस्कुराकर कह रहा हो, चलो एक खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। तो आइए आपको कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनवाते हैं फिल्म रेस 3 में आतिफ असलम और लुलिया का गाया ये गीत, जिसे सलमान खान ने लिखा है और विशाल मिश्रा ने कंपोज किया है।

ज़रा सोचिए श्रोताओ, जब हमारे घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी भी नहीं आया था, तब मनोरंजन का, देश दुनिया की खबरों का इकलौता गूगल और नेटफ्लिक्स कौन था? सिर्फ और सिर्फ रेडियो। मुझे याद है मेरी नानी बताती थी कि दोपहर में जब घर के सारे काम ख़त्म हो जाते थे तो मोहल्ले की सारी महिलाएं एक आंगन में रेडियो के पास जमा हो जाती थीं। वजह? आकाशवाणी का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, बहनों का कार्यक्रम। और सिर्फ महिलाएं ही क्यों, सुबह सुबह मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक चेतना से भरे कार्यक्रम वंदना या आराधना, चिंतन, श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ, हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि जगत या चौपाल, ग्रामीण महिलाओं के लिए घर आंगन, पुरानी पीढ़ी के आशीर्वाद लिए छत्र छाया और श्रोताओं की खट्टी मीठी चिट्ठियों के उल्लास से भरे पत्रोत्तर के संवाद जैसे कार्यक्रम, गांधी दर्शन को समाज तक पहुंचाने वाली गांधी चर्चा जैसी कड़ियाँ समाज की लाइफलाइन हुआ करती थी। खाद कब डालनी है से लेकर मौसम का हाल तक, रेडियो की कही हर बात पत्थर की लकीर होती थी। लोग रेडियो पर सुनी बातों को अपने असल जीवन में अमल में लाते थे और अपने को अपडेट रखने के लिए लोग समाचार प्रभात, दोपहर समाचार और समाचार संध्या का सहारा लेते थे। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले अंग्रेजी समाचार कितने ही प्रतियोगिता प्रतिभागियों का सच्चा सहारा होते थे। और रविवार की वो सुबह जब 9 बजते ही बच्चों के लिए बाल जगत या बाल कुंज या फूल बगिया कार्यक्रम का प्रसारण होता था, उस छोटे से डिब्बे से जब कहानियाँ और कविताएँ गूंजती थी तो बच्चे अपनी सुध-बुध भूल जाते थे। बिना किसी स्क्रीन के सिर्फ आवाज़ों के दम पर लोग अपने दिमाग में पूरी दुनिया बना लेते थे। इसे कहते हैं असली थिएटर ऑफ माइंड। कितने ही बच्चे रेडियो के पीछे से आती आवाज़ का एक रंग, रूप, चेहरा अपने दिलो दिमाग में बना लेते थे और किसी दिन स्वयं को भी जागती आँखों से ही इस माइक्रोफोन के पीछे बैठा देखते हुए, बोलते हुए बड़े हो जाते थे।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: और श्रोताओं, अगर मनोरंजन की बात हो और विविध भारती का जिक्र भी ना आए तो बात अधूरी ही रह जाएगी। 3 अक्टूबर 1957 को शुरू हुई विविध भारती ने भारतीय संगीत को हर दिल की धड़कन बना दिया। जी हाँ बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ और बिना का गीतमाला के पायदान नंबर 1 पर हैं। क्या जादू था ना उस आवाज़ में। बुधवार की शाम को जब बिना का गीतमाला रेडियो पर आती थी तो सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। लोग बाकायदा डायरी लेकर बैठते थे ताकि गानों की रैंकिंग नोट कर सकें। तो ऐसी बातें तो अभी हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं वर्ष 1973 में बनी फिल्म अभिमान का वो गीत जिसमें जया बच्चन को स्टेज पर गाते हुए दिखाया गया है और उनके सामने ऑल इंडिया रेडियो और शिकागो रेडियो के माइक्रोफोन लगे हुए हैं और गाना सीधे रेडियो पर प्रसारित भी हो रहा है। आपको याद आ ही गया होगा, तो आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म अभिमान में किशोर कुमार का गाया एक गीत।

हवा महल के नाटक आपने सुने ही होंगे। वो डरावनी आवाज़ें, वो सस्पेंस, वो गुदगुदाती कॉमेडी और सरहद पर शून्य से नीचे के तापमान में तैनात हमारे जवानों के लिए आने वाला खास प्रोग्राम जय माला। रेडियो हमारे फौजियों के लिए सिर्फ एक यंत्र नहीं बल्कि उनके घर परिवार की चिट्ठी हुआ करता था जो उन्हें देश से जोड़े रखता था। दोस्तों, वास्तव में अगर कहें तो ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ गाने बजाने का साधन नहीं रहा, ये तो हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े मोड़ का गवाह भी रहा है। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण एट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया तो पूरे देश ने उसे आकाशवाणी पर ही सुना था। जब भी देश पर कोई संकट आया, चाहे वो 1962, 1965 या 1971 का युद्ध हो, देश के प्रधानमंत्रियों ने आकाशवाणी के जरिए ही पूरे राष्ट्र में हौसले का संचार किया था। और हाँ, वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा देश में आपातकाल लगा दिए जाने की खबर को भी ऑल इंडिया रेडियो ही पूरे देश तक ले गया था। ये एक ऐसी खबर थी जब 2.25 साल तक सरकार द्वारा लिए जाने वाले नए नए फैसलों को आकाशवाणी के माध्यम से ही जनता तक पहुंचाया जाता था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म अनुराधा से। स्वर लता मंगेशकर का है, शैलेंद्र के बोल और पंडित रविशंकर का संगीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
1: श्रोताओं, आपको याद है ना वो दौर और क्रिकेट का रोमांच, जब लोग रेडियो को कान से सटाकर गली मोहल्लों में खड़े रहते थे, गेंदबाज धीमे धीमे कदमों से अंपायर को पार करते हुए और ये खूबसूरत शॉट गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, जसदेव सिंह, सुशील दोषी और रवि चतुर्वेदी जैसे दिग्गजों की कमेंट्री सुनकर ऐसा लगता था मानो हम खुद लॉर्ड्स या ईडन गार्डन्स के स्टेडियम में बैठे हैं। जब भारत मैच जीतता था तो लोग खुशी में रेडियो को ही गले लगा लेते थे। वक्त बदला, रंगीन टीवी आए, केवल नेटवर्क आया, इंटरनेट आया और अब ये सोशल मीडिया का दौर है। कई लोगों को लगा कि रेडियो शायद कहीं पीछे छूट जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, रेडियो कभी पीछे नहीं छूटा, बल्कि उसने खुद को एक नए फ्रेश अवतार में ढाल लिया। सुनते हैं फिल्म सेहरा में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीत है रामलाल का।

श्रोताओं, 90 साल के इस बेमिसाल और सुरीले सफ़र के लिए ऑल इंडिया रेडियो को दिल से सलाम। ऑल इंडिया रेडियो हमेशा हमारे कानों में गूंजता रहेगा, हमें चैतन्य रखेगा और हमारे दिलों पर राज करता रहेगा, क्योंकि ये आकाशवाणी है। आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंत में आशा भोसले और मन्ना डे के स्वर में फिल्म लाल पत्थर का ये गीत।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी ग्वालियर है। समाचार प्रभात अब से बस थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: चले।
1: सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर

0: राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: Collaborate closely to maintain security.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Full potential of our time.
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन

0: ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
1: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
2: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
3: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along international borders. National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
7: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be

अभी आप सुन रहे थे मुस्कान गौतम के स्वर में एक लोक भजन। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अब लीजिए सुनिए इन्हीं की आवाज में, ये चौकड़िया।

0: आकाशवाणी ग्वालियर से अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबर।
1: बजकर 58 मिनट हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 में प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में निवेश उत्पादन और नवाचार के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ ठोस और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए तैयार है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया कल 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह से बनी हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख रविवार आधी रात तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह तारीख 6 जून निर्धारित थी। प्रदेश के सभी स्कूलों में कल मेगा अपार दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूलों में पहुंचे और अपने बच्चों की अपार ID बनवाई। भोपाल में आज तंदुरुस्ती के लिए साइकिल चलाने का संदेश देते हुए संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत लोगों ने साइकिल चलाई। मौसम विभाग ने आज गुना और अशोकनगर सहित प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और जापान के काकामेगाहारा में भारत के अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी का टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम 5 DTH के ऑडियो चैनल से
0: हम आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सूचनाओं, समाचारों और फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

नमस्कार ग्वालियर, यदि आप अब तक भी रविवार की सुहावनी सुबह का आनंद अपने बिस्तर पर ही लेने के मूड में हैं तो तुरंत इस मूड से बाहर आ जाइए और जागिए, क्योंकि सुहानी भोर हो चुकी है। सूरज की स्वर्णिम रश्मियों की ऊर्जा लेकर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर के साथ आज आपके रेडियो सेट पर मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त और आज के इस कार्यक्रम की होस्ट नंदिता चतुर्वेदी। श्रोताओं, आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ। घड़ी की सुइयां मानो थम गई हैं, हवाएं भी खामोश हो गई हैं और इस खामोशी को अपनी बातों और सुरीले गीतों से सजाने आ गया है आपका हम सफ़र आकाशवाणी ग्वालियर। तानसेन की इस ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर के ऐतिहासिक गौरवशाली किले की भव्यता और व्यापार मेले की यादों को समेटे हमारे इस खूबसूरत शहर ग्वालियर के सभी श्रोताओं को जय राम जी की। उम्मीद है अब तक आप बिस्तर से बाहर आ चुके हैं और आनंद ले रहे हैं सुबह की चाय की बेहद शानदार और रिलैक्सिंग चुस्की का और साथ ही आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का। सुबह की पहली किरण और चाय की चुस्की के साथ जब एक आवाज़ गूंजती है, ये आकाशवाणी है, तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ऑल इंडिया रेडियो AIR यानी हमारा अपना रेडियो, जिसने पिछले 90 वर्षों से भारत के इतिहास, संस्कृति और करोड़ों दिलों को एक साथ जोड़ने का काम किया है, इस जादुई सफ़र की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1936 की 8 जून को हुई और आज़ादी के बाद 1957 में महान कवि सुमित्रानंदन पंत के सुझाव पर इसे आकाशवाणी का सुंदर नाम मिला। आज देश के कोने कोने तक अपनी पहुंच मजबूत करते हुए आकाशवाणी 591 प्रसारण स्टेशनों के विशाल नेटवर्क के साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारक बन चुका है, जिसके 230 स्टेशनों में अत्याधुनिक स्टूडियो की सुविधा है। इसके कार्यक्रम मुख्य रूप से 5 अंचलों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर अंचल से देश की 23 भाषाओं और 146 से अधिक बोलियों में गूंजते हैं, जो भारत की विविधता को समेटते हैं। दोस्तों, एक दौर था जब देश में टीवी या इंटरनेट नहीं था, तब यही रेडियो हर घर का सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करता था। नेहरू जी का आज़ादी की रात का ऐतिहासिक भाषण हो या क्रिकेट मैच की रोमांचक कमेंट्री, विविध भारती पर हवा महल के नाटक हों या बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जिसने रेडियो को हर भारतीय की जीवन शैली बना दिया। वक्त बदला, तकनीक बदली और आज के डिजिटल दौर में रेडियो मोबाइल ऐप्स, FM और पॉडकास्ट के जरिए नए रंग में हमारे सामने हैं। आज भी मन की बात से लेकर किसानों के लिए कृषि कार्यक्रम तक ये हर गांव और शहर की धड़कन बना हुआ है। तो आइए रेडियो के इस 90 वर्षों के अटूट और सुरीले रिश्ते को सलाम करते हैं, जो कल भी हमारा था और आज भी हमारी रग रग में गूंजता है। सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, और श्रोताओं आइए अब हम आपको सुनवाते हैं पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 5वीं कड़ी में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास अवार्ड से पुरस्कृत ग्राम पंचायत सरडीही पर आधारित कार्यक्रम।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ,
7: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
8: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरडीह ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री रामजी भगत, जो कि सरपंच हैं सरडीह ग्राम पंचायत के। भगत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
9: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
8: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है, तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
9: मैं तो सरपंच हूँ, लेकिन मेरे ग्रामवासी और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं वो भी खुशी के झूम उठे, और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राज्य लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकास खंड बगीचा जिला जशपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और इस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
8: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहां पर किस तरह की परिस्थितियां थी, और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया, और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीकी स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
9: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जन प्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए, और उनका मैं सपोर्ट लिया, और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए, और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार, और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग, पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारे सपोर्ट में जन प्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
8: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
9: मेरा सहयोग दिए।
8: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है, तो 100% सफलता आपने हासिल
10: हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी?
9: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग लोकड़ सभा जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
10: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
9: जल संरक्षण के लिए केड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था, उस समय मैंने केड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
10: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
9: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल जो टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है, और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए, अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
10: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
9: सर, मैं पहले माइक्रोवाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रोवाटर शेड में काम किया, माइक्रोवाटर शेड का ही मतलब है कि वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
10: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
9: सर, पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, कहा कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं, हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए, और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
10: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
9: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले भी जैसे माइक्रोवाटर शेड में काम किया था, उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए, और जनपद से भी आया कुछ पैसा, और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
10: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
9: सर, आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे,
10: मतलब उसके लिए भी आपने कार्य योजना
9: तैयार कर रहे हैं।
10: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
9: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, कहा कि उसको हम लोग बनाते नहीं है, उसको हम खुद नहीं बनाते हैं, तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं, वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कोई प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
10: इस तरह की जो गतिविधियां हैं, खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहां पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग लोग करते हैं
9: उसमें भी हम लोग समूह को लिए हम जिम्मेदारी दिए हैं स्वर सहायता समूह को। उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है।
10: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
9: और सप्ते में जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं रोड का सफाई करते हैं।
10: सरपंच जी आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है इसके बारे में हमें बताएं।
9: सर केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
10: जी
9: और दिया है मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
10: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
9: विगत आने वाला समय में और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता।
10: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं।
9: सर उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
10: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं जाहिर सी बात है कुछ न कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
9: सर हमारे पास बहुत सारा समस्या है काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है मेरे पास सुबह टाका लग जाता है एकदम सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं इसमें से उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है तो मैं इस मिनाज को उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर से उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
10: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
9: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है जो लगता है सचिवालय उस दिन अलग है वो तो सरकारी क्रम शासन काम है। मेरा सोमवार मंगल बुध भी फिर मेरा 3 दिन लगातार बैठक अपने घर में बैठता हूँ और तीनों दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में रहता हूँ। अब तीनों दिन मेरा काम हो जाता है
10: यानी लगातार व्यस्त रहते हैं।
9: मतलब कि हमेशा व्यस्त रहता हूँ किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है।
10: यही कारण है कि आपकी पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
9: जी सर।
10: अच्छा एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है खासतौर पर जब गांव में सड़कों की बात करते हैं स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
9: सर उसके लिए अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कुछ बहुत काम बचा है उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
10: तो सरपंच जी आपने ये जो सफलता हासिल की है इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही आपका माइंडसेट क्या था कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
9: सर हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं ना आदिवासी लोग रहते हैं ना उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया उसी कारण से ODF मतलब पंचायत बना जैसे शौचालय मुक्त है ना उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
10: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
9: सर डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है हम बैठे बैठे अपने कार्य को जिला का हुआ चाहे राज्य हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं
10: जी
9: चाहे जिसे कहा महिला KYC वगैरह कराते हैं चाहे और बैंक जाना पड़ता है बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। अब हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है मतलब उसके लिए मकान बनने वाला है।
10: तो सरपंच जी सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गाँव के हरेक व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने
9: जिन्होंने मतलब जागरूक नहीं, तो उसको हम मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
10: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
9: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को भी पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊं।
10: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
9: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि हैं या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा उनको, और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
10: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
9: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
10: नमस्कार।
9: नमस्कार सर।
7: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
5: दोस्तों, आज कैलेंडर के पन्नों पर तारीख दर्ज है 7 जून, और आज का ये दिन पूरे विश्व में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे देश में तो कहा भी गया है जैसा अन्न वैसा मन, यानी हम जो खाते हैं वही हमारी सोच और सेहत को तय करता है। श्रोतो, आज के दिन का महत्व तो इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि असुरक्षित भोजन के कारण हर साल दुनिया भर में लाखों लोग बीमार पड़ते हैं। दूषित पानी और बैक्टीरिया, वायरस या रसायनों से युक्त भोजन खाने से डायरिया से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी एक व्यक्ति या संस्था की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि ये सरकार, उत्पादकों और उपभोक्ताओं की सामूहिक जिम्मेवारी है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 का आधिकारिक विषय है बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन, यानी फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। इस वर्ष का अभियान खाद्य जनित रोगों से निपटने और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा प्रथाओं में सुधार के लिए डेटा निगरानी और विज्ञान आधारित समाधानों के उपयोग पर बल देता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इससे विश्व भर में सुरक्षित खाद्य प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो श्रोताओं, हमें भी अपनी छोटे छोटे से कुछ आसान उपायों को अपना करके खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे हम सफाई का ध्यान रखें, कच्चे और पके भोजन को अलग अलग रखें, खाने को सही तापमान पर पकाएं, खाना पकाने के लिए और जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें सुरक्षित पानी और सामग्री का उपयोग करें, और बासी भोजन खाने से बचें। इसके साथ ही खाना बनाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। बाजार से लाए गए फल और सब्जियों को साफ पानी से ठीक से धोएं। रसोई घर और बर्तनों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और बासी और बहुत देर तक खुले रखे हुए भोजन को खाने से बचें।

दोस्तों, आकाशवाणी ग्वालियर के माध्यम से आज मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम के दौरान ही हम सभी एक संकल्प लें कि हम खुद भी जागरूक बनेंगे और अपने परिवार और समाज को भी मिलावट, गंदगी और भोजन की बर्बादी के खिलाफ सचेत करेंगे, क्योंकि जागरूक समाज ही सुरक्षित भोजन और उत्तम स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकता है। दोस्तों, बातों बातों में वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है और अब समय इशारा कर रहा है कि मुझे आज के इस सफ़र को यहीं पर थामना होगा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी

साथियों जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुराण में तव्हां सभिनी खे मां मनोज सोनी पंजवाणीअ पारां सिक भरी नमस्ते। ॼाण ऐं विंदुर सां भरपूर तव्हां सभिनी जे पसंदीदा हिन कार्यक्रम जी शुरूआति कंदासीं अॼु जी ॼाण सां। अॼु जी पहिरीं ॼाण जुड़ियल आहे विश्व पर्यावरण दिवस सां, जेको हर साल 5 जून ते मल्हायो वेंदो आहे। हिन दफ़े इन ॾींहं जो विषय आहे जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट एक्शन, जेको असांखे धरतीअ खां मिलण वारे पर्यावरणीय संकेतनि खे समुझण ऐं उन्हनि जे प्रति ज़िमेदार क़दम खणण जो संदेश ॾींदो आहे। भारत जो मिशन लाइफ पहल इन ई सोच खे अॻियां वधाईंदो आहे। हिन जो ख़ासि उद्देश्य इहो ई आहे त असां पंहिंजे रोज़ जी आदतुनि में बदिलाउ आणे पर्यावरण अनुकूल जीवन ठाहिण जी कोशिशि कयूं, जीअं त ऊर्जा जी बचत, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त वातावरण, सार्वजनिक परिवहन जे उपयोग सां ईंधन जी बचत, ऐं सभ खां ज़रूरी जेका ॻाल्हि आहे उहा आहे वधीक में वधीक वण लॻाइण। पर्यावरण संरक्षण रुगो सरकार जी जवाबदारी कोन्हे, साथियो असांजो बि कर्तव्य आहे त असां इन में पंहिंजी भागीदारी पूरी ईमानदारीअ सां निभायूं। अचो त हिन साल इन ॾींहं ते असां सभु मिली करे संकल्प कयूं त असां पर्यावरण जे अनुकूल जीवन शैली अपनाए प्रकृतिअ खे बचायूं ऐं अचण वारी पीढ़ीअ जे लाइ सुरक्षित भविष्य बणायूं। पर्यावरण जी सूंहं सां ई असांजे मुल्क जी बि सूंहं आहे।

साथियों ही गीत गायो हो कला हजारी ए गुरदास माली, गीत लिखो हो ढोलन राही। हाने बी जाना है भगवान बिरसा मुंडा शहीदी दिवस। यो डी हर साल 9 जून ते महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया वेंदो आए। भगवान बिरसा मुंडा जे बलिदान ए जीवन से जुड़ियल कुछ खास गालियों हिन रीत आहिन। उन्हें जन्म 15 नवंबर सन 1875 में झारखंड के खूंटी जिले में उली हाथ गांव में थियो हो। उल गुलान क्रांति इनन जे जीवन जी हिक या वड़ी क्रांति आहे। इनन उन समय जे छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश नीतियुन जमींदारन ए साहूकारन जे शोषण जे विद्रोह जे खिलाफ इन क्रांति में नेतृत्व कयन। अंग्रेजन जे खिलाफ लगातार संघर्षन जे दौरान इनन के गिरफ्तार कयो वयो ए 9 जून सन 1903 रहस्यमयी परिस्थितियुन में रांची जेल में उनन जी मृत्यु थी वई। हिकड़ी अगली नंढड़ी ॼाण, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जेको हर साल 12 जून ते मनायो वेंदो आहे। इन अंतर्राष्ट्रीय ॾींहं जो ख़ास मक़सदु बाल श्रम जी समस्या जे बारे में वैश्विक स्तर ते जागरूकता आणणु ऐं बाल श्रमिकनि खे इन अभिशाप खां ॿाहिरि कढी करे उन्हनि खे शिक्षा ऐं उज्ज्वल भविष्य प्रदान करणु आहे। साथियों, इहा हुई ॼाण बाल श्रम दिवस जे बारे में। इन खां पहिरियों पई ॻाल्हि हले पर्यावरण जे बारे में, त पर्यावरण में असां ॾिसंदा आहियूं त असां सां गॾु गॾु असांजी प्रकृतिअ सां गॾु गॾु पखी पखेरू बि शामिलु आहिनि। त अचो ॿुधूं था इन्हनि पखियुनि ते ई गीत।

0: साथियों ही गीत गायो हो पार्वती चावला ए हिन गीत का पो अगली जान विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सन 2019 संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव का पो हर साल 7 जून ते इो डी मनायण जो फैसलो कयो वयो। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस एक वैश्विक अभियान आहे। हिन जो उद्देश्य खाद्य सा थियण वारा जेके भी जोखिम आहिन उनन जो पतो लगाण ए उनन ते रोक लगाण इन अभियान जो खास मकसद आहे। इन अभियान जो नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ए संयुक्त राष्ट्र जे खाद्य ए कृषि संगठन पारा जेके भी उनका सदस्य राज्य आहिन उनन पारा कयो वेंदो आहे। साथियों हाणे समय आहे अज जी ॻाल्हि ॿोल जो ऐं ॻाल्हि ॿोल जो मौजू बि आहे खाद्य सुरक्षा सां ही जुड़ियल उचित पोषण ऐं खाद्य सुरक्षा। इन बारे में वधीक ॼाणींदासीं अॼु जी आयल साथी डॉक्टर ज्योति केसवानी जी जेके नेचुरोपैथी कुदरती इलाज जा प्रोफेसर बि आहिनि ऐं खाधे ते इन्हनि जो विशेष रिसर्च आहे। इन्हनि जूं कुझु किताबियूं बि इन विषय ते शाया थी चुकियूं आहिनि। डॉक्टर ज्योति जी तव्हांजो खोड़ खोड़ स्वागत आहे।
1: धन्यवाद
0: ज्योति जी। जीअं त अॼु जो विषय आहे उचित पोषण ऐं खाद्य सुरक्षा
1: जी,
0: त सभ खां पहिरियों असां इहो ॼाणणु चाहींदासीं त उचित पोषण सां छा तात्पर्य आहे।
1: रोटी त असां सभु खाईंदा आहियूं
0: जी,
1: है न, पर अहिड़ी रोटी अहिड़ो खाधो जेको पंहिंजे शरीर में वञी करे स्वास्थ्य खे वधाए न कि उनखे घटि करे अहिड़े खाधे खे पाण उचित पोषण चवंदासीं। असां जेकी बि रोटी खाईंदा आहियूं उहो कई पहलुओं में वञी करे शरीर जे अंदरि इस्तेमालु थींदियूं आहिनि। त जैसे विटामिन मिलंदा आहिनि खाधे में, पाण खे घणा सॉल्ट या खनिज तत्व मिलंदा आहिनि, त ही सभु असांखे वठणु ॾाढो ज़रूरी आहे
0: जी। माना हिकु तरीक़े सां इन्हनि सभिनी शयुनि जो बैलेंस बैलेंस करे जेका डाइट आहे, जेको पोषण आहे, उहो ई उचित पोषण आहे।
1: हा, हिनखे पाण संतुलित आहार चवंदा आहियूं हिंदीअ में। त संतुलित आहार जो मतिलबु आहे कि सभु कुझु सुठी क्वांटिटीअ में ऐं क्वालिटीअ में पाण खे मिलनि।
0: बिल्कुलु, टाइम टाइम सां जेको बि शरीर खे ज़रूरत आहे उन हिसाब सां जेको बि सही आहे उहो खाइणु उचित पोषण में ईंदो आहे।
1: जी जी,
0: सुठी सिहत लाइ सुठो खाइणु इहो बि तमामु ज़रूरी आहे ऐं खाधे ते त तव्हांजो ख़ासि रिसर्च आहे। असां चाहींदासीं इन बारे में बि तव्हां असांजे श्रोताउनि खे वधीक ॿुधायो।
1: अॼुकल्ह खाधे सां जेके संबंधित बीमारियूं आहिनि ॾाढी वधी पियूं आहिनि, ऐं पाण अगरि चयूं त जेकी मैक्ज़िमम जेकी बीमारियूं आहिनि पंहिंजे आसपास पाण ॾिसूं पिए था, हू खाधे जे करे आहिनि। जीअं पंहिंजो सिंधी खाधो, ट्रेडिशनल खाधो कीअं आहे, डोडो हो, ॾही हुई, है न, मखण वग़ैरह बि पाण सुठी तरह खाईंदा हुआसीं, पर अॼुकल्ह हू सभी जो खाधो आहे हाणे रीप्लेस थी वियो आहे किन सां, फास्ट फूड सां। त लॻभॻि 16 लख माण्हू रोज़ हिकिड़े ॾींहं में सॼे दुनिया में केवल खाधे जे कारण बीमार पवंदा आहिनि। 5 सालनि खां नंढा लॻभॻ 340 ॿार रोज़ पंहिंजी जान खोई छॾींदा आहिनि खाधे संबंधी बीमारियुनि जे कारण। त ही ॾाढो ज़रूरी आहे कि खाधे ते असां ध्यानु केंद्रित कयूं हाणे ऐं सुठे खाधे खे पंहिंजे जीवन में शामिलु कयूं। हाणे हीउ सुठो खाधो छा थो थी सघे, सुबुह जो उथूं त थोरो फल खाऊं, रेशा या सलाद पंहिंजे खाधे में शामिलु कयूं, जीअं भाॼियूं आहिनि, साई भाॼियूं आहिनि या अलॻि तरह जी भाॼियूं आहिनि। असां नेचुरोपैथी में चवंदा आहियूं कि अहिड़ी भाॼियूं जिन में एसिडिटी घटि हो, अम्लता घटि हो, क्षारीयता वधीक हो, मतिलबु हुन में एसिडिटी ठाहिण जी क्वालिटी घटि हो, त अहिड़ो खाधो पाण खाइणु खपे। त हिन करे अहिड़ो खाधो जेकी पैकेज्ड आहे जिन में प्रिज़र्वेटिव्स पवंदा आहिनि, जीअं सिट्रिक एसिड आहे, सोडियम बेंज़ोएट आहे, हीउ सभु पायो वेंदो आहे कंहिंमें सॉसिस में, या फिर जीअं पाण न शरबत ॾाढो पीअंदा आहियूं या कोल्ड ड्रिंक्स पीअंदा आहियूं, हिननि सभी में ही सभु नुक़सान करण वारी शयूं पाईंदी। त हिननि खे घटि मां घटि करे करे ऐं सुठी शयुनि खे जीअं भाॼियुनि जो रस थियो, फलनि जो रस थियो, फल थिया ऐं अंकुरित अनाज थियो, त हिननि सभिनी खे वधीक शामिलु करणु ही ॾाढी ज़रूरत आहे हिन समय जी।
0: जी बिल्कुलु, ऐं अॼु जे समय में ॾिठो वञे त माण्हू बुख सां घटि था मरनि ऐं खाइण वधीक खाइण या गलत खाइण जे करे वधीक बीमार आहिनि।
1: बिल्कुलु सही था चओ था। भुखमरी त हाणे हेॾी वॾी समस्या कान्हे, ख़ासि करके पाण सिंधियुनि में त कान्हे। हिन में असां में छा आहे की ॾाढो वधीक खाइण सां मोटापे जी समस्या ॾाढी आहे, ख़ासि कर पाण सिंधी भाउ भेणनि में वज़न वधीक थियण जी समस्या ॾाढी वधीक थी आहे। त हुन जे करे छा त थियो, ॿारनि में वज़न ॾाढो वधीक आहे। ॿारनि में वज़न वधीक थींदो आहे त हॉर्मोन संबंधी समस्याऊं ॾाढी वधी वई आहिनि, ख़ासि करके छोकिरियुनि में। ऐं हिन जे करे जेके महावारी संबंधी प्रॉब्लम्स आहिनि नंढी छोकिरियुनि में, या ॿार नथो कंसीव करे सघिजे थो, त हीअ सभु ॾाढी प्रॉब्लम्स केवल ऐं केवल मोटापे जे करे आहे। ऐं जेको ग़लति खाइण सां ऐं वधीक खाइण सां हर घड़ी खाइण सां थी थो सघे।
0: जी बिल्कुलु, या बि अॼु जे जेका माहौल में ॾिठी वञण वारी ॻाल्हि आहे, या हिकु वॾी समस्या आहे।
1: जी
0: गर्मियुनि जी मुंदि हली रही आहे, ऐं जीअं हींअर तव्हां चयो शरबत था पियूं या कोल्ड ड्रिंक था पियूं, त उन में जेका एसिडिक उन जो प्रभाव आहे, गर्मियुनि में सच में ॾाढो मन थींदो आहे त कुझु थधो पीजे।
1: त
0: इन बारे में गर्मियुनि में छा खाइणु खपे, कीअं पंहिंजो ध्यानु रखिजे, इन बारे में थोरो ॿुधाईंदा।
1: पाण सिंधियुनि में ॾाढी सुठी सुठी शयूं आहिनि, असांजे कल्चर में ई आहे। जीअं गर्मियुनि में पाण ॾुध पीअंदा आहियूं, छाछ है न, लस्सी के लस्सी बि चवंदा आहिनि, छाछ चवंदा आहिनि, ॾुध चवंदा आहिनि। त जीअं छाछ ठाहिजे त हुन में थोरो भुनियल जीरो जीरो थोरो सो तवे पे सेके करे पीसे करे हू विझे, ॾाढो कूलिंग ऐं रिफ्रेशिंग थींदो आहे। हुन में बारीक बारीक कटे करे पुदीने जा पत्ता, धाणनि जा पत्ता ऐं थोरो सो सेंधो नमक या कारो नमक विझी करे पीअण, ही ॾाढो रिफ्रेशिंग ड्रिंक थींदो आहे। गर्मी त भॼंदी ई भॼंदी, असांजे शरीर में प्रोबायोटिक मिलंदा। प्रोबायोटिक अहिड़ी शयूं हूंदी आहिनि जो पंहिंजे जेको डाइजेस्टिव सिस्टम आहे, जेको पाचन संस्थान आहे, जेको जिते पंहिंजे खाधे जो पाचन थींदो आहे, हू सुठी तरह कमु कंदो आहे। थधिकार बि मिलंदी ऐं कम बि सुठी तरह थींदो। ॿियो ॾाढी सुठी शइ आहे पाण सिंधियुनि में, असां बचपन सां पीअंदा रहंदा आहियूं, उहा थादल। थादल जी सामान जी पुड़िया ई रेडीमेड असां वठी ईंदा आहियूं, ऐं थादल ठाहे करे पाण घर में आराम सां पी था सघूं। ऐं थादल ॾाढो सुठो, ऐं जड़ी बूटीन जो हिकिड़ो पंच आहे थादल, कॉम्प्लेक्स आहे थादल। ऐं हुन में जेको शयूं पवंदियूं आहिनि, चाहे उहो गुलाब जी पंखड़ियूं आहिनि या खरबूज जा बीज आहिनि, मगज, त ही सभु ॾाढी थधिकार त ॾींदी आहे, ऐं पाण खे ॾाढा एंटी ऑक्सीडेंट्स ऐं न्यूट्रियंट्स प्रदान कंदा आहिनि, मतिलबु पोषक तत्व पाण खे हुन में नेचुरल तरीक़े सां मिली वेंदा। टियों जेकी शइ आहे उहा छाई। छाई वॉटर सां पाणीअ सां भरपूर फल आहे, गिदरो पाणीअ सां भरपूर फल आहे ही, ऐं खीरो। ही ॿ टे शयूं अगरि पाण खाधे में शामिलु कयूं, भले ॾाढो वधीक खाइण जी ज़रूरत कान्हे, हिकिड़ी हिकिड़ी कटोरी बि फैमिली मेम्बर्स खाइनि था त ॾाढो फ़ाइदो थींदो आहे।
0: बिल्कुलु, चवंदा आहिनि न कुदरत पंहिंजी पाण में पूरक आहे। अगरि गर्मी ॾाढी आहे त गर्मीअ में इहे कुदरत फल बि ॾींदा आहिनि, जंहिंखे खाई करे असां पंहिंजो पाण खे थधो करे
1: पाणीअ वारा फल आहिनि सभु।
0: हा बिल्कुलु, ऐं त थादल जी ॻाल्हि ॿुधाई त पहिरें ज़माने में असां ॾिसंदासीं, असांजा वॾा हूंदा हुआ, थादल में जेके बि शयूं हूंदियूं उहे पाण पंहिंजे हथ सां गॾु करे हुनखे पीसींदा हुआ कंदा हुआ, पर अॼुकल्ह त एॾी सहूलियत आहे जो हर का शइ ठहियल मिले थी।
1: ठहियल मिले थी, असांखे दुकानूं ख़बर आहिनि जिते थादल जी पुड़िया ठहियल मिलंदी आहे, असां बसि पुड़िया वठी ईंदा
0: आहियूं, पुड़िया वठी अची करे पीअणो आहे,
1: बसि पीअणो आहे ठाहे करे। जी
0: सच में अॼुकल्ह ॾाढियूं सहूलियतूं आहिनि। जीअं तव्हां ग़लति खाधे जे नुक़साननि जे बारे में हींअर ॿुधायो, नियाणियुनि में या लेडीज़ में जेके बि समस्याऊं अचनि थियूं, इन सां गॾु गॾु ॿारनि में या उमिरि जे हिसाब सां बि खाधे में जेको अलॻि अलॻि खाधो खाइणु खपे, उन जे बारे में अगरि थोरी ॼाण ॾियो त।
1: जी त ॾिसो, ॿारनि खां शुरू था कयूं, त ॿार जीअं खाइणु शुरू कंदा आहिनि त हुननि खे पाण खे हीउ प्रोत्साहित करिणो खपे की उहे सभु खाइनि। हीअ न की हीउ कोन खाइणो आहे या हू कोन खाइणो आहे। ॾाढे घरनि में अॼुकल्ह ॾाढो फास्ट फूड ठहणु लॻिया आहिनि, मैगी ॾाढी ठहणु लॻी आहे, हीअ सभु अल्टीमेटली ॿारनि खे नुक़सान कंदा आहिनि। इनफैक्ट मां चवण थी चाहियां की जॾहिं ॿार मुंहिंजे पेट में हूंदो आहे तॾहिं खाई, अगरि मां हेल्दी रोटी न खाईंदी आहे त अॻिते हली करे हुन ॿारनि खे ॾाढी बीमारियूं थियण जी चांसिस आहिनि। रिसर्च चवे थी की ऑटिज़म जेकी सिंधियुनि में आहे ॾाढी, ॿियो सेरिब्रल पैल्सी सिंधियुनि में ॾाढी थी मिले, है न, ही सभु खाधे सां ऐं पेट में जेका पंहिंजे बैक्टीरिया हूंदा आहिनि उन्हनि सां संबंधित आहे। ॾाढी सारी अहिड़ी बीमारियूं थींदियूं आहिनि जिन में छा थींदो आहे की शरीर सुठी तरह कमु कोन करे सघंदो आहे, हिनखे मेटाबॉलिक डिसऑडर्स चवंदा आहिनि। त हीअ मेटाबॉलिक डिसऑडर्स खाधे सां ई संबंधित आहिनि ऐं हीअ शुरू थी वेंदियूं आहिनि जॾहिं ॿार माउ जे पेट में हूंदो आहे। त ॾाढी ज़रूरी आहे ॻाल्हि आहे जेकी लेडीज़ हींअर गर्भवती आहिनि हू पंहिंजे खाधे ते ध्यानु ॾिए ऐं ॾाढो फास्ट फूड ऐं ॿाहिरि जी शयूं न खाइनि। ॿारनि जेके जीअं मां चयो की एनकरेज करिणो खपे की सभु खाइनि, त हुननि खे फल सलाद ई बचपन से ही खाइण की आदत विझणी खपे। ऐं टियों शइ, ॿार जीअं वॾा थींदा आहिनि त हाणे टाइम अहिड़ो आहे की फिज़िकल एक्टिविटी ॾाढी घटि थी वई आहे ॿारनि जी बि, त हुननि खे थोरो ॿाहिरि खेॾण लाइ प्रोत्साहित करिणो घुरिजे ऐं टाइम टू टाइम रोटी ॾियणी घुरिजे। हर घड़ी खाइण जी आदत ॾाढी ग़लति आहे ॿारनि में, जेको मां हींअर ॾिसां पई थी पंहिंजे आसपास। ॿियो जीअं नियाणियूं वॾियूं थी थियनि, हिननि जी बि पढ़ाई जो लोड ॾाढो आहे। असांजे ज़माने में असां ॾाढो कमु बि कंदा हुआसीं घर जो, वारो फ़र्श वग़ैरह कंदा हुआसीं, हाणे हू कोन थिए थो। त इन करे वज़न वधण जी समस्या, टाइट कपिड़ा पाइण जी वजह से रिप्रोडक्टिव जीअं प्रॉब्लम्स आहिनि हू ॾाढी, या हॉर्मोनल प्रॉब्लम्स वधी थी वञनि, त थोरो एनकरेज करिणो घुरिजे नियाणियुनि खे बि कि थोरी फिज़िकल एक्टिविटी कंहिं बि रूप में, चाहे उहो डांस हो, चाहे योग हो, चाहे वॉकिंग हो, हिन जे रूप में ज़रूरु कनि ऐं पंहिंजे खाधे ते शुरू खां वठी ध्यानु ॾियनि। छा थो थिए न, बीमारी अचण में टाइम न लॻंदो आहे सर, न, लेकिन बीमारीअ खे वापसि वञण में ॾाढो टाइम लॻंदो आहे, या वेंदी कान्हे, ॾाढी ज़िदी थींदियूं आहिनि बीमारियूं। त इन करे कोशिशि कजे कि बीमारी अचे ई न। असां नेचुरोपैथी में चवंदा आहियूं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलबु बीमारी जी रोकथाम बीमारी जी ठीकु करण सां ॾाढी सुठी आहे, मतलबु बहितर आहे। त इन करे जीअं लेडीज़ वॾी थी थियनि त पंहिंजे ध्यानु घटि थी थियनि, जीअं की त हिननि में कैल्शियम जी कमी ही सभु ॾिसण में मिलंदो आहे, त हॾियुनि जी बीमारी, हॾियुनि जी कमज़ोरी सभु। त पंहिंजे खाधे ते लेडीज़ खे बि शुरू खां वठी ध्यानु ॾियणो घुरिजे। जीअं उमिरि वधे थी, जीअं उमिरि दराज आहिनि, चाहे लेडीज़ चाहे जेंट्स, हुननि खे हैवी खाधो घटि करे करे लाइट खाधो, भले ॾींहं में हिकु दफ़ो ॿ दफ़ो खाधो वधाए छॾनि, पर थोरो थोरो करे, जीअं कॾहिं फल, कॾहिं सलाद, कॾहिं जीअं ॾुध मां चयो, या फिर जीअं दलिया, खिचड़ी, अहिड़ो नरम खाधो एड करणु घुरिजे। त अगरि हीअं पाण फॉलो कयोसीं न हिन तरीक़े सां, त असांखे बीमारियूं थींदी कोन, ख़ासि करे खाधे सां संबंधित त बिल्कुलु कोन थींदियूं। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मां एड थी करणु चाहियां, जो छो त हीअ खाद्य सुरक्षा जे बारे में आहे, त रखियल खाधो, रखियल खाधो बीमारियुनि जो ॾाढो वॾो कारण आहे। त इन करे कोशिशि कजे कि बासी रोटी या रखियल रोटी घटि में घटि इस्तेमालु कजे।
0: बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। हिकु महिल वधीक खाइण जे बजाए थोरो थोरो गेप ॾेई करे खाइनि, त उहो वॾनि जे लाइ बि सुठो रहंदो। अॼु जी जीवन शैली अहिड़ी आहे त माण्हूअ जे उथणु वेहणु खाइण जो को समय कोन्हे, त अहिड़े में उचित पोषण तमामु ज़रूरी आहे। तव्हां तमामु सुहिणी ऐं सवले तरीक़े सां असांजे श्रोताउनि खे इन विषय ते ॼाण ॾिनी। तव्हां स्टूडियो में आया, तव्हांजी खोड़ खोड़ महिरबानी।
1: धन्यवाद।
0: साथियों, ॿुधी रहिया हुयासीं अॼु जी ॻाल्हि ॿोल, उचित पोषण ऐं खाद्य सुरक्षा। अॼु असां सां गॾु स्टूडियो में साथी हुआ डॉक्टर ज्योति केसवाणी जी। खाधे जी ॻाल्हि पई हले त हलंदे हलंदे हिकु गीत असांजे सिंधी खाधनि ते।
2: छोला ढबल तू खाई वठ दल दल, दाल छोला ढबल तू खाई वठ दल, ओ काका ओ चाचा ओ काका हे देया, तू दाल वठी खाओ आहिन मिर्च मसाला दल, काका मिर्च मसाला दल दल, दाल

मांगर किका के क्यूरा दे मलजी चाप खाई दावन जो कुल्फी मोती मलजी है कर आज वाई दावन जो अड़ता दिया सोढाले मन रोज गुलाबी वरताई दावन जो सोढाले मन रोज गुलाबी वरताई दावन जो ओ काका ओ चाचा ओ ठाकुओ के पोए मन जो यार बेरो बुर न बन जो काका गाड़ा तीन गल काका गाड़ा तीन गल दाल छोला डबल तू खाई वठ दल दल दाल छोला डबल

0: ही गीत गायो हो आसन मीरानी, गीत लिखियो हो परसराम जिया है संगीत बुलो सी राणी जो।
1: साथियों सुभाणे माना 8 जून ते आकाशवाणी पंहिंजे प्रसारण जा

नवे वरहें पूरा करे रहो आहे। 8 जून 1936 ते इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो नालो मटे करे आधिकारिक रूप से ऑल इंडिया रेडियो रखियो वयो हो। उन खां पोए 1956 में इनके आकाशवाणी नालो डिनो वयो। पिछले नवे वरहन खां बहुजन हिताए बहुजन सुखाए जे मूल मंत्र ते हलंदड़ आकाशवाणी पहेंजे परे परे दूर दराज इलाकन ताणी समाचार, कृषि जानकारी, शिक्षा ऐं मनोरंजन पहुंचाइण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आहे। नवे वरह पूरे थियण ते तव्हां सभिनी खे खोड़ खोड़ वाधायूं। आकाशवाणी असां सभिनी खे अॻिते बि ईअं ई जोड़े रहंदी ऐं तव्हां जे लाइ ईअं ई सुठा सुठा कार्यक्रम पेश कंदी रहंदी, इहा ई उमेद आहे। अॼु जे कार्यक्रम जो समय बि पूरो थी रहियो आहे। इजाज़त ॾियो पंहिंजे रेडियो साथी मनोज सोनी पंजवाणीअ खे। वरी मिलंदासीं, सभ जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे सिंथी कार्यक्रम सिंथी अदजी सुरहान। मीडिया वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10 बजे हैं और ये समय होता है जिले की चिट्ठी का। तो लीजिए प्रस्तुत है मंदसौर जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख है दीपक शर्मा का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मंदसौर जिले में ये महीना विकास, जनकल्याण, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के अनेक महत्वपूर्ण प्रयासों का साक्षी रहा। जिले में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से कई योजनाएं धरातल पर उतरती दिखाई दी। जिले में नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए 27 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया। बीते दिनों हुई इस लोक अदालत में न्यायालयों के 656 तथा प्री लिटिगेशन के 1048 सहित कुल 1704 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम एवं चेक बाउंस से संबंधित मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। मंदसौर जिले के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसके तहत वैदिक मंत्रोच्चार, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने भारत के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और विकसित भारत के संकल्प पर प्रकाश डाला। किसानों को नवीन तकनीकों से जोड़ने के लिए कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसान रथ अभियान का शुभारंभ बीते दिनों जिले में किया गया, जिसके तहत जिले के विभिन्न विकास खंडों में 10 दिवसीय भ्रमण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, बीज उपचार, मृदा परीक्षण, कृषि यंत्रीकरण और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर गुदरी टोला क्षेत्र में जागरूकता रैली निकालकर नागरिकों को डेंगू से बचाव के उपाय बताए गए। देखें साफ करें ढके थीम पर आधारित इस अभियान में आमजनों को घरों में जमा पानी की नियमित जांच और सफाई का संदेश दिया गया। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में अब तक 417 खेत तालाब तैयार हो चुके हैं, जबकि 820 तालाबों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन तालाबों से वर्षा जल का संरक्षण होगा, भूजल स्तर सुधरेगा तथा किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध होंगे। इससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सांसद निधि से निर्मित निक्षय वाहन को बीते दिनों जिले में रवाना किया गया। यह विशेष वाहन 905 गांवों एवं नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण कर टीबी रोग के प्रति जागरूकता फैलाने, जांच सुविधा उपलब्ध कराने तथा मरीजों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही जरूरतमंद मरीजों को पोषण सहायता भी प्रदान की जा रही है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में आंगनवाड़ी केंद्र लालाखेड़ा में बीते दिनों आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत शिविर में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच, एक्सरे, टीबी जांच, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर एवं रक्तचाप के परीक्षण किए गए तथा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन समिति की बैठक में बीते दिनों औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में 283 नए उद्योग पंजीकृत हुए हैं, जिनसे 1428 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। बीते दिनों विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर वन में अधिकारियों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उद्यानिकी महाविद्यालय में क्लीन एंड ग्रीन गतिविधि आयोजित कर विद्यार्थियों को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं गंगा दशहरा के अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना घाट पर सामूहिक श्रमदान और स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत इस वर्ष 6650 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लगभग 5000 युवाओं को प्रशिक्षण और लाभ भी प्रदान किया गया है। जिले में 39,000 से अधिक किसानों से 2.28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। किसानों को समर्थन मूल्य एवं बोनस सहित 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान भी किया गया है, जिसका कुल भुगतान 600 करोड़ से अधिक रहा है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए माहवारी स्वच्छता दिवस पर बीते दिनों जिला चिकित्सालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत कार्यशाला एवं रैली के माध्यम से स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्रदान की गई। वहीं पुलिस विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रदर्शनी एवं विशेषज्ञ के व्याख्यानों के माध्यम से युवाओं और नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। मंदसौर जिले के सीतामऊ में रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले में 220 युवाओं ने पंजीयन कराया, जिसमें 149 युवाओं का प्राथमिक चयन विभिन्न निजी कंपनियों के लिए किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हितग्राहियों को 15 लाख रुपए के चेक भी इस अवसर पर वितरित किए गए। जिला चिकित्सालय एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रयासों से अब तक क्लब फुट से ग्रसित 34 बच्चों का सफल उपचार जिले में किया जा चुका है। वहीं मलेरिया निरोधक माह के तहत बीते दिनों मलेरिया जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन जिले में किया गया, जिसके तहत नागरिकों को मलेरिया के लार्वा की पहचान, रोकथाम और उपचार की जानकारी दी गई तथा बुखार से पीड़ित प्रत्येक मरीज की जाँच कराने के निर्देश भी दिए गए। मंदसौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: अभी आप सुन रहे थे मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख दीपक शर्मा का था और वाचन स्वर अभिषेक कटिहार का।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अपने श्रोताओं के लिए अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म रोटी में किशोर कुमार का गाया ये गीत, जिसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनने की फरमाइश हमें भेजी थी रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कटवासरा, सचिन कटवासरा, सतीश कंगवासरा, योगेश कंगवासरा और युद्धव कंगवासरा। इसी गीत को सुनना चाहा था गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी ने। आइए आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे सुनने की फरमाइश हमें भेजी है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी आकाशदीप, अनहद और गुरु शब्द। ये फरमाइश हमें मिली है ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून की। अपने इन श्रोताओं की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेटी बेटे में मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर का गाया ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और श्रोताओ, अब हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं उसको सुनने के लिए हमें फरमाइश मिली है पुराना तालाब डुमराओं से, वलीउल्लाह अंसारी, बेगम शबनम नाज, अस्मा नाज अंसारी, प्रमिला जाटव, जेल रोड बक्सर से राज अंसारी, शिल्पी राज और उमा राज, इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अंसारी, बेबी अंसारी और यामिनी राज, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र और जाह्नवी यादव। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश मिली है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और SK पप्पी। गंज डुंडवारा से रमेश, नित्या और सुरेश। ये फरमाइश हमें मिली है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रचिता खुराना। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म मैंने प्यार किया में शारदा सिन्हा का गाया ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं देव कोहली ने और संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

0: शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हीरो से। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की हैं। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें जिन श्रोताओं ने भेजी है उनके नाम आप सुन लें। मित्र नगर वीडनग शहर महाराष्ट्र से विकास वनसोड़े, रेखा वनसोड़े, अदिति वनसोड़े, वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे। ये फरमाइश हमें मिली है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुर शबद सिंह राहुल की। न्यू बजरंग कॉलोनी राजा गैस गोदाम गोल पहाड़िया लश्कर ग्वालियर से नेत्राम गोंडिया, सरोज गोंडिया, शशि कुमार गोंडिया, भावना गोंडिया, नीरज गोंडिया और अर्चना गोंडिया, आद्या, श्रेया और देवांशु। ये फरमाइश हमें जिन श्रोताओं ने भेजी है, धानोरा बिटाली तहसील नांदोरा जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल ने। आपने इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म हीरो का ये गीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म हीरा से। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। सुनना चाहते हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। ये फरमाइश हमें मिली है दादा बाबू रोड गिरडीही झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफ्रा नवाज बेबी चाहत और सादिया की। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया आरजू जाजोरिया और गुड्डू। जय परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई महेश संघई प्रज्ञेश संघई प्रीतेश संघई और इनके परिवार के अन्य सदस्य।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। श्रोताओ अब आइए लेते हैं अपने कुछ और श्रोताओं की फरमाइश। ये फरमाइश हमें मिली है छत्रपति संभाजीनगर सुरेवाड़ी से, प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद, विराज, स्वीट, अंशुमन, बेबी और ओवी की। ग्राम महेशवाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाडे, वकील वाल्मीक धाडे, नीनाजी धाडे और स्वप्निल धाडे। सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, रेशमा थापा। झांसी से फकरुद्दीन अंसारी, बद्रू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी और फर्जू वली अंसारी। जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत असमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर। चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्लू वली जाटव, सोनम वली जाटव। छत्तीसगढ़ महासमुंद से कलीम आसमा डोम, सलीम आसमा डोम, यूसुफ आसमा डोम और इनके अन्य साथी। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म मेरे हमसफर में लता मंगेशकर और मुकेश का गाया ये गीत, आनंद बख्शी के बोल और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, आइए लेते हैं अपने कुछ और श्रोताओं की फरमाइश। ये फरमाइश हमें मिली है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूर

कर आरव और अर्पिता की। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है उदयपुर से रमेश नाचनी और भारती नाचनी ने। गुमला झारखंड से शगुप्ता अंजुम, एसएम जावेद और नजमुल होदा भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो है फिल्म संगम से मुकेश की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी ने। सप्तरंग श्रोता परिवार से कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म अनजाना में मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर का गाया ये गीत, आनंद बख्शी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओ, आइए अब अपने कुछ और श्रोताओं की फरमाइश हम आपको सुनवा रहे हैं। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा। संदलपुर आंतरी ग्वालियर से कालीचरण यादव और रिमला देवी यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव। अपने इन श्रोताओं की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम बंधन में लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर और 101.8 एफएम पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:58 हुए हैं। इस घंटे की खास खबरें अब से बस थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होंगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए हमारे अगले प्रसारण की।

0: आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों की लोक और जनजातीय कलाओं की झलक देखने को मिलेगी और अंडर 18 एशिया कप में महिला में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम, मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी की 4 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों महक परिहार, स्नेहा दावड़े, नम्मी गीताश्री और नौशी नाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने।
2: कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ रक्षा तवर, आपकी रेडियो दोस्त। हम आपको कार्यक्रम शुरू होने से पहले बता दें कि इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड करते हैं रोज सुबह 10:30 से, जिसका प्रसारण होता है अगले दिन सुबह 11 बजे से। हमारे फोन नंबर है 2660902 और STD कोड है 0755। आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है और चलिए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेंदुखड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम
2: कैसे हैं आप?
3: बहुत अच्छे हैं।
2: और मौसम कैसा है? अब तो बारिश थोड़ी हो गई होगी।
3: हाँ, बारिश हो जाती है शाम को या सुबह हो जाती है।
2: चलिए तो बताइए कार्यक्रम में कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं आप?
3: आज हम सुनना चाहते हैं मुस्कान फिल्म का गीत के बोल है जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती।
2: चलिए आपका जो गीत है हम खोज लेते हैं और आपको सुनवा देते हैं उदित नारायण की आवाज में ये गीत।
3: नमस्कार।
2: कार्यक्रम में आपने फोन किया
3: के लिए डेडिकेट रहेगा मैडम, ये आपके लिए भी रहेगा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते, नाम बताएं अपना।
1: मैं कोलारस से हरिशंकर खेमरिया बोल रहा हूँ, जिला शिवपुरी से।
0: हरिशंकर खेमरिया जी,
1: हाँ,
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या करते हैं हरिशंकर जी आप?
1: मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, पहले शिक्षक था।
0: अरे वाह, क्या पढ़ाते थे आप?
1: प्राइमरी सेक्शन 1 से 5 तक।
0: अच्छा,
1: छोटे बच्चों को पढ़ाता था मैं।
0: अच्छा जी, कार्यक्रम में आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: करिश्मा कुदरत का फिल्म का नाम है और गीत के बोल है, एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी है दुनिया की रीत रे।
0: जी, गीत उपलब्ध है हमारे पास, आपको सुनवाए देते हैं हरिशंकर जी। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी के कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद दीदी। ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ।
0: भगवान सिंह परमार जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, स्वस्थ हैं, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। और बताइए क्या चल रहा है, कैसा मौसम है?
1: अभी तो मौसम बहुत गर्म है, काफी गर्मी पड़ रही है दीदी हमारे इधर तो अभी, और तो एक दो चार दिन पहले बूंदाबांदी हुई थी दीदी, उससे कुछ टेम्परेचर गिर गया है गर्मी का।
0: तो थोड़ी बहुत राहत मिली होगी?
1: जी हाँ दीदी, थोड़ी बहुत राहत मिली है, बाकी 3-4 डिग्री से बहुत फर्क पड़ जाता है टेम्परेचर से गिरने से।
0: हाँ जी बिल्कुल। तो कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
1: गुड बॉय बैड बॉय और गाने के बोले मेरी मेरी आवारगी मेरी दीवानगी को जरा चैन आए सनम जो थाम ले दामन बदल जाएंगे कदम, ये वाला गीत सुनना है दीदी?
0: बिल्कुल, आपका जो गीत है आपको सुनवाई देते हैं हिमेश रेशमिया की आवाज में। कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान सिंह जी।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: जी बहन प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्ते
1: जी, मैं राजू यादव, ग्राम प्रेंका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: जी राजू जी, कैसे हैं आप?
1: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं, बगीचे में बैठे हुए, बहुत सारे आम लगे हुए हैं।
0: अरे वाह अरे वाह, तापमान भी कम हो गया है तो बगीचे में बैठने में अलग आनंद आ रहा होगा आपको।
1: तापमान तो बहना जी एकदम ठंडा, क्योंकि बारिश हो चुकी है ना हमारे गाँव बुंदेलखंड में।
0: जी जी जी जी जी, तो राजू जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में आज?
1: मूवी का नाम इतिहास।
0: इतिहास फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जुदा अपने दिलबर से होने लगी है मोहब्बत, मोहब्बत को रोने लगी।
0: अलका याग्निक जी की आवाज में ये गीत आपको सुनवाई देते हैं, बस आपके रेडियो सेट्स पर ये गीत आपको सुनाई देगा।
1: मित्रों के नाम ले लें क्या
0: भाई? बिल्कुल बिल्कुल,
1: हमारे मित्र है बलवान सिंह यादव है, अनूप कुमार राजपूत जी है, महेश राजपूत है, ग्राम उपरेखा, थाना मुस्कुरा, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और अब आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद
1: जी बहन प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते, अम्बेडकर चौक तेगर वार्ड खोरई से राम सखी परमानंद।
0: राम सखी परमानंद जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, बहुत गर्मी पड़ रही है, जेठ का महीना चल रहा है, नहीं अंतिम 15 जून तक 20 जून तक बरसात आ

0: आप कार्यक्रम में कौन सा आज गीत सुनना चाहते हैं बताएं?
1: डंकी का कोई भी गीत सुना दे।
0: तो लीजिए अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर। राम सखी जी कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैम,
0: किनसे बात हो रही है?
1: बद्री प्रसाद कुशवाहा, ग्राम हथेड़ा, तहसील विजयगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ मैम।
0: बद्री प्रसाद जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ मैडम।
0: तो कार्यक्रम है फोन करे गीत सुने, कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: फिल्म का नाम
0: जी
1: राम तेरी गंगा मैली का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए।
0: आपकी पसंद का गीत अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में फोन करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बद्री प्रसाद जी।
1: थैंक यू मैडम।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: मैं नेपाल से तिलक राणा बोल रहा हूँ।
0: तिलक राणा जी, कैसे हैं आप? आपकी बहुत चिट्ठियाँ आती हैं और बहुत अच्छे गीतों की आप फरमाइश करते हैं
1: और आप लोग हमारे पत्नों को प्राथमिकता भी देते हैं।
0: जी जी जी, तिलक राणा जी कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है?
1: एक्चुअली मैडम, मैं डॉक्टर हरी सिंह केंद्रीय विश्वविद्यालय में एलडीसी के पद पे कार्यरत था।
0: अच्छा जी।
1: सन 2024 में मैं रिटायर्ड हो गया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या अभी किस तरह की होती है दिनचर्या, क्या करते हैं?
1: बस मॉर्निंग में उठते हैं सवेरे, थोड़ा बहुत अपना मॉर्निंग वॉक करते हैं, और अभी तो गर्मी का समय चल रहा है तो वैसे भी आलस करे था, बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: अच्छा, ये तो है, ये तो अभी सभी जगह का है। कुछ जगहों पे थोड़ी बारिश हो गई है तो तापमान कम हुआ है, थोड़ी राहत है। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: मैम आज मुझे लोक परलोक का गाना मिल जाएगा।
0: लोक परलोक फिल्म से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: लोक परलोक का वो वाला गाना है मैम, बादल कब बरसोगे।
0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गीत आपको सुनवाई देते हैं लोक परलोक से। कार्यक्रम में आपने फोन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते।
1: फोन करे गीत सुने।
0: जी जी जी, आपका नाम जान सकती हूँ?
1: मेरा नाम मैडम जसराम जाटव है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जिला सीपी से। गांव का नाम जोराई।
0: कैसे हैं जसराम जी?
1: बढ़िया मैडम।
0: तो कार्यक्रम जो है वो फोन करें गीत सुने, इसमें आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हमको सुनना है मैडम गाने के बोल रहेंगे मेरा पिया घर आया हो राम जी। मूवी का नाम तो मैडम मेरे को याद नहीं है।
0: कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में ये गीत है।
1: हाँ, हाँ,
0: फिल्म याराना से।
1: मैडम मैडम परिवार वालों का नाम लेना चाहिए?
0: बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
1: हमारे भाई है रघुबीर जाटव और एक और भाई है हमारे लहरी जाटव और हमारे भतीजे हैं पिंकी जाटव, संजय जाटव, प्रिंस जाटव, सचिन जाटव।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए। अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार नमस्कार, मैं गुना से बात कर रही हूँ, सरिता शर्मा।
0: सरिता शर्मा जी, गुना से
1: जी।
0: कैसी हैं आप
1: जी? हम और आप कैसी हैं मैम?
0: मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
1: हाँ बढ़िया हैं। क्या? और बहुत खुशी हुई कि आज नंबर लगा है, हमारी फरमाइश का गीत हमें सुनने को मिलेगा, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इस नंबर बहुत लगाते रहते हैं, लगते ही नहीं।
0: कोई बात नहीं, आज लग गया है आपका फोन और आज आपको जरूर हम आपकी फरमाइश का गीत सुनवाएंगे। क्या करती हैं वैसे सरिता जी आप?
1: मैं शिक्षक हूँ, 9 से 12 तक हायर सेकेंडरी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं आप, बताएं
1: जी? आप सुनवाएं ये साजन फिल्म का, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
0: साजन फिल्म से
1: जी,
0: अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में ये गीत है, हमारे पास उपलब्ध है
1: जी।
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं ये गीत कार्यक्रम में। आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी
1: जी धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 11:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने तथा स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से छुटकारा मिलता है। वहीं प्रदेश में भी भोपाल और शिवपुरी सहित कई जगह पर संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत भारत ने 9 करोड़ से अधिक विशिष्ट आभा कार्ड जारी किए हैं और 1 करोड़ से अधिक डिजिटल चिकित्सा विवरण आभा कार्ड से जोड़े गए हैं। और भोपाल के जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की 13वीं वर्षगांठ समारोह पर आयोजित

0: पांच दिवसीय महुआ महोत्सव के तहत आज निमाड़ी गायन, उत्तराखंड का तांदी नृत्य, कर्मा नृत्य, पनिहारी नृत्य, महाबली छत्रसाल बुंदेलकेसरी के जीवन पर नृत्य नाट की प्रस्तुति भी होगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है पटेल नगर मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। नेपाल पैलेस सागर से तिनक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर और ऋषिका रॉबिन। आप सब ने सुनना चाहा है राम बलराम फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

और अब सुनिए खुशबू फिल्म का ये गीत। आशा भोंसले की आवाज में गुलजार का गीत है और राहुल देववर्मन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, मुस्तफा खान, रऊ भाई, शाहिद भाई, गांधी पाक अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने।

अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोता है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले। महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे और औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आप सबने सुनना चाहा है जब जब फूल खिले फिल्म का ये नगमा, मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी का गीत है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

पंकज दास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में सुनिए दयावान फिल्म का ये गीत। अजीज कैसी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। इस गीत को पसंद किया है उपाध्याय नगर देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल, सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज जसवानी, रानी जसवानी, गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम, दशरथ बागवान, लोकेन्द्र वर्मा, रूपा खेड़ी देवास से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल निरंजन माली, जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और कालू भैया। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं दयावान फिल्म का।

मंत कुमार का। इस गीत की फरमाइश भेजी है बृहस्पति मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय शिरोडकर, जयराज क्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट, राजेंद्र नगर गंज बासोदा जिला विदिशा से भाराचंद साहू, राज साहू, करिश्मा साहू, अजय साहू और प्रेमा बाई साहू। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं खामोशी फिल्म का ये नगमा।

इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच।

0: इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की दूसरी कड़ी।
2: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना रायबरेली की साई नदी पर कंपनी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले दो मजदूरों शंभू पासवान और यशवंत, दलित मजदूरों की दुर्दशा, उनकी भूख व दूसरी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और मजदूर यूनियन के नेताओं की कमियों पर टिप्पणी करते हैं। यूनियन के प्रतिनिधि राम बहादुर पर यूनियन के पैसों का गबन करने के कारण उसे यूनियन से हटाए जाने की बात चलती है। यूनियन में अभी तक दलित मजदूरों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था, अतः यशवंत को राम बहादुर की जगह प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने की कोशिशें तेज होती हैं। नारायणी चारिंगखेरा नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट में मजदूरी करके अपना पेट भरती है। उसका ब्याह तो हो चुका है मगर गौना नहीं। साइट के मैनेजर का छोटा भाई चौधरी नारायणी को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसे गर्भवती बनाकर चला जाता है। अब

0: क्या कह रही है नारायणी तू?
1: उस चौधरी का बीज तेरे पेट में? हाय तेरी मति मारी गई है क्या? अरे तुझे सोचना चाहिए था कि तू शिबू की अमानत है।
0: मुझसे बड़ी भूल हुई काकी, मुझसे बड़ी भूल हुई। जमीन पर रहकर मैं आसमान छूने चली थी, मगर अब तो मैं पाताल में धस गई हूँ। बस काकी, अब तो मेरे सामने एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता।
1: देख नारायणी, देख, अब ये रोना धोना बंद कर और अपनी बात मुझसे कह।
0: काकी, मेरे लिए सिवाय मौत के दूसरा रास्ता क्या है?
1: नारायणी,
0: मन करता है कि इसी समय नदी में डूब मरूं।
1: खबरदार, खबरदार नारायणी, फिर कभी ऐसी बात मुंह से ना निकालना। अरे ये जीवन तो भगवान का दिया है, इसे लेने का अधिकार केवल भगवान को ही है।
0: तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं काकी? आज नहीं तो कल दुनिया को इस बारे में तो पता चलेगा ना। किस तरह दिखा पाऊंगी दुनिया वालों को अपना मुंह?
1: तो चिंता ना कर नारायणी, चिंता ना कर, भगवान इतना निष्ठुर नहीं है, भगवान पर भरोसा रख।
0: काकी, क्या भगवान मेरा अपराध क्षमा कर देंगे? मुझे इस बदनामी से भगवान बचा लेंगे क्या?
1: अरे क्यों नहीं, भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। देखना रानी, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच है, इसका जिक्र किसी दूसरे से ना करना।
0: लेकिन इससे होगा क्या काकी?
1: तू बहुत ना बोलना रानी, हमारी बात को ध्यान से सुन। हाँ, क्या नाम है उसका? शिबू। हाँ शिबू, देख हम उससे मिलके तेरे गौना की बात कर लेंगे। हैं
0: काकी, काकी क्या वो मेरा मेरा गुनाह क्षमा कर देंगे?
1: अरे क्षमा तो वो जब करेगा ना, जब उसको कुछ पता लगेगा।
0: भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है, अपना अपराध छिपाकर जिंदगी भर उनका सामना किस तरह करूंगी मैं, किस तरह?
1: अरे तू दिमाग पर अधिक जोर ना डाल। देखना रानी,

0: मेरी बात को ध्यान से सुन। गौना होने के एक महीना बाद शिबू को कहना कि वो बाप बनने वाला है। अरे बच्चा तो सतमासा अठमासा होना कोई नई बात नहीं है ना। इस तरह तेरी इज्जत बच जाएगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा। हाँ नारायणी, हमारी बात मान ले नारायणी, इसी में तेरा भला है।
1: ठीक है काकी, आप मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है।
0: हाँ बेटा,
1: आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी।
0: हाँ ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक, हम आज ही जाकर शिबू से बात करते हैं। हाँ तू घबराना।
2: नारायणी तुम नहीं जानती, नारायणी तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ।
1: किस्मत तो मेरी जागी है जी, जो आप जैसा पति मुझे मिला।
2: नारायणी सच बात तो यह है नारायणी कि भगवान ने हम दोनों का संयोग स्वर्ग में ही लिख दिया था। और हम दोनों ने तो भगवान की इच्छा को पूरा किया है ना।
1: स्वामी आज हमारे मिलन की पहली रात है।
2: नारायणी
1: अगर आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप इनकार तो नहीं करेंगे ना।
2: अरे नारायणी कैसी बात करती है तू, अरे तू मेरी अर्धांगिनी है और अर्धांगिनी का मतलब तो जानती है ना तू।
1: जी इसका मतलब हुआ कि मैं आपके शरीर का आधा हिस्सा हूँ।
2: अरे वाह शाबाश, बहुत अच्छा, बस इसी तरह मैं भी तुम्हारे शरीर का आधा हिस्सा हूँ, यानी कि हम दोनों मिलकर ही पूर्ण हुए हैं, है ना। इस नाते हम दोनों को एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना होगा, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना होगा, तभी तो हम अपनी गृहस्थी को चला सकते हैं, है ना
1: जी।
2: क्यों नारायणी तुम मेरी बात से सहमत हो ना।
1: जी पति का वचन तो परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। क्या कभी परमेश्वर के आशीर्वाद से असहमत हुआ जा सकता है।
2: नारायणी तुम कितनी अच्छी हो। अरे हाँ मैं तो भूल गया, तुम मुझे कुछ कहना चाहती थी ना, कुछ मांगना चाहती थी।
1: हाँ जी
2: तो फिर कहती क्यों नहीं, कहो ना।
1: पहले आपको वचन देना होगा।
2: वचन
1: जी?
2: पहले बताओ तो सही।
1: नहीं नहीं पहले वचन दीजिए ना।
2: अच्छा बाबा अच्छा, लो मैंने वचन दिया। आप कहो क्या कहना चाहती हो।
1: मुझसे भारी भूल हो गई है, भारी अपराध हुआ है मुझसे। हाँ आपको मेरी इस भूल को क्षमा करना होगा।
2: नारायणी ये तुम क्या कह रही हो। अरे भला ऐसा तुमसे कौन सा अपराध हो गया जिसके लिए तुम मुझसे क्षमा मांग रही हो।
1: वो बात ये है कि मैं।
0: देख नारायणी इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। नरक बन जाएगी जिंदगी, नरक बन जाएगी।
2: ए नारायणी क्या बात है, अरे तुम ये कहते कहते क्या सोचने लगी। नारायणी
1: कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं।
2: अरे तुम फिर बताओ ना, अरे तुमसे कौन सा गंभीर अपराध हुआ है बोलो।
1: वो बात ये है कि
2: हाँ बोलो ना, बोलो बोलो।
1: नहीं वो अभी मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ इंसान से गलती तो कभी भी हो सकती है ना, इसलिए क्षमा करने का वचन पहले ही मांग लिया आपसे।
2: नारायणी तुम भी खैर कोई बात नहीं। ए नारायणी
1: जी
2: हमें मिलन की इस रात को

0: कल्पना भी नहीं की थी। आज से मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है।
1: हाँ, मेरा भी। देखो नारायणी, हम दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी रूपी बगिया को प्यार से सींचेंगे। मैं दुनिया के सारे सुख तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। ए नारायणी, मैं तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाकर रखूंगा। मलिका नारायणी
0: स्वामी।

0: यूनियन के तमाम साथियों
1: सुनो कह रहे हैं कुछ सुनो।
0: आज की ये आम सभा यूनियन के प्रतिनिधि राम बहादुर को यूनियन का धन गबन करने के आरोप में उनके पद से हटाए जाने के विषय को लेकर बुलाई गई थी। लेकिन राम बहादुर ने अपनी गलती का एहसास कर लिया है, साथ ही यूनियन का धन वापस लौटाने का वादा किया है, अतः उन्हें क्षमा दान दिया जाता है। यदि आप में से किसी को कोई भी संदेह हो तो वो प्रश्न कर सकता है। मेरे विचार में हमारे निर्णय के बाद किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
2: क्या आप भगवान हैं अध्यक्ष महोदय?
0: नहीं, मैं आप लोगों का अपना साथी हूँ, किंतु यशवंत तुम्हारे प्रश्न का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया, शायद ही किसी की समझ में आया हो।
3: यशवंत के प्रश्न का अर्थ मैं जानता हूँ अध्यक्ष महोदय।
0: शंभू, तुम इस नादान का समर्थन कर रहे हो।
3: क्षमा करें अध्यक्ष महोदय, नादान कौन है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि आप भगवान नहीं हो सकते।
0: क्या मतलब है तुम्हारा शंभू?
3: अध्यक्ष महोदय, मतलब ये कि राम बहादुर ने हो सकता है कि आपके सामने गलती मान ली हो, या ये भी हो सकता है कि आप उससे मिल गए हो।
0: शंभू पासवान, क्या तू जानता है कि तेरे इस आरोप का क्या परिणाम होगा?
4: महोदय, मैं डेढ़ टांग का जरूर हूँ, किंतु इतना जरूर जानता हूँ कि शंभू का परिणाम उसकी मौत से अधिक नहीं हो सकता।
0: अरे ओ लिचू, तेरे कहने का मतलब क्या है?
1: लिचू के कहने का क्या मतलब है और शंभू आपको क्या समझाना चाहता है, ये बात आपको पल भर में समझ आ जाएगी।
0: लगता है आप सभी दलित मजदूर आपस में सलाह करके आए हैं कि आज की आम सभा नहीं चलने देंगे।
1: गलत, बिल्कुल गलत। ये सोच तो आपकी है अध्यक्ष महोदय, अन्यथा आप राम बहादुर का पक्ष स्वयं नहीं रखते, बल्कि राम बहादुर अपना पक्ष खुद इस आम सभा में रखता।
5: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं?
1: इसलिए कि तुमने मजदूरों के ब्लड बैंक पर डाका डाला है राम बहादुर, मजदूरों के खून पसीने की कमाई को यूनियन के नाम पर हजम किया है तुमने। यहाँ मौजूद मजदूर इस अपराध के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
6: हम इस अपराध के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
0: शांत हो जाइए, कृपया शांत रहिए, हो हल्ला मचाने से आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा।
1: अध्यक्ष महोदय, रवि कांत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मजदूर साथियों, अतः आप लोग शांति का दान दीजिए। यदि मजदूर भाइयों की ओर से अनुमति हो तो अध्यक्ष महोदय से आप लोगों की ओर से मैं बातचीत करूं।
3: अध्यक्ष महोदय, आपको कोई इतराज है?
0: नहीं नहीं।
1: तो ठीक है अध्यक्ष महोदय, आप यूनियन के प्रभावशाली जिला अध्यक्ष हैं, आपको जिला स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन आम

0: सभा में आम सदस्यों की सहमति के बिना नहीं।
1: यशवंत, यशवंत, तुम मेरी पावर को ललकार रहे हो।
0: क्षमा करें महोदय, मैं तो सिर्फ अपने मजदूर भाइयों का पक्ष रखना चाहता हूँ। आप बहुमत के बिना अल्पमत में निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो कानून सम्मत नहीं होगा।
1: तो तेरे पर निकल आए हैं।
0: गलत महोदय, गलत। ये मुहावरा चींटियों पर फिट बैठता है, इंसानों पर नहीं। और मैं एक इंसान हूं।
1: चलो चलो, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूं। अब तुम बताओगे कि आम सभा का निर्णय क्या होना चाहिए?
0: राम बहादुर की यूनियन से बर्खास्तगी।
2: बर्खास्तगी।
1: ठीक है, मैं आम सभा की राय का सम्मान करते हुए राम बहादुर को यूनियन से निकालने का ऐलान करता हूँ, किंतु इस स्थान पर किसी की नियुक्ति तो करनी होगी ना, इसलिए मैं।
3: धैर्य अध्यक्ष महोदय,
1: अब क्या परेशानी है शंभु? आम सभा की राय से मैं सहमत तो हो चुका हूँ।
3: आज तक यूनियन में दलित मजदूरों का कोई प्रतिनिधि नहीं रखा गया।
4: तो फिर हमारी इच्छा है महोदय कि इस बार होने वाली नियुक्ति में दलित मजदूरों का प्रतिनिधि रखा जाए।
1: अरे वाह वाह, तुम लोग क्या चाहते हो कि हम यूनियन में अनपढ़ गवारों को रख लें?
4: सावधान अध्यक्ष महोदय, वो जमाना गुजर गया जब दलित सदियों से सामाजिक अन्याय का शिकार होकर अशिक्षित रह जाया करते थे। अरे बाबा साहब अंबेडकर और गांधी भगवान की कृपा से आज हमें बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। आज दलित समाज में पढ़े लिखे लोग भी हैं।
1: हाँ हाँ होंगे, मगर तुम लोगों के बीच ऐसा कौन है जो पढ़ा लिखा है?
3: क्यों नहीं, हमारा यशवंत मैट्रिक पास है। हम यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में यशवंत के नाम का प्रस्ताव रखते हैं।
1: सुनो मजदूर साथियों, अध्यक्ष पद का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो बहुमत का सम्मान करे। इस नाते मैं राम बहादुर को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए बर्खास्त करता हूँ। उसके स्थान पर आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए दलित समाज के नए नेता यशवंत को नियुक्त करता हूँ।
3: भाई यशवंत,
5: जिंदाबाद।
3: भाई यशवंत,
5: जिंदाबाद।
3: भाई यशवंत,
5: जिंदाबाद।

0: नारायणी, ओ नारायणी, अरे कहाँ हो तुम?
1: आती हूँ जी।
2: जी कहिए, क्या बात है जी? सुनी क्यों लटका रखा है?
3: नारायणी, बहुत बुरी खबर है, बहुत ही बुरी।
2: हाँ, क्या हुआ है? मुझे भी तो कुछ पता चले।
3: ब्राह्मण महाराज की मृत्यु हो गई है। नारायणी, अब मेरे पास कोई काम नहीं रहा। एक बार फिर मैं बेकार हो गया।
2: अब क्या होगा जी?
3: वही तो मैं सोच रहा हूँ, घर का खर्चा कैसे चलेगा?
2: उसकी चिंता ना करो जी, मैं तो मजूरी कर ही रही हूँ ना।
3: सो तो ठीक है, लेकिन क्या ये अच्छा लगेगा कि घर बैठे मैं खाट तोड़ूं और तुम मजूरी करने जाओ? क्या एक मर्द को ये शोभा देगा?
2: भगवान पर विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देंगे।
3: देखो तो नारायणी, कौन आया है?
2: हाँ, अभी देखते हो जी। अरे बसुमती काकी, आप?
4: नारायणी,
2: कहिए कैसे आना हुआ?
4: अरे यहीं से वापस लौटाना चाहती है क्या?
2: माफ करना काकी, अंदर आइए ना।
3: अरे राम राम काकी।
4: जीते रहो बेटा, जीते रहो।
3: काकी सब ठीक ठाक तो है ना?
4: अरे क्या बताऊं बेटा, कलयुग है कलयुग। ये कंपनी का मैनेजर, अरे ये तो कलयुग का रावण है, है? हम गरीब मजदूरन को मजदूरी से हटाकर दूसरी जगह भेजा जा रहा है।
2: काकी ये क्या कह रही हूँ?
4: तुम्हारी कसम नारायणी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं।
3: लेकिन काकी, मजदूरों को अब कहाँ भेजा जा रहा है?
4: साई नदी पर शिबू। अरे यहाँ से 50 मजदूरों को साई नदी पर भेजा जा रहा है।
2: मतलब ये कि यहाँ से हम लोगों का दाना पानी उठ गया है?
4: अरे कुछ न कह नारायणी, सामान वामान बांध ले, संध्या तक यहाँ से निकल पड़ना होगा।
2: ठीक है, ठीक है काकी। हाँ,
4: जल्दी कर।
2: ठीक।
3: नारायणी, अरे अचानक तुम्हें क्या हो गया?
2: अरे क्या हुआ?

0: रानी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: अरे हट तो जरा शिभू, हमें देखने तो दे।
0: हाँ काकी देखो ना, तुम्हें देखो मेरी नारायणी को क्या हो गया है, देखो तो।
1: अरे देखने तो दे।
0: हाँ देखो देखो राम।
2: अरे अरे लड्डू खिलाओ शिबू, लड्डू खिलाओ।
0: लड्डू?
2: अरे बाप बनने वाला है तू।
0: अरे सच काकी, अरे मैं बाप, अरे सच काकी, ओ

0: क्यों भैया? अरे कैसे चहलकदमी कर रहा है?
1: पर तू कौन है भाई?
0: अरे भाई मैं लिचू हूँ, यहीं पर सफाई कर्मचारी हूँ।
1: ठीक है, तो मुझसे क्या काम है?
0: अरे कुछ नहीं कुछ नहीं।
1: तो भैया फिर मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहा है?
0: अरे बर्बाद नहीं कर रहा भैया, मैं तो समय पास कर रहा हूँ।
1: समय पास क्या मतलब?
0: मतलब साफ है भैया, अरे तू भी अकेला घूम रहा है, मैं भी अकेला घूम रहा हूँ। अरे भैया क्यों ना थोड़ी देर यही सही किनारे बैठते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, तो समय भी आराम से कट जाएगा।
1: अरे लगता तो तू दिलचस्प है, तेरे साथ दोस्ती अच्छी निभेगी।
0: ये हुई ना बात, आओ बैठते बैठते
1: चल।
0: तूने भाई मेरा नाम तो जान लिया लेकिन अपना नाम नहीं बताया।
1: मेरा नाम मेरा नाम है शिबू धासला।
0: ओहो शिबू धासला, अरे अच्छा नाम है शिबू, बुरा नाम माने तो एक बात पूछो शिबू।
1: हाँ हाँ पूछना, अरे दोस्त की बात का बुरा नहीं माना जाता लिचू। जो कहना है मुझे अपना समझ कर कह।
0: अच्छा अच्छा एक बात बता शिबू, तू इतना परेशान क्यों है? अरे मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। हाँ
1: लिचू भैया अब क्या बताऊं, साई की साइट पर आए हुए 7 महीने हो गए, मगर देखो ना अभी तक कोई काम ही नहीं मिला।
0: अरे शिवू भैया हम लोग तो भगवान भरोसे हैं, काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक।
1: अरे लिचू भैया तुम कितने अच्छे हो, कितने भले हो। लिचू भैया तुमसे दिल खोलकर बात करने की इच्छा हो रही है।
0: अरे तो कर ना शिवू कर, दिल की बात कहने से मन का बोझ उतर जाता है और इंसान स्वयं को हल्का फुल्का महसूस करता है, कर शिवू।
1: वो क्या है देख लीजिए, हाँ? बात ये कि मेरी घरवाली नारायणी को तो काम पर रख लिया है,
0: हाँ?
1: मगर मुझे नहीं रखा।
0: अरे
1: अब देखना घरवाली कमाए और मारत खाए, ये क्या मुझे शोभा देता है?
0: कहता तो तू ठीक है शिवू, लेकिन ये भी सच है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता शिवू। हाँ
1: लेकिन लिचू मुझे खाली नहीं बैठा जाता रे।
0: अरे
1: लिचू भैया
0: देख भाई, वादा तो नहीं करता पर हाँ कोशिश जरूर करूंगा।
1: अच्छा कोशिश करना।
0: शिबू शराब पीता है क्या?
1: नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता।
0: अरे तो आज पी ले, अरे दोस्ती के नाम पर।
1: अरे नहीं नहीं लिचू नहीं, देख मुझे माफ कर,
0: अरे
1: मुझे क्षमा कर लिचू।
0: शिबू शिबू
1: अरे देख ना यार, अगर कहीं नशे में बह गया तो
0: अरे
1: तो गजब हो जाएगा।
0: ए शिवू, हाँ। अरे मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा।
1: अरे सोच ले, देख बाद में तू मुझे कुछ मत कहना।
0: ए शिवू शिवू चिंता मत कर, चल मेरे साथ
1: चल चल चल। कहाँ?
0: अरे खलासी लंगर पर, यहाँ पास में ही है, वहां की शराब की मस्ती का तो बस क्या कहना है, आजा।
1: अच्छा, देख ले फिर सोच ले तू।
0: अरे चल शिवू चल चल आजा आजा
1: चल, ठीक है चल।
2: तुम्हारा इनाम यशवंत है?
3: हाँ मगर तुम कौन हो?
2: यूनियन में तुम ही दलितों के नया नेता के रूप में शामिल हुए हो।
3: हाँ लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो?
2: अभी समझ जाओगे। एक काम करो, लो बीड़ी पियो, साथ में ये माचिस भी दे रहा हूँ तुम्हें।

0: ये बीड़ी भी जलाती है और आग भी लगाती है।
1: देखो मैं बीड़ी नहीं पीता।
0: सुना है, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो। रात को ड्यूटी के वक्त तुम अड्डेबाजी में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करते।
1: मैं जा रहा हूँ, अजनबी लोगों से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है।
0: ठहरो यशवंत, मैं भेटा गांव के लोकल लीडर शास्त्री जी का सहायक हूँ। सहायक माने एजेंट। अब तुम समझ सकते हो कि मुझसे बात करने पर तुम्हारा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं।
1: शास्त्री जी का बहुत नाम सुना है मैंने, उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ मैं। लेकिन तुम मेरे पास किस प्रयोजन से आए हो?
0: मुझे शास्त्री जी ने खुद तुम्हारे पास भेजा है।
1: किस लिए?
0: तुम्हें समझाने के लिए।
1: क्या मैं ना समझूं?
0: हो तो तुम समझदार, लेकिन राजनीति की सारी बातें नहीं जानते, इसीलिए मुझे शास्त्री जी की ओर से तुम्हारे पास आना पड़ा।
1: लेकिन तुम या शास्त्री जी मुझसे क्या चाहते हो?
0: देखो, तुम शास्त्री जी की सलाह के बिना अपनी ओर से कोई कदम मत उठाना। जैसा शास्त्री जी कहे वैसा ही तुम करना, हमेशा फायदे में रहोगे।
1: फायदा? कैसा फायदा?
0: अरे क्या तुम नहीं जानते, यहाँ का ओवरसीयर से लेकर भद्दे मुंह वाला इंजीनियर सबको जानते हैं हम। इंजीनियर कंपनी से हर महीना 2000 लेकर चुपचाप बैठ जाता है, और एसडीओ हर महीने 1500 रुपए लेकर संतुष्ट रहता है। और तो और वो ओवरसीयर हर महीने सिर्फ 50 रुपए लेकर ही, मतलब तुम समझ रहे हो ना?
1: जी हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ मैं आपका मतलब।
0: लोकल लीडर शास्त्री जी यही चाहते हैं कि मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को तुरंत रोका जाए, सभी मजदूरों को परमानेंट किया जाए, और इसके लिए वे मजदूरों की हड़ताल पर विचार कर रहे हैं।
1: क्या?

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा सत्र 2025-26 को भी संशोधित समय सारणी जारी कर दी है और परीक्षाएं 16 जून से 23 जून के बीच आयोजित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया कल 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में महुआ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज कई लोक नृत्यों के साथ ही महाबली, छत्रसाल, बुंदेल, केसरी के जीवन पर नृत्य नाट्य प्रस्तुति होगी। और मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

महिला सभा सुनने वाले सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम आपसे बहुत सी चर्चाएं करेंगे, साथ ही सुनवाएंगे गीत संगीत। सबसे पहले हम आपसे बात करने जा रहे हैं भूखे को अन्न प्रत्येक को रोटी के विषय में। बहनों, यह विषय केवल भारतीय संस्कृति की महानता का परिचायक ही नहीं है, बल्कि मानवता, सेवा, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी व्यक्त करता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर यह विषय और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि आज विश्व के सामने खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और भूख जैसी गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जहां संस्कृति का आधार केवल भौतिक प्रगति नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाएं हैं। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा है। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तब उसके लिए भोजन ही सबसे बड़ा उपहार होता है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में अन्नदान को महादान कहा गया है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है वह सबसे बड़ा पुण्य अर्जित करता है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है। जब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं तब किसी भी व्यक्ति का भूखा रहना हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यही भावना भूखे को अन्न सभी को रोटी के विचार में निहित है। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का सार है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही अन्न को देवता के समान सम्मान दिया गया है। भोजन केवल शरीर को ऊर्जा देने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। इसलिए भोजन का सम्मान करना और जरूरतमंदों तक पहुंचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। बहनों, हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल भोजन की उपलब्धता नहीं है बल्कि ऐसा भोजन उपलब्ध होना है जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो, पोषण से भरपूर हो और सभी लोगों तक समान रूप से पहुँच सके। बहनों, आज विज्ञान और तकनीक के इस युग में भी दुनिया के करोड़ों लोग भूख और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार आज भी लाखों बच्चे पर्याप्त भोजन और कुपोषण के अभाव में अपना शारीरिक और मानसिक विकास नहीं कर पाते। दूसरी ओर बड़ी मात्रा में भोजन प्रतिदिन बर्बाद भी हो जाता है। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि यदि भोजन का सही प्रबंधन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। हमारे गाँव में पहले अतिथि, निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार हजारों स्वयंसेवकों और संस्थाओं ने जरूरतमंदों की मदद की। यह भारतीय संस्कृति में निहित सेवा और करुणा की भावना का उदाहरण है। बहनों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम भोजन की बर्बादी को रोकें। हमें अपनी थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। यह न केवल संसाधनों की बचत करेगा बल्कि भोजन के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित करेगा।

0: आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं राष्ट्र की तीन दिशाओं में सुरक्षा के कवच महासागर के विषय में। बहनों, यह तो आप सभी जानती ही हैं कि भारत एक महान समुद्री राष्ट्र है। हमारे देश की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है और तीन दिशाओं से महासागर हमें घेरते हैं। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ये महासागर केवल जलराशि नहीं है बल्कि हमारे राष्ट्र के प्राकृतिक कवच हैं। महासागर हमारी सुरक्षा, व्यापार, जलवायु और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है। हमारे मछुआरों की आजीविका, समुद्री जैव विविधता और पर्यटन उद्योग भी महासागरों पर निर्भर है। महासागर पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए महासागर मानव जीवन के लिए अमूल्य है। लेकिन आज महासागर प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यदि हम इन्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भविष्य में मानव जीवन भी संकट में पड़ सकता है। विश्व महासागर दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम समुद्रों को स्वच्छ रखेंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे और समुद्र पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देंगे, क्योंकि राष्ट्र की तीन दिशाओं के ये कवच हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों की सुरक्षा करते हैं। बहनों, पानी को सुरक्षित रखने के लिए आइए सुनवाते हैं आपको यह वार्ता, जिसका विषय है रहिमन पानी राखिए। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं श्रीमती नम्रता पांडे।
1: पानी है अनमोल, इसका नहीं है कोई तौल। पृथ्वी के सभी जीवों के लिए जल एक बहुमूल्य संपदा है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, या यूं कहें कि सभी सजीवों के जीने का आधार है जल। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें से 97% पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में मात्र 1% पानी ही मानव के उपयोग हेतु उपलब्ध है। ताजे और स्वच्छ पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए विभिन्न माध्यमों से जल बचाना जल संरक्षण है। यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है ताकि दुनिया भर के लोगों के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी ताजा और स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। स्वच्छ जल प्रत्येक प्राणी के लिए बहुत मूल्यवान है और इसका संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि जल है तो कल है। बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। बहनों, हम हमेशा से ही सुनते आए हैं कि जल है तो जीवन है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि हम अपने आने वाले कल को सुरक्षित रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में पानी की एक एक बूंद के लिए हमें ना तरसना पड़े, तो उसके लिए

0: ये हमें अभी से प्रयास करने होंगे। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की तीव्र गति और बढ़ता प्रदूषण और जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। प्रतिवर्ष यह समस्या पहले के मुकाबले और बढ़ती जाती है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं कि बस जैसे तैसे गर्मी का सीजन निकल जाए, बारिश के आते ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी, और यह सोचकर जल संरक्षण के प्रति बेरुखी अपनाए रहते हैं। आगामी वर्षों में जल संकट की समस्या और अधिक विकराल हो जाएगी। दुनिया भर में 75% से ज्यादा लोग पानी की कमी के संकटों से जूझ रहे हैं। शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता और इससे संबंधित बहुत सी समस्याओं को जानने के बावजूद हम अभी भी जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं हैं। आज भी शहरों में फर्श चमकाने, गाड़ी धोने और गैर जरूरी कार्यों में पानी को बेतहाशा बहाया जाता है। जहां लोगों को मुश्किल से पानी मिलता है, वहां लोग जल की महत्वता को समझ रहे हैं, लेकिन जहां बिना किसी परेशानी के जल मिल रहा है, वहां लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। प्रदूषित जल में आर्सेनिक, लोहा आदि की मात्रा अधिक होती है, जिसे पीने से तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 86% से अधिक बीमारियों का कारण असुरक्षित और दूषित पेयजल है। दुनिया भर में हर साल लगभग 3.4 मिलियन लोग पानी से संबंधित बीमारियों के कारण मर जाते हैं। विश्व में पानी से पैदा होने वाली बीमारी से हर 15 सेकंड में एक बच्चे की मौत हो जाती है। वर्तमान में करीब 1600 जलीय प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। विश्व में करीब 1 अरब लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं और साफ पानी के बगैर अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति सभी के लिए बहुत चिंताजनक है। इस दिशा में अगर त्वरित कदम उठाते हुए सार्थक पहल की जाए तो स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में रखी जा सकती है, अन्यथा अगले कुछ वर्ष हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। पृथ्वी पर भयंकर सूखे जैसे जल संकट को टालने के लिए हम सबको जल को कम से कम और सही तरीके से उपयोग करना होगा। अगर हम चाहें तो अपने छोटे छोटे कार्यों द्वारा सैकड़ों गैलन पानी बचा सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। हमें अपनी दैनिक गतिविधियों जैसे हाथ धोते, मंजन करते समय पानी के नल को बंद रखना चाहिए। स्नान के दौरान पानी बचाने के लिए प्रवाह प्रतिबंधित शॉवर हेड्स लगाना। घरों में किसी भी तरह के पानी के लीकेज को तुरंत ठीक कराना चाहिए ताकि इससे होने वाली पानी की बर्बादी को रोका जा सके। शावर के स्थान पर बाल्टी मग का प्रयोग करना चाहिए। कार धोने के लिए पाइप के इस्तेमाल से काफी मात्रा में पानी नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें इसके स्थान पर बाल्टी मग का प्रयोग करना चाहिए। सब्जी और फलों को खुले नल के नीचे धोने की बजाय पानी से भरे हुए बर्तन में धोना चाहिए। बहनों, घर में जो हम रोज पीने का पानी भरते हैं, तो बर्तनों का बासा पानी यूं ही व्यर्थ में ना फेंके। उस पानी को हम पेड़ पौधों में दें या उस पानी को दूसरे बर्तनों में भरकर नहाने धोने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जब हम बर्तन साफ करते हैं या कपड़े धोते हैं, तो जो पानी बचता है उसे भी हम अपने दूसरे दैनिक जीवन के कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। हम आमतौर पर यह देखते हैं कि अधिकांश वर्षा जल बर्बाद हो जाता है, हालांकि यह सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। इस वर्षा जल का उपयोग वर्षा जल संचयन द्वारा भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए किया जा सकता है। घरों में छत से इस तरह से पाइपलाइन फिट करवाएं जिससे घर की छत से सीधे वर्षा जल पाइपलाइन द्वारा सोखते गड्ढे में जाए। सोखते गड्ढे से पानी सीधे धरती में जाकर भूमिगत हो जाता है, जिससे जल का स्तर बढ़ता है और हमें जल की प्राप्ति होती है। कुएं तालाब बनाकर भी बहते हुए पानी को रोका जा सकता है। वर्षा जल संचयन भूजल स्तर को कम होने के बजाय और अधिक बनाए रखने में सक्षम बनाता है और सूखे के प्रभाव को भी कम करता है। किसान ड्रिप सिंचाई के रूप में जानी जाने वाली इस सिंचाई विधि का उपयोग करके जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस तकनीक में पौधों को संकीर्ण ट्यूबों का उपयोग करके पानी पिलाया जाता है और यह पानी सीधा पौधों के आधार तक पहुंचाया जाता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं क्योंकि वृक्ष बादलों को आकर्षित कर वर्षा कराने में सहायक होती हैं। हम बारिश की बूंदों को सहेजें और पानी बचाएं, तो क्यों ना पर्यावरण की खातिर वर्षा जल संचयन के संधारणीय पर्यावरण अनुकूल और जैविक तरीके अपनाएं, जैसे वर्षा उद्यान। इसमें गीली घास के साथ साथ देशी पौधों का उपयोग करके पानी के दूषित पदार्थों को हटाया जाता है। यह वर्षा जल को जमीन में और अधिक रिसने देता है, जिससे भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है। बारिश के पानी को इकट्ठा करने का एक और आसान और सरल तरीका है वर्षा तस्तरी बनाना। यह एक अनबाउंड रेन वाटर कलेक्शन स्ट्रक्चर है, जिसमें एक ऊपरी हिस्सा होता है जो उल्टे छतरी जैसा दिखता है, जिसमें एक फनल होता है जो बारिश के पानी को इकट्ठा करता है और इसे नीचे से जुड़े बैरल में स्टोर करता है। वर्षा बैरल स्थापित करना। रेन बैरल कुछ भी हो सकता है जो वर्षा जल भंडारण कंटेनर के रूप में काम करता है, जैसे खाली ड्रम। छत से पानी को इसमें स्थानांतरित करने के लिए यूनिट को एक पाइप से जोड़ना होगा। कंटेनर को मच्छरों और कीड़ों के प्रजनन स्थल बनने से रोकने के लिए बैरल की ओर जाने वाले डाउन स्पॉट्स के सिरों को स्क्रीन करते हुए इसे एक टाइट फिटिंग टॉप से ढकना सुनिश्चित करना है। वर्षा श्रृंखला बनाना। घर की साज सज्जा को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त लाभ के साथ रेन चेन मजेदार और फैशनेबल एक्सेसरीज है, जो एकत्रित पाइपों से वर्षा जल को स्टोरेज कंटेनर या नाली में स्थानांतरित करके अपवाह से बचने में मदद करती है। बहनों, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम वर्षा जल को बचा सकते हैं। यह हर समुदाय के लिए बेहतरीन लाभ प्रदान करता है और उन क्षेत्रों में अविश्वसनीय समाधान प्रदान करता है जहां पर्याप्त वर्षा होती है लेकिन भूजल की आपूर्ति नहीं होती है। पानी की बर्बादी को कम करने के लिए कई तकनीक उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों के लिए भूजल के इस्तेमाल को मितव्ययता से करे तो इसका प्रभाव और भी अधिक होगा। हर साल हमारी जल आपूर्ति कम होती जा रही है। हम कृत्रिम जल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं और हमें अपने ग्रह पृथ्वी पर उपलब्ध जल स्रोतों पर निर्भर रहना है। जनसंख्या वृद्धि और हमारी लगातार बढ़ती आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप पानी की असंतुलित आवश्यकता के कारण दुनिया भर में पानी की कमी महसूस की जाती है। इसने जल संरक्षण के बारे में पर्याप्त चिंताओं को जन्म दिया है। आज हमें जरूरत है संसाधन प्रबंधन की, दक्षता में सुधार की और ऊर्जा को संरक्षित और सुरक्षित रखने की। तूफानी पानी और अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण और गैर पारंपरिक जल स्रोतों को स्थापित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश की खोज की जानी चाहिए। साथ ही बेहतर जल भंडारण के अवसर भी तलाशने चाहिए। बहनों, हम सभी ने ये पंक्ति तो सुनी ही है कि रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। जीवन का प्रारंभ लगभग 300 करोड़ साल पहले पानी से हुआ था। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से व्याप्त है। वजन के हिसाब से सजीवों के शरीर में 65-70% जल ही होता है। जल के बिना ना प्राणी जगत जीवित रह पाएगा और ना ही वनस्पति जगत। इस रंग बिरंगी दुनिया का अस्तित्व पानी पर ही टिका हुआ है, इसलिए अनायास ही यह कहना पड़ता है कि बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचा कर रखिए, क्योंकि बिन पानी के सब कुछ सूना है। रहीमन पानी राखिए, हर जतन से पानी रखिए। पानी चले जाने पर फिर उबरने की कोई आशा नहीं रहती, इसलिए बहनों पानी को बचा कर रखिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है।
1: बहनों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था रहीमन पानी राखिए। इस विषय पर जानकारी दे रही थी श्रीमती नम्रता पांडे। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान जननायक, स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी समाज के गौरव, भगवान बिरसा मुंडा और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में, जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। बहनों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के दूर दराज, जंगलों, पहाड़ों और गांवों में भी स्वतंत्रता की ज्योति

0: प्रज्वलित थी। आदिवासी समाज ने भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस संघर्ष के सबसे चमकदार नक्षत्र थे भगवान बिरसा मुंडा। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू में हुआ था, जो आज झारखंड में स्थित है। उनका जन्म एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। बचपन से ही उन्होंने अपने समाज की पीड़ा, शोषण और अन्याय को देखा। अंग्रेजी शासन, जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का लगातार शोषण किया जा रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी, उन पर अत्यधिक कर लगाए जा रहे थे और उन्हें अपने ही जंगलों से वंचित किया जा रहा था। बिरसा मुंडा ने इन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। उन्होंने सामाजिक सुधारों पर भी बल दिया। वे चाहते थे कि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और कुरीतियों से मुक्त होकर शिक्षा और एकता के मार्ग पर आगे बढ़े। अपने महान व्यक्तित्व और जन सेवा के कारण लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे और उन्हें धरती आभा अर्थात धरती पिता कहा जाने लगा। बहनों, बिरसा मुंडा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया उलगुलान अर्थात महान विद्रोह। यह आंदोलन 1899 से 1900 के दौरान हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य केवल अंग्रेजों को चुनौती देना ही नहीं, बल्कि आदिवासियों को उनकी भूमि, संस्कृति और अधिकार वापस दिलाना भी था। बिरसा मुंडा ने नारा दिया, अबुआ दिशुम अबुआ राज अर्थात अपना देश अपना राज। यह नारा स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट हुए। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया। यद्यपि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, लेकिन बिरसा मुंडा और उनके साथियों के साहस ने सिद्ध कर दिया कि भारत का हर वर्ग स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में बिरसा मुंडा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उस समय अंग्रेजी शासन को चुनौती दी जब राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन अभी प्रारंभिक अवस्था में था। बहनों, उनका संघर्ष केवल आदिवासी अधिकारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई का भी हिस्सा था। उन्होंने भारतीयों को आत्मसम्मान, स्वराज और अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। दुर्भाग्यवश अंग्रेज सरकार ने 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। बहनों, उनका जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बहनों, आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तब हमें उन वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। बिरसा मुंडा ने हमें सिखाया कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने एकता, साहस, स्वाभिमान और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह दिन हमें उनके महान योगदान और आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। बहनों, भगवान बिरसा मुंडा केवल आदिवासी समाज के नायक नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जीवन हमें राष्ट्र प्रेम, संघर्ष और न्याय के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। हमें उनके आदर्शों को अपनाकर एक सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। ऐसे महान व्यक्तित्व को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन है। बहनों, गर्मियों के मौसम में हम सभी का मन करता है कुछ हल्का फुल्का खाने का, और शाम को बच्चे जब खेलने जा रहे होते हैं या सोकर उठते हैं तब भी उनका मन करता है कि कुछ उन्हें हल्का फुल्का खाने के लिए दिया जाए। तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं झालपुरी और भेलपुरी। बहनों, झालपुरी उड़ीसा, बिहार और कोलकाता की मशहूर है, जबकि भेलपुरी मुंबई का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसमें मीठी और तीखी चटनियों का स्वाद होता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम दो अलग बड़े बर्तन ले लेंगे जिनमें हमें यह सामग्री मिलानी है। बस कुछ चीज़ों को यदि हम अलग हटा दें तो दोनों में ही काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे कि दोनों में ही मुरमुरे डलते हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें दोनों में डाली जाती हैं। नमकीन आप जिस भी तरह का डालना चाहें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दो बड़े बर्तन ले लिए हैं, जिनके अंदर हम 3-3 कप मुरमुरे डाल देंगे। एक बर्तन में हम बना रहे हैं जालपुरी और दूसरे में हम बना रहे हैं बेलपुरी। इसी के साथ दोनों में ही हम डाल देंगे मूंगफली भुनी हुई, आधा छोटा चम्मच नमक, चौथाई चम्मच काला नमक, ये सभी सामग्री हम दोनों भगोनियों में डालते जाएंगे, आधा चम्मच चाट मसाला, एक एक नींबू का रस, सभी तरह के नमकीन जो भी आपके घर में अवेलेबल हो या जो आप डालना चाहें। झालपुड़ी में यहाँ पर जो चना जोर गरम में हम इस्तेमाल करते हैं वह नमकीन भी डाला जाता है, तो यहाँ पर हमने वो भी आधा कटोरी डाला है। बारीक कटा हरा धनिया दोनों में डालेंगे। जिस बर्तन में बहनों आप झालपुड़ी का मिक्सचर बना रहे हैं उसमें आधा कटोरी उबले मटर, जो आप बटरा वाली मटर होती है, इसको आप रात भर भिगो दे पानी में और सुबह आप हल्का सा नमक डालकर इसे बॉईल कर ले, तो ये और आधा कटोरी काले चने यहाँ पर हमने लिए हैं, ये हम झालपुड़ी वाले भगोने में डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल भी झालपुड़ी वाले मिक्सचर में डालेंगे और 1-2 चम्मच आम के अचार का तेल भी हम इसमें डालेंगे, जिसमें कि आप यदि उसका मसाला भी डालना चाहें तो डाल दें। साथ ही हम यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे झालपुड़ी में डालने के लिए, जिसमें हमने लिया है भुना जीरा, साबुत धनिया, अमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इस सभी को हम मिक्सी में अच्छे से क्रश कर लेंगे और फिर इसे भी डाल देंगे। तैयार है आपकी कलकत्ता की मशहूर झालपुड़ी। अब जिस बर्तन में हम भेलपुरी डाल रहे थे उसमें हमें बॉयल पटेटो भी डालने हैं और हरी चटनी और इमली की चटनियां मिलाएं। आप चाहें तो इसमें बारीक कटे खीरे और अनार के दाने भी डाल सकती हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। डेढ़ बज चुके हैं, वक्त है कार्यक्रम लोक संगीत का, जिसमें आज आप सुनेंगे महावीर सिंह भदौरिया के गाए लोकगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी

महावीर सिंह भदौरिया के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्र कुमार ओझा के गाए भजन और गजल। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

स्वतंत्र कुमार ओझा के गाए इस नगमे के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आकाशवाणी प्रसारण संबंधी एक सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopairbhopal@gmail.com पर अपनी प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए शहनाई फिल्म का ये गीत, राजेंद्र कृष्ण का संगीत और गीत रवि का।
1: न झटको जुल्फ से पा

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

0: कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा। कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: केंद्र सरकार ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने आगे कहा कि व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया सहित अन्य देशों से भी आपूर्ति की गई। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए संडे ऑन साइकिल अभियान में हजारों युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साइकिलों की लंबी कतारों ने शहरवासियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने हरी झंडी दिखाकर किया। राजधानी भोपाल के लालघाटी इलाके में आज सुबह एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में 6 छोटे बड़े रेस्टोरेंट संचालित होते हैं, जो आग की चपेट में आ गए। इमारत से उठता काला धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 दमकलें और 3 वाटर टैंकर मौके पर पहुंच गए और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रदेश में मानसून के तय समय से पहले पहुंचने की संभावना बन रही है। केरल से देश में प्रवेश करने वाला मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और शनिवार तक कर्नाटक, तमिलनाडु होते हुए गोवा पहुंच चुका है। इसके बाद जल्द ही महाराष्ट्र में इसकी एंट्री होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम, सिवनी, सीहोर, खरगोन समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जबकि तेज हवाओं के कारण पेड़ और टीन शेड गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। जबलपुर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित करने के संबंध में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को सशर्त अनुमति दे दी है। मध्यप्रदेश के सिंगरौली में एनटीपीसी विंध्याचल ने जैन 2026 की प्रतिभागी बालिकाओं के लिए विशेष साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर 150 बालिकाओं को साइकिलें प्रदान की गईं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगले बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक

0: शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी कम हैं।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और LPG की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रति वर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ

0: अब अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6ठे ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

0: क्योंकि आज हम और आप मिलकर दो बहुत बड़े राज खोलने वाले हैं। पहला राज कि हम खाना, सोना, खेलना, पढ़ाई सब कुछ एक साथ कैसे कर सकते हैं, और दूसरा कि हम पूरी धरती को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। तो अब सब कान लगाकर सुनिएगा क्योंकि हमारी ज्ञान और मस्ती की गाड़ी शुरू होने वाली है।
1: बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी

0: भप भप भप।
1: आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी ए

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मक

मंगल की हार, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, पतलीपट्टनम दिल्लीपट्टनम दिल्लीपट्टनम पतलीपट्टनम, ओंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर, चुक चुक चुक चुक चुक चुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक।

बच्चों एक किस्सा सुनाऊं। एक बार आप ही के जैसा एक छोटा सा बच्चा था। उसके सपने में भगवान जी आए और उन्होंने कहा, वत्स, मैं रोज तुम्हें 24 सोने के सिक्के दूंगा, मगर शर्त ये है कि रात तक उन्हें खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो वो गायब हो जाएंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? आप एक एक सिक्का सोच समझ कर अच्छी चीजों पर खर्च करोगे, है ना? ठीक ऐसा ही जादू रोज हमारे साथ होता है। ऊपर वाले ने हम सबको रोज 24 घंटे दिए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस खजाने को कैसे खर्च करते हैं। इसी को कहते हैं समय का सदुपयोग। याद रखो बच्चों, बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता। कई बार हम क्या कहते हैं, दीदी बस 5 मिनट और रील्स देख लूं, बस 5 मिनट और गेम खेल लूं, और वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर जब मम्मी डांट लगाती हैं, या परीक्षा पास आती है या होमवर्क नहीं हो पाता हमारा, तब हम घबराने लगते हैं कि हाय अब तो टाइम ही नहीं बचा, है ना? होता है ना आपके साथ भी ऐसा? समय का सदुपयोग करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप खेलना ही बंद कर दें, ना भाई ना। मैं खुद 1 घंटे खेलने जाती हूँ क्योंकि व्यायाम शरीर को मजबूत

रखता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर चीज का एक सही वक्त होना चाहिए। एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, रोज सुबह उठकर एक कागज पर लिखो कि आज आपको क्या क्या करना है, जैसे कि एक घंटा पढ़ाई, एक घंटा दोस्तों के साथ बाहर खेलना, फुटबॉल, क्रिकेट या छुपन छुपाई, जो भी आपको पसंद हो। थोड़ा सा समय अपने माता पिता, नाना नानी या दादा दादी के लिए भी निकालें। और छुट्टियों के दिनों में तो एक घंटा कुछ नया सीखने के लिए निकाला ही जा सकता है, जैसे संगीत, तैराकी, पेंटिंग, क्या कुछ नहीं। ठीक उसी तरह जिस तरह स्कूल में टाइम टेबल बनाया जाता है, पहले एक दिन का टाइम टेबल बनाने की कोशिश करें। फिर एक बार समझ में आ जाए कि कैसे ये करना है, तो हफ्ते भर का या महीने भर का भी टाइम टेबल बनाया जा सकता है। जब आप समय को इस तरह बांट लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके पास कार्टून देखने के लिए भी पर्याप्त समय बच गया है और पढ़ाई का भी नुकसान नहीं हुआ है। इसी के साथ एक और मजेदार टिप बताती हूँ। रोज रात को ये लिखें कि आपने दिन भर में क्या क्या किया। ये डायरी आप खुद को शाबाशी देने के लिए बना सकते हैं, प्रोत्साहन देने के लिए बना सकते हैं कि एक दिन में आपने कितना कुछ हासिल कर लिया।

0: बच्चों, अगर हम समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने अंदर की कई सारी खूबियों को निखार सकते हैं, दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। आज ऐसे ही कुछ बच्चों की बाल प्रस्तुतियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम है तन्वी बारस्कर। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है माँ। सबसे प्यारी मेरी माँ, जग से न्यारी मेरी माँ। मैं हंसती तो वो हंसती है, मैं रोती तो रोती माँ। माँ ममता की मूरत होती, माँ भगवान की सूरत होती। माँ ममता की मूरत होती, माँ भगवान की सूरत होती। बचपन

0: आंखों से देखो, माँ सबकी ही सुंदर होती। सबसे पहला पाठ पढ़ाती, अपने मुँह का कौर खिलाती। जब भी मेरे कदम डगमगाते, झटपट से मुझे गले लगा ले। उसने अपनी नींदें छोड़ी, मेरे लिए हर कसम भी तोड़ी। मेरे हर ख्वाहिश के खातिर उसने एक एक पाई थी जोड़ी। बच्चों, माँ की मदद करो, माँ का आंचल सुख से भरो। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया तन्वी। बच्चों, अब हमारे साथ एक और प्यारा सा बच्चा है, देखिए आज हमें वो क्या सुनाने वाला है।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियान संकेत सांगे, मैं हूँ पहली अ में।
1: प्रियान, आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
2: एक छोटा बीज जमीन के अंदर था, आँख बंद करके वो सोया रहता था। टुपुर टुपुर बारिश बीच पे गिरती थी। सरकते सरकते वो सरकता चला गया सरकते

0: वो वृक्ष में बदल गया। आते जाते लोगों को वो छाव देने लगा, हाँ हाँ छाव देने लगा। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया प्रियान। अब अनाया आपकी बारी।
2: नमस्ते, मेरा नाम अनाया चौरसिया है। मैं आज आपको एक भजन सुनाने वाली हूँ।

0: दीदी भला आँख में चोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली।
1: किसने?
2: मैंने? नहीं तो?

बच्चों, अपनी खिड़की से जरा बाहर झांकना। कोई पेड़ दिख रहा है? पौधे दिख रहे हैं? उन पर बैठे पक्षियों को देखो, बाहर चलने वाले जानवरों को देखो, छोटी छोटी चींटियों को देखो, कैसे लाइन बनाकर जाती हैं। देखा है कभी ध्यान से? हमारे माता पिता और दोस्तों के अलावा भी हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, और वो है हमारी प्रकृति। अच्छा, ये बताओ, सच्चा दोस्त कौन होता है? वही ना जो बिना कुछ मांगे हमारी मदद करे और हमें खुशियां दे। तो जरा सोचो, पेड़ों से हमें मीठे फल मिलते हैं, ठंडी छांव मिलती है, रंग बिरंगे फूल मिलते हैं, और सबसे जरूरी, सांस लेने के लिए साफ हवा मिलती है। नदी हमें पानी देती है, बदले में प्रकृति हमसे क्या मांगती है? कुछ भी तो नहीं। लेकिन क्या हम सच्चे दोस्त होने का कर्तव्य निभाते हैं? जब हम प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंकते हैं, पानी बर्बाद करते हैं, बिना किसी वजह पेड़ों की पत्तियों को, फूलों को तोड़ते हैं, तो हमारी दोस्त प्रकृति उदास हो जाती है। भले ही हम आगे बढ़कर अपने दोस्त के लिए कुछ ना करें, मगर उसे चोट भी तो नहीं पहुंचाएंगे, है ना? तो चलो, आज की बाल सभा में हम सब मिलकर प्रकृति के सच्चे दोस्त बने। इसके लिए आपको कोई बड़े बड़े काम नहीं करने, बस छोटी छोटी आदतें बदलनी है। जैसे कि अपने जन्मदिन पर या किसी खास दिन पर एक छोटा सा पौधा लगाएं और रोज उसे पानी दें। जब वो पौधा बड़ा होगा ना, तो आपको उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी किसी छोटे भाई बहन के बड़े होने पर मिलती है। और एक छोटी सी आदत बताती हूँ, पानी की बचत। ब्रश करते समय नल बंद रखें, नहाते समय उतना ही पानी लें जितनी की जरूरत हो। पानी की हर एक बूंद कीमती होती है। और हाँ, गर्मी के दिनों में अपनी छत या बालकनी में एक छोटे से मिट्टी के प्याले में पक्षियों के लिए पानी और थोड़ा सा दाना जरूर रखें। जब वो पंछी आकर पानी पिएंगे, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी जो दुनिया के किसी वीडियो गेम में नहीं मिल सकती।

तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की बाल सभा में हमने दो बहुत बड़ी बातें सीखी। पहली, समय हमारा सबसे बड़ा धन है, इसे यूं ही नहीं गंवाना है। और दूसरी, प्रकृति हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। मुझे पूरा यकीन है कि आज से आप सब अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे और अपने घर के आसपास प्रकृति को और सुंदर बनाएंगे। और हाँ, प्रियांत,

तन्वी और अनाया की तरह आप सब अपनी प्रतिभाओं को प्राथमिकता देंगे। बच्चों, आज की बाल सभा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, समय का आदर कीजिए, प्रकृति से प्यार कीजिए। अपनी महक दीदी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बावजूद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में से संडे ऑन साइकिल अभियान चलाया गया। इसमें हजारों युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में महुआ महोत्सव के तहत आज कई लोक नृत्यों के साथ ही महाबली छत्रसाल बुंदेलकेसरी के जीवन पर नृत्य नाटक की प्रस्तुति होगी। और प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर 6:30 और रात 8:35 पर। पीएम मोदी के 12 वर्ष मध्य प्रदेश बना चीतों का घर, ये कार्यक्रम आप शाम 6:30 सुन सकेंगे। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में 7:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। हेलो ग्राम सभा, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दीनानाथ खोटे। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे और 10:00 सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय कार्यक्रम संगीत सभा में कलाकार विद्वान MSN मूर्ति का वायलिन वादन, ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये थे हमारे केंद्र से शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही GTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे महावीर सिंह भदौरिया के गाए लोकगीत।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। क्षमा कीजिए, लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। सुगम संगीत का कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्र कुमार ओझा के गाए गजल, भजन और नगमा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहला गीत सड़क फिल्म से, अनुराधा पौडवाल की आवाज, सुरेंद्र साथी का गीत और नदीम श्रवण का संगीत।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अब सुनिए सदमा फिल्म का ये नगमा, गीत गुलजार का और संगीत इलिया राजा का।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा जिंदगी एक जुआ फिल्म से, आवाज कुमार सानू की, गीत बप्पी लहरी का और संगीत बप्पी लहरी का।

0: कुमार सानू के गाए इस नगमे के साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सेफ चैंपियन महिला चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत में सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से संडे ऑन साइकिल अभियान चलाया गया। इसमें हजारों युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में महुआ महोत्सव के तहत आज कई लोक नृत्यों के साथ ही महाबली छत्रसाल बुंदेलकेसरी के जीवन पर नृत्य नाटक की प्रस्तुति होगी। और प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

साथियों जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुराण में तव्हां सभिनी खे मां मनोज सोनी पंजवाणीअ पारां सिक भरी नमस्ते। ॼाण ऐं विंदुर सां भरपूर तव्हां सभिनी जे पसंदीदा हिन कार्यक्रम जी शुरूआत कंदासीं अॼु जी ॼाण सां। अॼु जी पहिरीं ॼाण जुड़ियल आहे विश्व पर्यावरण दिवस सां, जेको हर साल 5 जून ते मल्हायो वेंदो आहे। हिन दफ़े इन ॾींहं जो विषय आहे जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट एक्शन, जेको असांखे धरतीअ खां मिलण वारे पर्यावरणीय संकेतनि खे समुझण ऐं उन्हनि जे प्रति ज़िमेदार क़दम खणण जो संदेश ॾींदो आहे। भारत जो मिशन लाइफ पहल इन ई सोच खे अॻियां वधाईंदो आहे। हिन जो ख़ासि उद्देश्य इहो ई आहे त असां पंहिंजे रोज़ जी आदतुनि में बदिलाउ आणे पर्यावरण अनुकूल जीवन ठाहिण जी कोशिशि कयूं, जीअं त ऊर्जा जी बचत, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त वातावरण, सार्वजनिक परिवहन जे उपयोग सां ईंधन जी बचत, ऐं सभ खां ज़रूरी जेका ॻाल्हि आहे उहा आहे वधीक में वधीक वण लॻाइण। पर्यावरण संरक्षण रुगो सरकार जी जवाबदारी कोन्हे, साथियो असांजो बि कर्तव्य आहे त असां इन में पंहिंजी भागीदारी पूरी ईमानदारीअ सां निभायूं। अचो त हिन साल इन ॾींहं ते असां सभु मिली करे संकल्प कयूं त असां पर्यावरण जे अनुकूल जीवन शैली अपनाए प्रकृतिअ खे बचायूं ऐं अचण वारी पीढ़ीअ जे लाइ सुरक्षित भविष्य बणायूं। पर्यावरण जी सूंहं सां ई असांजे मुल्क जी बि सूंहं आहे।

सच ही गीत गायो हो कला हजारी ए गुरदास माली गीत लिखो हो ढोलन राही हाने बी जाना है भगवान बिरसा मुंडा शहीदी दिवस इो डी हर साल 9 जून ते महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया वेंदो आए भगवान बिरसा मुंडा जे बलिदान ए जीवन से जुड़ियल कुछ खास गालियों हिन रीत आहिन उन्हें जो जन्म 15 नवंबर सन 1875 में झारखंड जे खूंटी जिले में उलीहात गांव में थियो हो उल गुलान क्रांति इनन जे जीवन जी हिक या वड़ी क्रांति आहे इनन उन समय जे छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश नीतियुन जमींदारन ए साहूकारन जे शोषणन जे विद्रोह जे खिलाफ इन क्रांति में नेतृत्व कयन अंग्रेजन जे खिलाफ लगातार संघर्षन जे दौरान इनन के गिरफ्तार कयो वयो ए 9 जून सन 1903 रहस्यमयी परिस्थितियुन में रांची जेल में उनन जी मृत्यु थी वई ए हिकड़ी अगली नंढड़ी ॼाण विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो हर साल 12 जून ते मनाया वेंदो आहे इन अंतर्राष्ट्रीय ॾींहं जो खास मकसद बाल श्रम जी समस्या जे बारे में वैश्विक स्तर ते जागरूकता आणण ऐं बाल श्रमिकनि खे इन अभिशाप खां ॿाहिरि कढी करे उन्हनि खे शिक्षा ऐं उज्ज्वल भविष्य प्रदान करणु आहे साथियो इहा हुई ॼाण बाल श्रम दिवस जे बारे में इन खां पहिरियों पई ॻाल्हि हले पर्यावरण जे बारे में त पर्यावरण में असां ॾिसंदा आहियूं त असां सां गॾु गॾु असांजी प्रकृतिअ सां गॾु गॾु पखी पखीअ रूप शामिलु आहिनि त अचो ॿुधूं था इन्हनि पखियुनि ते ई गीत

0: सचे गीत गाय हो पार्वती चावला हैं। गीत का पो अगली जान विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सन 2019 संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव का पो हर साल 7 जून ते इो डी मनायण जो फैसलो कयो वयो। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस एक वैश्विक अभियान आहे। हिन जो उद्देश्य खाद्य सां थियण वारा जेके भी जोखिम आहिन उन्हन जो पतो लगाएं उन्हन ते रोक लगाएं इन अभियान जो खास मकसद आहे। इन अभियान जो नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र जे खाद्य कृषि संगठन पारा जेके भी उन सदस्य राज्य हैं उन्हें पारा कयो वेंदो आहे। साथियों हाणे समय आहे अज जी गाल बोल जो गाल बोल जो मौजूब आहे खाद्य सुरक्षा सा ही जुड़ियल उचित पोषण खाद्य सुरक्षा। इन बारे में वधिक जानींदासे अज जी आयल साथी डॉक्टर ज्योति केसवानी जी जेके नेचुरोपैथी कुदरती इलाज जा प्रोफेसर भी आहिनि ऐं खाधे ते इन्हनि जो विशेष रिसर्च आहे। इन्हनि जूं कुझु किताबियूं बि इन विषय ते शाया थी चुकियूं आहिनि। डॉक्टर ज्योति जी तव्हांजो खोड़ खोड़ स्वागत आहे।
1: धन्यवाद
0: ज्योति जी। जीअं त अॼु जो विषय आहे उचित पोषण ऐं खाद्य सुरक्षा
1: जी,
0: त सभ खां पहिरियों असां इहो ॼाणणु चाहींदासीं त उचित पोषण सां छा तात्पर्य आहे।
1: रोटी तो असा सब खाईंदा आयूं है ना, पर अड़ी रोटी अड़ो खाधो जो पाँ शरीर में वही करे स्वास्थ्य के वधाए न कि उनके घट करे अड़े खाधे के पा उचित पोषण चवंदी। असा जी भी रोटी खाईंदा आयूं वो कई पहलुओं में वही करे शरीर के अंदर इस्तेमाल थींदियूं जैसे विटामिन मिलंदा आहिन खाधे में पान के घना सॉल्ट या खनिज तत्व मिलंदा आहिन तो ही सब असां के वठना डाढ़ो जरूरी आ
0: जी। माना एक तरीके से इन सभी शयों जो बैलेंस विटामिन्स या ये सब उन सभी जो बैलेंस करे जो डाइट है जो पोषण है वो ही उचित पोषण है।
1: हाँ, इनके पाना संतुलित आहार चवंदा आयु हिंदी में तो संतुलित आहार जो मतलब है कि सब कुछ सुठी क्वांटिटी में ए क्वालिटी में पाना के मिलन।
0: बिल्कुल टाइम टाइम से जो भी शरीर के जरूरत है उन हिसाब से जो भी सही आए वो खाएं उचित पोषण में इंदो आहे।
1: जी जी,
0: सुठी सेहत ला सुठो खाएं यो भी तमाम जरूरी आहे। ऐं खाधे ते त तव्हांजो ख़ासि रिसर्च आहे त असां चाहींदासीं इन बारे में बि तव्हां असांजे श्रोताउनि खे वधीक ॿुधायो।
1: अॼुकल्ह खाधे सां जेके संबंधित बीमारियूं आहिनि ॾाढी वधी पियूं आहिनि ऐं पाण अगरि चयूं त जेकी मैक्ज़िमम जेकी बीमारियूं आहिनि पंहिंजे आसपास पाण ॾिसूं पिए था हू खाधे जे करे आहिनि। जीअं पंहिंजो सिंधी खाधो ट्रेडिशनल खाधो कीअं आहे, डोडो हो, ॾही हुई है न, मखण वग़ैरह बि पाण सुठी तरह खाईंदा हुआसीं, पर अॼुकल्ह हू सभी जो खाधो आहे हाणे रीप्लेस थी वियो आहे किन सां, फास्ट फूड सां। त लॻभॻि 16 लख माण्हू रोज़ हिकिड़े ॾींहं में सॼे दुनिया में केवल खाधे जे कारण बीमार पवंदा आहिनि। 5 सालनि खां नंढा लॻभॻ 340 ॿार रोज पंहिंजी जान खोई छॾींदा आहिनि खाधे संबंधी बीमारियुनि जे कारण। त ही ॾाढो ज़रूरी आहे कि खाधे ते असां ध्यानु केंद्रित कयूं हाणे ऐं सुठे खाधे खे पंहिंजे जीवन में शामिलु कयूं। हाणे हीउ सुठो खाधो छा थो थी सघे, सुबुह जो उथूं त थोरो फल खाऊं, रेशा या सलाद पंहिंजे खाधे में शामिलु कयूं, जीअं भाॼियूं आहिनि साई भाॼियूं आहिनि या अलॻि तरह जी भाॼियूं आहिनि। असां नेचुरोपैथी में चवंदा आहियूं कि अहिड़ी भाॼियूं जिन में एसिडिटी घटि हो, अम्लता घटि हो, क्षारियता वधीक हो, मतिलबु हुन में एसिडिटी ठाहिण जी क्वालिटी घटि हो, त अहिड़ो खाधो पाण खाइणु खपे। त हिन करे अहिड़ो खाधो जेको पैकेज्ड आहे जिन में प्रिजर्वेटिव्स पवंदा आहिनि जीअं सिट्रिक एसिड आहे, सोडियम बेंज़ोएट आहे, हीउ सभु पायो वेंदो आहे कंहिंमें सॉसिस में या फिर जीअं पाण न शरबत ॾाढो पीअंदा आहियूं या कोल्ड ड्रिंक्स पीअंदा आहियूं, हिननि सभी में हीउ सभु नुक़सान करण वारी शयूं पाईंदियूं। त हिननि खे घटि मां घटि करे करे ऐं सुठी शयुनि खे जीअं भाॼियुनि जो रस थियो, फलनि जो रस थियो, फल थिया ऐं अंकुरित अनाज थियो, त हिननि सभिनी खे वधीक शामिलु करणु ही ॾाढी ज़रूरत आहे हिन समय जी।
0: जी बिल्कुलु, ऐं अॼु जे समय में ॾिठो वञे त माण्हू बुख सां घटि था मरनि ऐं खाइण वधीक खाइण या गलत खाइण करे वधीक बीमार आहिनि।
1: बिल्कुल सही था चओ था। भुखमरी त हाणे हेॾी वॾी समस्या कान्हे, ख़ास करके पाण सिंधियुनि में त कान्हे। हिन में असां में छा आहे की ॾाढो वधीक खाइण सां मोटापे जी समस्या ॾाढी आहे, ख़ास कर पाण सिंधी भाउ भेणनि में वज़न वधीक थियण जी समस्या ॾाढी वधीक थी आहे। त हुन जे करे छा त थियो, ॿारनि में वज़न ॾाढो वधीक आहे, ॿारनि में वज़न वधीक थींदो आहे त हॉर्मोन संबंधी समस्याऊं ॾाढी वधी वई आहिनि, ख़ासि करे छोकरियुनि में। ऐं हिन जे करे जेके माहवारी संबंधी प्रॉब्लम्स आहिनि नंढी छोकरियुनि में, या ॿार नथो कंसीव करे सघिजे थो, त ही सभु ॾाढी प्रॉब्लम्स केवल ऐं केवल मोटापे जे करे आहे। ऐं जेको ग़लति खाइण सां ऐं वधीक खाइण सां हर घड़ी खाइण सां थी थो सघे।
0: जी बिल्कुलु, या बि अॼु जे जेका माहौल में ॾिठी वञण वारी ॻाल्हि आहे, या हिकु वॾी समस्या आहे।
1: जी
0: गर्मियुनि जी मुंदि हली रही आहे, ऐं जीअं हींअर तव्हां चयो शरबत था पियूं या कोल्ड ड्रिंक था पियूं, त उन में जेका एसिडिक उन जो प्रभाव आहे, गर्मियुनि में सच में ॾाढो मन थींदो आहे त कुझु थधो पीजे,
1: त
0: इन बारे में गर्मियुनि में छा खाइणु खपे, कीअं पंहिंजो ध्यानु रखिजे, इन बारे में थोरो ॿुधाईंदा।
1: पाण सिंधियुनि में ॾाढी सुठी सुठी शयूं आहिनि, असांजे कल्चर में ई आहे। जीअं गर्मियुनि में पाण ॾुध पीअंदा आहियूं, छाछ, हा, हा। लस्सी के लस्सी बि चवंदा आहिनि, छाछ चवंदा आहिनि, ॾुध चवंदा आहिनि। त जीअं छाछ ठाहिजे त हुन में थोरो भुनल जीरो जीरो थोरो सो तवे पे सेके करे पीसे करे हू विझे, ॾाढो कूलिंग ऐं रिफ्रेशिंग थींदो आहे। हुन में बारीक बारीक कटे करे पुदीने जा पत्ता, धाणनि जा पत्ता ऐं थोरो सो सेंधो नमक या कारो नमक विझी करे पीअण, ही ॾाढो रिफ्रेशिंग ड्रिंक थींदो आहे। गर्मी त भॼंदी ई भॼंदी, असांजे शरीर में प्रोबायोटिक मिलंदा। प्रोबायोटिक अहिड़ी शयूं हूंदियूं आहिनि जो पंहिंजे जेको डाइजेस्टिव सिस्टम आहे, जेको पाचन संस्थान आहे, जेको जिते पंहिंजे खाधे जो पाचन थींदो आहे, हू सुठी तरह कमु कंदो आहे। थधिकार बि मिलंदी ऐं कमु बि सुठी तरह थींदो। ॿियो ॾाढी सुठी शइ आहे पाण सिंधियुनि में, असां बचपन सां पीअंदा रहंदा आहियूं, उहा थादल। थादल जी सामान जी पुड़िया ई रेडीमेड असां वठी ईंदा आहियूं ऐं थादल ठाहे करे पाण घर में आराम सां पी था सघूं। ऐं थादल ॾाढो सुठो ऐं जड़ी बूटीन जो हिकड़ो पंच आ थादल, कॉम्प्लेक्स आ थादल। ऐं हुन में जेको शयूं पवंदियूं आहिनि, चाहे उहो गुलाब जी पंखड़ियूं आहिनि या खरबूज जा बीज आहिनि, मगज, त ही सभु ॾाढी थधिकार त ॾींदी आहे ऐं पाण खे ॾाढा एंटी ऑक्सीडेंट्स ऐं न्यूट्रिएंट्स प्रदान कंदा आहिनि, मतिलबु पोषक तत्व पाण खे हुन में नेचुरल तरीक़े सां मिली वेंदा। टियों जेकी शइ आहे उहा छाई। छाई वॉटर सां, पाणीअ सां भरपूर फल आहे, गिदरो पाणीअ सां भरपूर फल आहे, ही ऐं खीरो। ही ॿ टे शयूं अगरि पाण खाधे में शामिलु कयूं, भले ॾाढो वधीक खाइण जी ज़रूरत कान्हे, हिकिड़ी हिकिड़ी कटोरी बि फैमिली मेम्बर्स खाइनि था त ॾाढो फ़ाइदो थींदो आहे।
0: बिल्कुलु, चवंदा आहिनि न कुदरत पंहिंजी पाण में पूरक आहे, अगरि गर्मी ॾाढी आहे त गर्मीअ में इहे कुदरत फल बि ॾींदा आहिनि, जंहिंखे खाई करे असां पंहिंजो पाण खे थधो करे
1: पाणीअ वारा फल आहिनि सभु।
0: हा बिल्कुलु, ऐं त थादल ई ॻाल्हि ॿुधाई त पहिरें ज़माने में असां ॾिसंदासीं, असांजा वॾा हूंदा हुआ, थादल में जेके बि शयूं हूंदियूं हुयूं पाण पंहिंजे हथ सां गॾु करे हुनखे पीसींदा हुया कंदा हुया, पर अॼुकल्ह त एॾी सहूलियत आहे जो हर का शइ ठहियल मिले थी।
1: ठहियल मिले थी, असांखे दुकानूं ख़बर आहिनि जिते थादल जी पुड़िया ठहियल मिलंदी आहे, असां बसि पुड़िया वठी ईंदा आहियूं,
0: पुड़िया वठी अची करे पीअणो आहे,
1: बसि पीअणो आहे ठाहे करे। जी
0: सच में अॼुकल्ह ॾाढियूं सहूलियतूं आहिनि।
1: हा
0: जीअं तव्हां ग़लति खाधे जे नुक़साननि जे बारे में हींअर ॿुधायो, नियाणियुनि में या लेडीज़ में जेके बि समस्याऊं अचनि थियूं, इन सां गॾु गॾु ॿारनि में या उमिरि जे हिसाब सां बि खाधे में जेको अलॻि अलॻि खाधो खाइणु खपे, उन जे बारे में अगरि थोरी ॼाण ॾियो त।
1: जी त ॾिसो, ॿारनि खां शुरू था कयूं, त ॿार जीअं खाइण शुरू कंदा आहिनि त हुननि खे पाण खे ही प्रोत्साहित करणो खपे कि उहे सभु खाइनि, ईअं न कि ही कोन खाइणो आहे या हू कोन खाइणो आहे। ॾाढे घरनि में अॼुकल्ह ॾाढो फास्ट फूड ठहणु लॻिया आहिनि, मैगी ॾाढी ठहणु लॻी आहे, ही सभु अल्टीमेटली ॿारनि खे नुक़सानु कंदा आहिनि। इनफैक्ट मां चवण थी चाहियां कि जॾहिं ॿार मुंहिंजे पेट में हूंदो आहे तॾहिं खाई, अगरि मां हेल्दी रोटी न खाईंदी आहे त अॻिते हली करे हुन ॿारनि खे ॾाढी बीमारियूं थियण जी चांसिस आहिनि। रिसर्च चवे थी कि ऑटिज़म जेकी सिंधियुनि में आहे ॾाढी, ॿियो सेरिब्रल पैल्सी सिंधियुनि में ॾाढी थी मिले, हिन ही सभु खाधे सां ऐं पेट में जेका पंहिंजे बैक्टीरिया हूंदा आहिनि उन्हनि सां संबंधित आहे। ॾाढी सारी अहिड़ी बीमारियूं थींदियूं आहिनि जिन में छा थींदो आहे की शरीर सुठी तरह कमु कोन करे सघंदो आहे, हिनखे मेटाबॉलिक डिसऑडर्स चवंदा आहिनि। त ही मेटाबॉलिक डिसऑडर्स खाधे सां ई संबंधित आहिनि ऐं ही शुरू थी वेंदियूं आहिनि जॾहिं ॿार माउ जे पेट में हूंदो आहे। त ॾाढी ज़रूरी आहे ॻाल्हि आहे जेकी लेडीज़ हींअर गर्भवती आहिनि हू पंहिंजे खाधे ते ध्यानु ॾिए ऐं ॾाढो फास्ट फूड ऐं ॿाहिरि जी शयूं न खाइनि। ॿारनि जेकी जीअं मां चयो की एनकरेज करिणो खपे की सभु खाइनि, त हुननि खे फल सलाद ई बचपन से ही खाइण जी आदत विझणी खपे। ऐं टियों छे ॿार जीअं वॾा थींदा आहिनि त हाणे टाइम अहिड़ो आहे की फिज़िकल एक्टिविटी ॾाढी घटि थी वई आहे ॿारनि जी बि, त हुननि खे थोरो ॿाहिरि खेॾण लाइ प्रोत्साहित करिणो घुरिजे ऐं टाइम टू टाइम रोटी ॾियणी घुरिजे। हर घड़ी खाइण जी आदत ॾाढी ग़लति आहे ॿारनि में, जेको मां हींअर ॾिसां पई थी पंहिंजे आसपास। ॿियो जीअं नियाणियूं वॾियूं थी थियनि, हिननि जी बि पढ़ाई जो लोड ॾाढो आहे। असांजे ज़माने में असां ॾाढो कम बि कंदा हुआसीं, घर जो वारो फर्श वग़ैरह कंदा हुआसीं, हाणे हू कोन थिए थो। त इन करे वज़न वधण जी समस्या, टाइट कपिड़ा पाइण जी वजह से रिप्रोडक्टिव जीअं प्रॉब्लम्स आहिनि हू ॾाढी, या हॉर्मोनल प्रॉब्लम्स वधी थी वञनि, त थोरो एनकरेज करिणो घुरिजे नियाणियुनि खे बि की थोरी फिज़िकल एक्टिविटी कंहिं बि रूप में, चाहे उहो डांस हो, चाहे योग हो, चाहे वॉकिंग हो, हिन जे रूप में ज़रूरु कनि ऐं पंहिंजे खाधे ते शुरू खां वठी ध्यानु ॾियनि। छा थो थिए न, बीमारी अचण में टाइम न लॻंदो आहे सर न, लेकिन बीमारीअ खे वापसि वञण में ॾाढो टाइम लॻंदो आहे, या वेंदी कान्हे, ॾाढी ज़िदी थींदियूं आहिनि बीमारियूं। त इन करे कोशिशि कजे की बीमारी अचे ई न। असां नेचुरोपैथी में चवंदा आहियूं की प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतिलब बीमारी जी रोकथाम बीमारी जी ठीक करण सां ॾाढी सुठी आहे, मतिलबु बहितर आहे। त इन करे जीअं लेडीज़ वॾी थी थियनि त पंहिंजे ध्यानु घटि थी थियनि, जीअं की त हिननि में कैल्शियम जी कमी ही सभु ॾिसण में मिलंदो आहे, त हॾियुनि जी बीमारी, हॾियुनि जी कमज़ोरी सभु। त पंहिंजे खाधे ते लेडीज़ खे बि शुरू खां वठी ध्यानु ॾियणो घुरिजे। जीअं उमिरि वधे थी, जीअं उमिरि दराज आहिनि, चाहे लेडीज़ चाहे जेंट्स, हुननि खे हैवी खाधो घटि करे करे लाइट खाधो, भले ॾींहं में हिकु दफ़ो ॿ दफ़ो खाधो वधाए छॾनि, पर थोरो थोरो करे, जीअं कॾहिं फल, कॾहिं सलाद, कॾहिं जीअं ॾुध मां चयो, या फिर जीअं दलिया, खिचड़ी, अहिड़ो नरम खाधो एड करणु घुरिजे। त अगरि हीअं पाण फॉलो कयोसीं न हिन तरीक़े सां, त असांखे बीमारियूं थींदी कोन, ख़ासि करे खाधे सां संबंधित त बिल्कुलु कोन थींदियूं। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मां एड थी करणु चाहियां, छो त हीअ खाद्य सुरक्षा जे बारे में आहे, त रखियलु खाधो बीमारियुनि जो ॾाढो वॾो कारण आहे। त इन करे कोशिशि कजे की बासी रोटी या रखियल रोटी घटि में घटि इस्तेमालु कजे।
0: बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे, हिकु महिल वधीक खाइण जे बजाए थोरो थोरो गेप ॾेई करे खाइनि त उहो वॾनि जे लाइ बि सुठो रहंदो। अॼु जी जीवन शैली अहिड़ी आहे त माण्हूअ जे उथणु वेहणु खाइण जो को समय कोन्हे, त अहिड़े में उचित पोषण तमामु ज़रूरी आहे। तव्हां तमामु सुहिणी ऐं सवले तरीक़े सां असांजे श्रोताउनि खे इन विषय ते ॼाण ॾिनी। तव्हां स्टूडियो में आया, तव्हांजी खोड़ खोड़ महिरबानी,
1: धन्यवाद।
0: साथियो, ॿुधी रहिया हुयासीं अॼु जी ॻाल्हि ॿोल, उचित पोषण ऐं खाद्य सुरक्षा। अॼु असां सां गॾु स्टूडियो में साथी हुआ डॉक्टर ज्योति केसवाणी जी। खाधे जी ॻाल्हि पई हले त हलंदे हलंदे हिकु गीत असांजे सिंधी खाधनि ते।
2: दाल छोला ढबल तू खाई वठ दल दल दाल छोला।

हे गीत गायो आसन मीरानी, गीत लिखियो हो परसराम जिया है संगीत बुलो सी राणी जो। साथियों, सुभाणे माना 8 जून ते आकाशवाणी पंहिंजे प्रसारण जा 90 वर्ष पूरा करे रहियो आहे। 8 जून सन 1936 ते इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो नालो मटे करे आधिकारिक रूप सां ऑल इंडिया रेडियो रखियो वियो हुयो। उन खां पोइ सन 1956 में इन खे आकाशवाणी नालो ॾिनो वियो। पिछले 90 वर्षन खां बहुजन हिताए बहुजन सुखाए जे मूल मंत्र ते हलंदड़ आकाशवाणी पंहिंजे परे परे दूर दराज इलाक़नि ताणी समाचार, कृषि जानकारी, शिक्षा ऐं मनोरंजन पहुचाइण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आहे। 90 वर्ष पूरे थियण ते तव्हां सभिनी खे खोड़ खोड़ वाधायूं। आकाशवाणी असां सभिनी खे अॻिते बि ईअं ई जोड़े रहंदी ऐं तव्हांजे लाइ ईअं ई सुठा सुठा कार्यक्रम पेश कंदी रहंदी, इहा ई उमेद आहे। अॼु जे कार्यक्रम जो समय बि पूरो थी रहियो आहे। इजाज़त ॾियो पंहिंजे रेडियो साथी मनोज सोनी पंजवाणीअ खे। वरी मिलंदासीं, सभ जो भलो।

0: डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की दूसरी कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना रायबरेली की साई नदी पर कंपनी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले दो मजदूरों शंभू पासवान और यशवंत दलित मजदूरों की दुर्दशा, उनकी भूख व दूसरी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और मजदूर यूनियन के नेताओं की कमियों पर टिप्पणी करते हैं। यूनियन के प्रतिनिधि राम बहादुर पर यूनियन के पैसों का गबन करने के कारण उसे यूनियन से हटाए जाने की बात चलती है। यूनियन में अभी तक दलित मजदूरों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था, अतः यशवंत को राम बहादुर की जगह प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने की कोशिशें तेज होती हैं। नारायणी चारिंगखेरा नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट में मजदूरी करके अपना पेट भरती है। उसका ब्याह तो हो चुका है मगर गौना नहीं। साइट के मैनेजर का छोटा भाई चौधरी नारायणी को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसे गर्भवती बनाकर चला जाता है। अब आगे

क्या कह रही है नारायणी तू? उस चौधरी का बीज तेरे पेट में? हाय तेरी मति मारी गई है क्या?

0: एक ही रास्ता।
1: देख नारायणी, देख अब ये रोना धोना बंद कर और अपनी बात मुझसे कह।
0: काकी, मेरे लिए सिवाय मौत के दूसरा रास्ता क्या है?
1: नारायणी,
0: मन करता है कि इसी समय नदी में डूब मरूं।
1: खबरदार, खबरदार नारायणी, फिर कभी ऐसी बात मुंह से ना निकालना। अरे ये जीवन तो भगवान का दिया है, इसे लेने का अधिकार केवल भगवान को ही है।
0: तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं काकी? आज नहीं तो कल दुनिया को इस बारे में तो पता चलेगा ना। किस तरह दिखा पाऊंगी दुनिया वालों को अपना मुंह?
1: तो चिंता ना कर नारायणी, चिंता ना कर, भगवान इतना निष्ठुर नहीं है, भगवान पर भरोसा रख।
0: काकी, क्या भगवान मेरा अपराध क्षमा कर देंगे? मुझे इस बदनामी से भगवान बचा लेंगे क्या?
1: अरे क्यों नहीं, भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। देख नारायणी, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच है, इसका जिक्र किसी दूसरे से ना करना।
0: लेकिन इससे होगा क्या काकी?
1: तू बहुत ना बोल नारायणी, हमारी बात को ध्यान से सुन। हाँ, क्या नाम है उसका? शिबू। हाँ शिबू, देख हम उससे मिलके तेरे गौना की बात कर लेंगे।
0: काकी, काकी, क्या वो मेरा मेरा गुनाह क्षमा कर देंगे?
1: अरे क्षमा तो वो जब करेगा ना, जब उसको कुछ पता लगेगा।
0: भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है, अपना अपराध छिपाकर जिंदगी भर उनका सामना किस तरह करूंगी मैं, किस तरह करूंगी?
1: अरे तू दिमाग पर अधिक जोर ना डाल। देख नारायणी, मेरी बात को ध्यान से सुन। गौना होने के एक महीना बाद शिबू को कहना कि वो बाप बनने वाला है। अरे बच्चा तो सतमासा अठमासा होना कोई नई बात नहीं है ना, इस तरह तेरी इज्जत बच जाएगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा। हाँ नारायणी, हमारी बात मान ले नारायणी, इसी में तेरा भला है।
0: ठीक है काकी, आप मुझसे बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है।
1: हाँ बेटा,
0: आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी।
1: हाँ ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक, हम आज ही जाकर शिबू से बात करते हैं। हाँ तू घबराना।
2: नारायणी, तुम नहीं जानती नारायणी, तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ।
0: किस्मत तो मेरी जागी है जी, जो आप जैसा पति मुझे मिला।
2: नारायणी, सच बात तो यह है नारायणी कि भगवान ने हम दोनों का संयोग स्वर्ग में ही लिख दिया था। और हम दोनों ने तो भगवान की इच्छा को पूरा किया है ना?
0: जी स्वामी, आज हमारे मिलन की पहली रात है।
2: नारायणी,
0: अगर आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप इनकार तो नहीं करेंगे ना?
2: अरे नारायणी, कैसी बात करती है तू? अरे तू मेरी अर्धांगिनी है, और अर्धांगिनी का मतलब तो जानती है ना तू?
0: जी, इसका मतलब हुआ कि मैं आपके शरीर का आधा हिस्सा हूँ।
2: अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। बस इसी तरह मैं भी तुम्हारे शरीर का आधा हिस्सा हूँ, यानी कि हम दोनों मिलकर ही पूर्ण हुए हैं, है ना? इस नाते हम दोनों को एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना होगा, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना होगा, तभी तो हम अपनी गृहस्थी को चला सकते हैं, है ना?
0: जी।
2: क्यों नारायणी, तुम मेरी बात से सहमत हो ना?
0: जी, पति का वचन तो परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। क्या कभी परमेश्वर के आशीर्वाद से असहमत हुआ जा सकता है?

0: नारायणी तुम कितनी अच्छी हो। अरे हाँ मैं तो भूल गया, तुम मुझे कुछ कहना चाहती थी ना, कुछ मांगना चाहती थी।
1: हाँ जी।
0: तो फिर कहती क्यों नहीं, कहो ना।
1: पहले आपको वचन देना होगा।
0: वचन
1: जी?
0: पहले बताओ तो सही।
1: नहीं नहीं, पहले वचन दीजिए ना।
0: ओह अच्छा बाबा अच्छा, लो मैंने वचन दिया। आप कहो क्या कहना चाहती हो।
1: मुझसे भारी भूल हो गई है, भारी अपराध हुआ है मुझसे। हाँ आपको मेरी इस भूल को क्षमा करना होगा।
0: नारायणी ये तुम क्या कह रही हो। अरे भला ऐसा तुमसे कौन सा अपराध हो गया जिसके लिए तुम मुझसे क्षमा मांग रही हो।
1: वो बात ये है कि मैं
2: देख नारायणी, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। नरक बन जाएगी जिंदगी, नरक बन जाएगी।
0: ए नारायणी क्या बात है, अरे तुम ये कहते कहते क्या सोचने लगी। नारायणी
1: कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं।
0: अरे तो फिर बताओ ना, अरे तुमसे कौन सा गंभीर अपराध हुआ है बोलो।
1: बात ये है कि
0: हाँ बोलो ना, बोलो बोलो।
1: नहीं वो अभी मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ इंसान से गलती तो कभी भी हो सकती है ना, इसलिए क्षमा करने का वचन पहले ही मांग लिया आपसे।
0: नारायणी तुम भी ना। खैर कोई बात नहीं। ए नारायणी
1: जी,
0: हमें मिलन की इस रात को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। नारायणी इधर आओ, आओ मेरी बाहों में आओ। नारायणी इधर आओ, नारायणी
1: स्वामी,
0: नारायणी नारायणी
1: आपकी बाहों में कितना सुख है स्वामी, इस सुख की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज से मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है।
0: और मेरा भी। देखो नारायणी, हम दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी रूपी बगिया को प्यार से सींचेंगे। मैं दुनिया के सारे सुख तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। ए नारायणी मैं तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाकर रखूंगा। मलिका
1: सच
0: नारायण।

0: यूनियन के तमाम साथियों
1: सुनो सुनो कह रहे हैं कुछ सुनो।
0: आज की ये आम सभा यूनियन के प्रतिनिधि राम बहादुर को यूनियन का धन गबन करने के आरोप में उनके पद से हटाए जाने के विषय को लेकर बुलाई गई थी।
1: ठीक है, अच्छा।
0: लेकिन राम बहादुर ने अपनी गलती का एहसास कर लिया है, साथ ही यूनियन का धन वापस लौटाने का वादा किया है, अतः उन्हें क्षमा दान दिया जाता है। यदि आप में से किसी को कोई भी संदेह हो तो वो प्रश्न कर सकता है। मेरे विचार में हमारे निर्णय के बाद किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
2: क्या आप भगवान हैं अध्यक्ष महोदय?
0: नहीं, मैं आप लोगों का अपना साथी हूँ, किंतु यशवंत तुम्हारे प्रश्न का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया, शायद ही किसी की समझ में आया हो।
3: यशवंत के प्रश्न का अर्थ मैं जानता हूँ अध्यक्ष महोदय।
0: शंभु, तुम इस नादान का समर्थन कर रहे हो।
3: क्षमा करें अध्यक्ष महोदय, नादान कौन है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि आप भगवान नहीं हो सकते।
0: क्या मतलब है तुम्हारा शंभू?
3: अध्यक्ष महोदय, मतलब ये

0: कि राम बहादुर ने हो सकता है कि आपके सामने गलती मान ली हो, या ये भी हो सकता है कि आप उससे मिल गए हो।
1: शंभू पासवान, क्या तू जानता है कि तेरे इस आरोप का क्या परिणाम होगा?
2: महोदय, मैं डेढ़ टांग का जरूर हूँ, किंतु इतना जरूर जानता हूँ कि शंभू का परिणाम उसकी मौत से अधिक नहीं हो सकता।
1: अरे ओ लिचू, तेरे कहने का मतलब क्या है?
3: लिचू के कहने का क्या मतलब है और शंभू आपको क्या समझाना चाहता है, ये बात आपको पल भर में समझ आ जाएगी।
1: लगता है आप सभी दलित मजदूर आपस में सलाह करके आए हैं कि आज की आम सभा नहीं चलने देंगे।
3: गलत, बिल्कुल गलत। ये सोच तो आपकी है अध्यक्ष महोदय, अन्यथा आप राम बहादुर का पक्ष स्वयं नहीं रखते, बल्कि राम बहादुर अपना पक्ष खुद इस आम सभा में रखता।
4: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं?
3: इसलिए कि तुमने मजदूरों के ब्लड बैंक पर डाका डाला है। राम बहादुर, मजदूरों के खून पसीने की कमाई को यूनियन के नाम पर हजम किया है तुमने। यहाँ मौजूद मजदूर इस अपराध के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
5: हम इस अपराध के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
1: शांत हो जाइए, कृपया शांत रहिए। हो हल्ला मचाने से आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा।
3: अध्यक्ष महोदय, रविकांत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मजदूर साथियों, अतः आप लोग शांति का दान दीजिए। यदि मजदूर भाइयों की ओर से अनुमति हो तो अध्यक्ष महोदय से आप लोगों की ओर से मैं बातचीत करूं।
2: अध्यक्ष महोदय, आपको कोई इतराज है?
1: नहीं नहीं।
3: तो ठीक है अध्यक्ष महोदय, आप यूनियन के प्रभावशाली जिला अध्यक्ष हैं, आपको जिला स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन आम सभा में आम सदस्यों की सहमति के बिना नहीं।
1: यशवंत, तुम मेरी पावर को ललकार रहे हो।
3: क्षमा करें महोदय, मैं तो सिर्फ अपने मजदूर भाइयों का पक्ष रखना चाहता हूँ। आप बहुमत के बिना अल्पमत में निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो कानून सम्मत नहीं होगा।
1: तो तेरे पर निकल आए हैं।
3: गलत महोदय, गलत। ये मुहावरा चींटियों पर फिट बैठता है, इंसानों पर नहीं, और मैं एक इंसान हूं।
1: चलो मैं तुम्हारे आगे झुकता हूं। अब तुम बताओगे कि आम सभा का निर्णय क्या होना चाहिए?
3: राम बहादुर की यूनियन से बर्खास्तगी।
1: ठीक है, मैं आम सभा की राय का सम्मान करते हुए राम बहादुर को यूनियन से निकालने का ऐलान करता हूं, किंतु इस स्थान पर किसी की नियुक्ति तो करनी होगी ना, इसलिए मैं।
2: ठहरिए अध्यक्ष महोदय,
1: अब क्या परेशानी है शंभू? आम सभा की राय से मैं सहमत तो हो चुका हूँ।
2: आज तक यूनियन में दलित मजदूरों का कोई प्रतिनिधि नहीं रखा गया।
1: तो फिर
2: हमारी इच्छा है महोदय कि इस बार होने वाली नियुक्ति में दलित मजदूरों का प्रतिनिधि रखा जाए।
1: अरे वाह वाह, तुम लोग क्या चाहते हो कि हम यूनियन में अनपढ़ गवारों को रख लें?
2: सावधान अध्यक्ष महोदय, वो जमाना गुजर गया जब दलित सदियों से सामाजिक अन्याय का शिकार होकर अशिक्षित रह जाया करते थे। अरे बाबा साहब अंबेडकर और गांधी भगवान की कृपा से आज हमें बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। आज दलित समाज में पढ़े लिखे लोग भी हैं।
1: हाँ हाँ होंगे, मगर तुम लोगों के बीच ऐसा कौन है जो पढ़ा लिखा है?
2: क्यों नहीं, हमारा यशवंत मैट्रिक पास है। हम यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में यशवंत के नाम का प्रस्ताव रखते हैं।
1: सुनो मजदूर साथियों, अध्यक्ष पद का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो बहुमत का सम्मान करे। इस नाते मैं राम बहादुर को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए बर्खास्त करता हूँ। उसके स्थान पर आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए दलित समाज के नए नेता यशवंत को नियुक्त करता हूँ।
2: भाई यशवंत।

0: नारायणी, ओ नारायणी, अरे कहाँ हो तुम?
1: आती हूँ जी।
2: जी कहिए, क्या बात है जी? ये मुंह क्यों लटका रखा है?
3: नारायणी, बहुत बुरी खबर है, बहुत ही बुरी।
2: हाँ, क्या हुआ है? मुझे भी तो कुछ पता चले।
3: ब्राह्मण महाराज की मृत्यु हो गई है।
2: क्या?
3: नारायणी, अब मेरे पास कोई काम नहीं रहा। एक बार फिर मैं बेकार हो गया।
2: अब क्या होगा जी?
3: वही तो मैं सोच रहा हूँ, घर का खर्चा कैसे चलेगा?
2: उसकी चिंता ना करो जी, मैं तो मजूरी कर ही रही हूँ ना।
3: सो तो ठीक है, लेकिन क्या ही अच्छा लगेगा कि घर बैठे मैं खाट तोड़ूं और तुम मजूरी करने जाओ? क्या एक मर्द को यह शोभा देगा?
2: भगवान पर विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देंगे।
3: देखो तो नारायणी, कौन आया है?
2: हाँ, अभी देखती हूँ जी। अरे बसुमती काकी, आप?
4: नारायणी,
2: कहिए कैसे आना हुआ?
4: अरे यहीं से वापस लौटाना चाहती है क्या?
2: माफ करना काकी, अंदर आइए ना।
3: अरे राम राम काकी।
4: जीते रहो बेटा, जीते रहो।
3: काकी सब ठीक ठाक तो है ना?
4: अरे क्या बताऊं बेटा, कलयुग है कलयुग। ये कंपनी का मैनेजर, अरे ये तो कलयुग का रावण है, है? हम गरीब मजदूरन को मजदूरी से हटाकर दूसरी जगह भेजा जा रहा है।
2: काकी ये क्या कह रही हो?
4: तुम्हारी कसम नारायणी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं।
3: लेकिन काकी, मजदूरों को अब कहाँ भेजा जा रहा है?
4: साई नदी पर शिबू। अरे यहाँ से 50 मजदूरों को साई नदी पर भेजा जा रहा है।
2: मतलब ये कि यहाँ से हम लोगों का दाना पानी उठ गया है?
4: अरे कुछ न कह नारायणी, सामान वामान बांध ले, संध्या तक यहाँ से निकल पड़ना होगा।
2: ठीक है, ठीक है काकी। हाँ,
4: जल्दी कर।
3: हाँ। नारायणी, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया?
4: अरे क्या हुआ
3: नारायणी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
4: अरे हट तो जरा शिबू, हमें देखने तो दे।
3: हाँ काकी, देखो ना, तुम्हें देखो मेरी नारायणी को क्या हो गया, देखो तो।
4: अरे देखने तो दे।
3: हाँ देखो देखो।
4: अरे अरे लड्डू खिलाओ शिबू, लड्डू खिलाओ। अरे बाप बनने वाला है तू?
3: अरे सच काकी? अरे मैं बाप? अरे सच काकी?

0: क्यों भैया? अरे कैसे चहलकदमी कर रहा है?
1: पर तू कौन है भाई?
0: अरे भाई मैं लिचू हूँ, यहीं पर सफाई कर्मचारी हूँ।
1: ठीक है, तो मुझसे क्या काम है?
0: अरे कुछ नहीं कुछ नहीं।
1: तो भैया फिर मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहा है?
0: अरे बर्बाद नहीं कर रहा भैया, मैं तो समय पास कर रहा हूँ।
1: समय पास क्या मतलब?
0: मतलब साफ है भैया, अरे तू भी अकेला घूम रहा है, मैं भी अकेला घूम रहा हूँ। अरे भैया क्यों ना थोड़ी देर यहीं सही किनारे बैठते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, तो समय भी आराम से कट जाएगा।
1: अरे लगता तो तू दिलचस्प है, तेरे साथ दोस्ती अच्छी निभेगी।
0: ये हुई ना बात, आओ बैठते बैठते
1: चल।
0: तूने भाई मेरा नाम तो जान लिया लेकिन अपना नाम नहीं बताया।
1: मेरा नाम है शिबू धासला।
0: ओहो शिबू धासला, अरे अच्छा नाम है शिबू, बुरा ना माने तो एक बात पूछो शिबू।
1: हाँ हाँ पूछना, अरे दोस्त की बात का बुरा नहीं माना जाता लिचू। जो कहना है मुझे अपना समझ कर कह।
0: अच्छा अच्छा एक बात बता शिबू, तू इतना परेशान क्यों है? अरे मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। हाँ
1: लिचू भैया, अब क्या बताऊं, साई की साइट पर आए हुए 7 महीने हो गए, मगर देखो ना अभी तक कोई काम ही नहीं मिला।
0: अरे शिवू भैया, हम लोग तो भगवान भरोसे हैं, काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक।
1: अरे लिचू भैया तुम कितने अच्छे हो, कितने भले हो। लिचू भैया तुमसे दिल खोलकर बात करने की इच्छा हो रही है।
0: अरे तो कर ना शिवू कर, दिल की बात कहने से मन का बोझ उतर जाता है और इंसान स्वयं को हल्का फुल्का महसूस करता है। कर शिवू।

0: वो क्या है देख लीजिए। हाँ? बात ये कि मेरी घरवाली नारायणी को तो काम पर रख लिया है।
1: हाँ?
0: मगर मुझे नहीं रखा।
1: अरे
0: अब देखना, घरवाली कमाए और मर्द खाए, ये क्या मुझे शोभा देता है?
2: कहता तो तू ठीक है शिवू, लेकिन ये भी सच है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता शिवू। हाँ
0: लेकिन लिचू, मुझे खाली नहीं बैठा जाता रे।
2: अरे
0: लिचू भैया।
2: हाँ? देख भाई, वादा तो नहीं करता पर हाँ कोशिश जरूर करूंगा।
0: अच्छा कोशिश करना।
2: शिबू शराब पीता है क्या?
0: नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता।
2: अरे तो आज पी ले। अरे दोस्ती के नाम पर।
0: अरे नहीं नहीं लीचू नहीं, देख मुझे माफ कर।
2: अरे
0: मुझे क्षमा कर लीचू।
2: शिबू
0: अरे देख ना यार, अगर कहीं नशे में बह गया तो
2: अरे
0: तो गजब हो जाएगा।
2: ए शिबू। हाँ? अरे मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा।
0: नहीं नहीं मैं देख
2: अरे
0: सोच ले, देख बाद में तू मुझे कुछ मत कहना।
2: ए शिबू चिंता मत कर, चल मेरे साथ चल चल चल।
0: कहां?
2: अरे खलासी लंगर पर, यहाँ पास में ही है, वहां की शराब की मस्ती का तो बस क्या कहना है, आजा।
0: हाँ। देख ले फिर सोच ले तू।
2: अरे चल शिवू चल चल आजा आजा
0: चल ठीक है चल।
3: तुम्हारा इनाम यशवंत है?
4: हाँ मगर तुम कौन हो?
3: यूनियन में तुम ही दलितों के नए नेता के रूप में शामिल हुए हो।
4: हाँ लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो?
3: अभी समझ जाओगे। एक काम करो, लो बीड़ी पियो। साथ में ये माचिस भी दे रहा हूँ तुम्हें, ये बीड़ी भी जलाती है और आग भी लगाती है।
4: देखो मैं बीड़ी नहीं पीता।
3: सुना है, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो। रात को ड्यूटी के वक्त तुम अड्डेबाजी में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करते।
4: मैं जा रहा हूँ, अजनबी लोगों से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है।
3: ठहरो यशवंत, मैं भेटा गांव के लोकल लीडर शास्त्री जी का सहायक हूँ, सहायक माने एजेंट। अब तुम समझ सकते हो कि मुझसे बात करने पर तुम्हारा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं।
4: शास्त्री जी का बहुत नाम सुना है मैंने, उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ मैं। लेकिन तुम मेरे पास किस प्रयोजन से आए हो?
3: मुझे शास्त्री जी ने खुद तुम्हारे पास भेजा है।
4: किस लिए?
3: तुम्हें समझाने के लिए।
4: क्या मैं ना समझूं?
3: हो तो तुम समझदार, लेकिन राजनीति की सारी बातें नहीं जानते, इसीलिए मुझे शास्त्री जी की ओर से तुम्हारे पास आना पड़ा।
4: लेकिन तुम या शास्त्री जी मुझसे क्या चाहते हो?
3: देखो तुम शास्त्री जी की सलाह के बिना अपनी ओर से कोई कदम मत उठाना, जैसा शास्त्री जी कहें वैसा ही तुम करना, हमेशा फायदे में रहोगे।
4: फायदा? कैसा फायदा?
3: अरे क्या तुम नहीं जानते, यहाँ का ओवरसीयर से लेकर भद्दे मुंह वाला इंजीनियर सबको जानते हैं हम। इंजीनियर कंपनी से हर महीना 2000 लेकर चुपचाप बैठ जाता है, और एसडीओ हर महीने 1500 रुपए लेकर संतुष्ट रहता है। और तो और वो ओवरसीयर हर महीने सिर्फ 50 रुपए लेकर ही, मतलब तुम समझ रहे हो ना?
4: जी हाँ बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ मैं आपका मतलब।
3: लोकल लीडर शास्त्री जी यही चाहते हैं कि मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को तुरंत रोका जाए, सभी मजदूरों को परमानेंट किया जाए, और इसके लिए वे मजदूरों की हड़ताल पर विचार कर रहे हैं।
4: क्या हड़ताल?

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि

0: उद्धरण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार का दूसरा भाग। डीटीएच पर यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीडीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और ओटीटी वेव्स ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। शुरुआत में आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 जून को प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। यहां उत्पादित सामग्री घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ एशिया प्रशांत, मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के अनेक देशों में निर्यात भी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय

महिला फुटबॉल टीम को सेफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि चैंपियनशिप जीतकर टीम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह सफलता खेल जगत में प्रेरणा का नया अध्याय लिखेगी। और प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह में से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा चर्चा का विषय रहेगा अपने कौशल एवं रुचि का मूल्यांकन करें एवं उसके अनुरूप ही करियर का चुनाव करें। साथ ही हमारा चर्चा का विषय है पुस्तकें हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकती हैं। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे तपती धरती कटते वन भारत को बनाना है उपवन विषय पर वार्ता। वार्ताकार है अवनी जैन। साथियों, साथ ही क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे मोबाइल एडिक्शन से बचें विषय पर और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं अपने कौशल एवं रुचि का मूल्यांकन करें एवं उसके अनुरूप ही करियर का चुनाव करें विषय पर। साथियों, आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में करियर का सही चुनाव जीवन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। अनेक विद्यार्थी केवल दूसरों की देखा देखी या दबाव के चलते किसी क्षेत्र का चयन कर लेते हैं, जिसके कारण आगे चलकर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति अपने कौशल एवं रुचि का सही मूल्यांकन करे और उसी के अनुरूप करियर का चयन करे। दोस्तों, कौशल का अर्थ है किसी कार्य को दक्षता और कुशलता के साथ करने की क्षमता। यह क्षमता जन्मजात भी हो सकती है और अभ्यास तथा शिक्षा के माध्यम से विकसित भी की जा सकती है। वहीं रुचि का संबंध उस कार्य से है जिसे करने में व्यक्ति को आनंद और संतुष्टि प्राप्त होती है। जब किसी व्यक्ति का कौशल और रुचि एक ही दिशा में होते हैं, तब वह उस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाता है। साथियों, करियर चुनने से पहले व्यक्ति को स्वयं का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि उसकी शक्तियाँ और कमजोरियाँ क्या हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी की गणित और विज्ञान में अच्छी पकड़ है तथा उसे तकनीकी विषयों में रुचि है, तो वह इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी या अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकता है। उसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को लेखन, साहित्य और भाषा में रुचि है, तो वह पत्रकारिता, अध्यापक, लेखन या अनुवाद के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षण और करियर परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं, जो विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। साथ ही रुचि के अनुसार चुना गया करियर व्यक्ति को कार्य के प्रति समर्पित बनाता है। जब व्यक्ति अपनी पसंद का कार्य करता है, तो उसमें उत्साह, आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ती है। वह चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाता है और अपने क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर पाता है। इसके विपरीत, यदि व्यक्ति अपनी रुचि के विरुद्ध किसी कार्य क्षेत्र में काम करे, तो उसे मानसिक तनाव, निराशा और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में करियर के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। पहले जहाँ केवल डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी को ही अच्छा करियर माना जाता था, वहीं आज खेल, संगीत, कला, फैशन डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, पर्यटन, उद्यमता आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अच्छा क्षेत्र माना जाता है और उनमें उज्जवल भविष्य की संभावनाएं हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी विशेषताओं को पहचान कर सही क्षेत्र का चयन करना चाहिए। साथियों, करियर चयन केवल आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाना चाहिए। धन जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, किंतु कार्य में संतुष्टि और आत्मविश्वास भी उतने ही आवश्यक हैं। जिस कार्य में व्यक्ति की रुचि होती है, उसमें वह अधिक मेहनत कर पाता है और अंततः उसे सफलता, आर्थिक समृद्धि दोनों प्राप्त होती है। दोस्तों, करियर का चुनाव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसे जल्दबाजी या दूसरों के प्रभाव में आकर नहीं लेना चाहिए। अपने कौशल, रुचि, योग्यता और व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन करके ही करियर का चुनाव करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफलता

करता है बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह स्वयं को पहचाने, अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही अपने भविष्य की दिशा निर्धारित करे। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे दूसरे विषय पुस्तक है हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती हैं पर चर्चा करने का। साथियों पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र मानी जाती हैं। वे न केवल ज्ञान का भंडार होती हैं, बल्कि हमारे विचारों व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि को भी प्रभावित करती हैं। कहा जाता है एक अच्छी पुस्तक जीवन को नई दिशा दे सकती है। वास्तव में पुस्तकें हमारी जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की क्षमता रखती हैं। वे हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर, निराशा से आशा की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाती हैं। दोस्तों पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। इनमें विभिन्न विषयों का विस्तृत और उपयोगी ज्ञान संचित रहता है। विज्ञान, इतिहास, साहित्य, दर्शन, राजनीति, कला, संस्कृति जैसे अन्य क्षेत्रों की जानकारी हमें पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है। पुस्तकें हमें केवल तथ्यों से परिचित नहीं कराती बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करती हैं। इस प्रकार वे हमारे बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दोस्तों पुस्तकें व्यक्ति के चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़कर हमें उनके संघर्ष, परिश्रम, त्याग और सफलता से प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। अनेक बार एक प्रेरणादायक पुस्तक किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल देती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। पुस्तकें हमारी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को भी विकसित करती हैं। साहित्यिक पुस्तकें, कहानियाँ, उपन्यास और कविताएं हमें नई दुनिया से परिचित कराती हैं। इन्हें पढ़कर हमारी भाषा समृद्ध होती है और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। साथ ही हम विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन मूल्यों को भी समझने लगते हैं। इससे हमारे विचार व्यापक और उदार बनते हैं। दोस्तों आज के आधुनिक युग में तकनीकी साधनों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण लोगों को पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। लोग अधिकांश समय डिजिटल माध्यमों पर बिताते हैं। हालांकि इंटरनेट से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से जो गहराई, एकाग्रता और चिंतन शक्ति विकसित होती है वह अन्य माध्यमों से प्राप्त नहीं हो पाती। पुस्तकें हमें धैर्य पूर्वक सोचने और विषय को गहराई से समझने की प्रेरणा देती है। साथियों पुस्तकें केवल शिक्षा का साधन नहीं बल्कि वे मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करती हैं। जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। वे हमें जीवन की समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देते हैं और कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इस प्रकार पुस्तकें हमारे सच्ची मित्र की तरह हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाती हैं। साथियों पुस्तकें हमारे जीवन की दशा और दिशा बदलने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। वे ज्ञान, प्रेरणा, संस्कार और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। एक अच्छी पुस्तक व्यक्ति को सफल, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बना सकती है। इसलिए हमें पुस्तकों को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए और नियमित रूप से अध्ययन की आदत विकसित करनी चाहिए। वास्तव में पुस्तकें ही वह प्रकाश हैं जो हमारे जीवन को सही मार्ग दिखाकर उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकती हैं। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय तपती धरती कटते वन भारत को बनाना है उपवन पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है अवनी जैन।
1: तपती धरती कटते वन भारत को बनाना है उपवन। धरती तपती धूप से कटते वन चहुओर, नहीं किसी को सुध यहाँ बनते हृदय कठोर। बनते हृदय कठोर नहीं सुध कोई लेते, काटे वृक्ष अपार इसे बंजर कर देते। कहे विनायक राज धरा सबके दुख हरती, वृक्ष लगाकर आज बचा लो तपती धरती। मित्रों जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज की प्रगति के रूप में पृथ्वी के पर्यावरण की गुणवत्ता को बहुत नुकसान हुआ है। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी ग्रह के स्वास्थ्य के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। अपर्याप्त शोध और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग इसके बिगड़ने के दो प्रमुख कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान में तेजी से वृद्धि का प्रमुख कारण है जो जीवन के लिए खतरा पैदा कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे पर्यावरण पर एक खतरनाक प्रभाव है जिससे हम तीव्र औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण सभी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग शब्द पिछली शताब्दी में पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक होने का कारण यह है कि यह ग्रह की समग्र पारिस्थितिकी को बाधित करता है। यह बाढ़, अकाल, चक्रवात और अन्य समस्याओं का कारण बनता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन पर गठित अंतर सरकारी समिति IPCC यानी इन्वायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में योकोहामा जापान में जारी की गई अपनी रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तपन के भयानक खतरों से एक बार फिर आगाह किया है। IPCC ने आसन्न खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि अगर आज हम नहीं संभले तो जलवायु परिवर्तन की मार से कोई अछूता नहीं रह पाएगा, सभी को यह संकट झेलना पड़ेगा। भारत और चीन के लिए तो यह बड़े खतरे की घंटी है क्योंकि विश्व के एक तिहाई आबादी यहाँ रहती है। वैश्विक तपन से ग्लेशियर पिघलेंगे और नदियों में बाढ़ आएंगी, फिर ग्लेशियरों के सिकुड़ने से नदियाँ सूखने लगेंगी, जल स्रोतों के सूखने से पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। आइए श्रोताओं, अब हम ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभावों पर जोर डालते हैं, जैसे सिंचाई के अभाव और अल्पवृष्टि के कारण खाद्य उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, फसलें उगाना मुश्किल हो जाएंगी, इस कारण अनाज की कीमतें बढ़ती जाएंगी और व्यापक रूप से भुखमरी फैल सकती है, कुपोषण से लाखों लोग प्रभावित होंगे। IPCC ने एक और हालिया रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एक ही रास्ता है, वह यह कि विश्व के सभी देश बिना समय बर्बाद किए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हर क्षेत्र में आपातकालीन समस्याएं दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वे मानव स्वास्थ्य पर असर हो या फिर पशु पक्षियों व वनस्पतियों पर असर हो। जैसे जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर मनुष्य पर ही पड़ेगा और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गर्मी बढ़ने से कई तरह के संक्रामक रोगों के फैलने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। वह समय भी जल्द ही आ सकता है जिसमें से हम में से अधिकांश को पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए ताज़ा भोजन और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब नहीं हो पाएगी। पशु पक्षियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। गर्मी बढ़ने के कारण यह जीव धीरे धीरे उत्तरी और पहाड़ी इलाकों की ओर प्रस्थान करेंगे एवं इनमें से कुछ अपना अस्तित्व ही खो देंगे। बढ़ती जनसंख्या और आधुनिकीकरण का सीधा प्रभाव हमारे वनों पर पड़ रहा है, जिसके चलते वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। भारत में अब सिर्फ 20% ही वन बचे हैं। वनों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष वन महोत्सव देश में मनाया जाता है। वन महोत्सव को एक राष्ट्रीय त्यौहार घोषित किया गया है। वन वह महत्वपूर्ण इकाई है जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है। इतनी कीमती चीज पाने के बाद हमें धन्य महसूस करना चाहिए। वन हमें लगातार भोजन, लकड़ी, सांस लेने के लिए हवा और अन्य जरूरी चीजें प्रदान करते रहते हैं। वे तमाम तरह के जीवों के लिए एक घर की तरह है। वन के बिना हम अपने जीवन और अन्य क्रियाकलापों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वनों की कटाई और छटाई के प्रति बढ़ता कदम एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जंगल प्रकृति द्वारा इंसानों को दिया गया सबसे बेहतरीन तोहफा है। यह कई जीवित प्राणियों के लिए रहने की जगह देता है। इसके अलावा हम वनों से हर तरह के फायदे लेते रहते हैं। वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ आदि होते हैं। उनमें से कई औषधियाँ मूल्य प्रदान करते हैं, आश्रय और छाया प्रदान करते हैं, हवा, भोजन, फल, लकड़ी, पानी और दवा प्रदान करते हैं। मित्रों, वनों की कटाई से हमारे पर्यावरण में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। विकास की यह दौड़ में मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरह से शहरीकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्योग तथा रहने के लिए घर आदि के निर्माण उद्देश्य से वन भूमि की कटाई की जा रही है। मानव का यह कार्य जो पूरी तरह से विकास के उद्देश्य के लिए केंद्रित है, वन भूमि के विनाश और गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। भविष्य या प्रकृति की चिंता किए बिना मनुष्य पूरी तरह से एक स्वार्थी इंसान में बदल गया है। इस प्रकार पेड़ों की संख्या में दैनिक आधार पर कटौती की जा रही है, इसलिए हमारा मुख्य ध्यान वन इकाई के संरक्षण की आवश्यकता पर होना चाहिए। यह हमारी भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना हमारी स्थिरता को बनाए रखेगा और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मनुष्य पर्यावरण से लाभ प्राप्त करने के लिए निरंतर सक्रिय रहा है, लेकिन इस समय अंतराल में पर्यावरण से जिस तरह लिया गया है उसी प्रकार से लौटाना भूल गया है। इससे प्राकृतिक चक्र में असंतुलन पैदा होता है। इसलिए दोस्तों, पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ। प्राचीन काल से ही वन मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखते थे। यह मानव जीवन के लिए प्रकृति के अनुपम उपहार हैं। हमारे वन पेड़ पौधे ही नहीं अपितु अनेकों उपयोगी जीव जंतुओं व औषधियों का भंडार है। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों व संतों के लिए वन तपोभूमि का प्रमुख स्थान रहा है। इन्हीं वनों में महान ऋषियों के आश्रम रहे हैं, जहाँ पर संत एवं उनके शिष्य रहते थे। समाज में इनका विशेष स्थान था, जिन्हें लोग पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से देखते थे। वन मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। वन आवरण हटाने से उस क्षेत्र में बाढ़ और अकाल की स्थिति निर्मित हो जाती है। वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन होगा और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी। मनुष्य ने अपनी धन लोलुपता के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की और धीरे धीरे जंगल कम होते गए। फलस्वरूप धरती तपने लगी, अर्थात तापमान बढ़ने लगा। आज आवश्यकता है कि जितने वृक्ष कटने चाहिए उतने वृक्ष लगने भी चाहिए, तभी हम धरती को हरा भरा बना सकते हैं और तभी हम कह सकते हैं भारत बनेगा उपवन। दोस्तों, तपती हुई धरती को बचाने के उपाय एवं भारत भूमि को वापस हरा भरा बनाने व सजाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। सरकार के साथ साथ हम मनुष्यों को भी ये जिम्मेदारी सम्मिलित में लेके चलनी पड़ेगी। यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, हम सभी को भी पेट्रोल, डीजल और बिजली का उपयोग कम से कम करना पड़ेगा, जिससे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो सके। जंगलों की कटाई को रोकना होगा। हम सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग का असर कम किया जा सकता है। टेक्निकल डेवलपमेंट से भी इससे निपटा जा सकता है। हम ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाएं जिनमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ना होता हो और ऐसे वाहन बनाएं जिनसे कम से कम धुआं निकलता हो। सरकार द्वारा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दिया जा रहा है। श्रोताओं, अपनी बात को इन शब्दों के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार।
0: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता विषय तपती धरती कटते वन, भारत को बनाना है उपवन पर। वार्ताकार थी अवनी जैन। साथियों, अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय मोबाइल एडिक्शन से बचे पर चर्चा करने का। साथियों, वर्तमान युग विज्ञान और तकनीक का युग है। विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यंत सरल और सुविधाजनक बना दिया है। मोबाइल फोन इस तकनीकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण

उपहार है। आज मोबाइल केवल बातचीत का साधन नहीं रह गया बल्कि शिक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग, व्यापार और संचार का प्रमुख माध्यम बन चुका है। किंतु इसका अत्यधिक उपयोग एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया है, जिसे मोबाइल एडिक्शन या फिर मोबाइल की लत कह सकते हैं। यह समस्या विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में तेजी से बढ़ रही है, इसलिए मोबाइल एडिक्शन से बचना समय की आवश्यकता बन गया है। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन का अर्थ है मोबाइल फोन का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना और इसके बिना असहज महसूस करना। जब कोई व्यक्ति घंटों तक सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वीडियो या अन्य मोबाइल गतिविधियों में व्यस्त रहता है और अपने आवश्यक कार्यों की उपेक्षा करने लगता है, तब यह स्थिति मोबाइल की लत के रूप में उत्पन्न होती है। धीरे धीरे व्यक्ति का अधिकांश समय मोबाइल पर ही बीतने लगता है। दोस्तों, मोबाइल की लत के अनेक कारण हैं। इंटरनेट की आसानी से उपलब्धता, सोशल मीडिया का आकर्षण, ऑनलाइन गेम, मनोरंजन के असीमित साधन और दोस्तों से लगातार जुड़ने की इच्छा इसके प्रमुख कारण हैं। आज अधिकांश लोग खाली समय में पुस्तकें पढ़ने, खेलने या परिवार के साथ समय बिताने की बजाय मोबाइल का उपयोग करना पसंद करते हैं। यही आदत धीरे धीरे उनकी लत में बदल जाती है। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द, सिरदर्द और नींद की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा मोबाइल का अत्यधिक उपयोग मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का कारण भी बन सकता है। कई बार व्यक्ति वास्तविक दुनिया से कटकर आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगते हैं, जिससे सामाजिक संबंध भी कमजोर पड़ जाते हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों पर मोबाइल एडिक्शन का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई के समय मोबाइल का उपयोग उनकी एकाग्रता को भंग कर देता है और शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट लाता है। मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले, मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करना चाहिए। प्रतिदिन मोबाइल उपयोग की एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए और उसका पालन करें। पढ़ाई, भोजन और सोने के समय मोबाइल को अपने से दूर रखें। इसके अलावा खेल कूद, योग, व्यायाम, पुस्तक पठन और रचनात्मक गतिविधियों में समय बिताने की आदत भी विकसित करें। साथ ही परिवार और मित्रों के साथ प्रत्यक्ष संवाद भी मोबाइल पर निर्भरता को कम करने में सहायक होता है। दोस्तों, माता पिता और शिक्षकों की भूमिका भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें बच्चों को मोबाइल के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए और उनके मोबाइल उपयोग पर उचित निगरानी रखनी चाहिए। बच्चों को प्रेरणादायक गतिविधियों और स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनका ध्यान मोबाइल से हट सके। दोस्तों, मोबाइल फोन आधुनिक जीवन की एक उपयोगी आवश्यकता है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमें तकनीक का उपयोग समझदारी और संतुलन के साथ करना चाहिए। यदि हम समय का सही प्रबंधन करें और मोबाइल पर अपनी निर्भरता को नियंत्रित रखें, तो हम एडिक्शन से बच सकते हैं। दोस्तों, अब समय हुआ है आपसे विदा लेने का। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न
4: चोरी चोरी किया,
3: न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
5: ओह लवली, वेल डन,
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
5: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
6: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
5: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट

0: स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
0: आप कौन?
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
7: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है, भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
8: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

फिल्म ओम शांति ओम से गीत आप सुनेंगे। शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और राहुल के स्वर में गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतकार विशाल शेखर।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म राब्ता से। इस गीत को सुरों से सजाया अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य। संगीतकार हैं प्रीतम।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म भूल भुलैया से। स्वर श्रेया घोषाल और एम जे श्री कुमार के हैं। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार प्रीतम।

दिलजीत दोसांझ और बादशाह के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म क्रू से। गीतकार हैं राज रंजोत और बादशाह, संगीतकार राज रंजोत।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे। इस गीत को सुरों से सजाया वरुण जैन और राघव चैतन्य ने। गीतकार हैं इंद्र नील, संगीतकार सचिन जिगर।

0: कवि हेमंत देवलेकर।
1: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की बड़ी जरूरत है। यह हम सबके उदर पोषण से जुड़ा विषय है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की सार्थकता और हर नागरिक को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलने में है। प्राकृतिक खेती अपनाने से इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजन का विशेष महत्व है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत में सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी कम भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में महुआ महोत्सव के तहत आज कई लोक नृत्यों के साथ ही महाबली छत्रसाल बुंदेल केसरी के जीवन पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सेफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बधाई देते हुए कहा कि चैंपियनशिप जीतकर टीम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। और प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में गीत आप सुनेंगे फिल्म यस बॉस से।
1: कुछ कहे।
0: गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतकार जतिन ललित।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे। फिल्म का नाम और प्यार हो गया। गीतकार हैं जावेद अख्तर। गीत को संगीतबद्ध किया नुसरत फतेह अली खान ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मृत्यु दंड से। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

फिल्म राजा हिंदुस्तानी से गीत आप सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक सपना अवस्थी के स्वर में। गीतकार हैं समीर, गीत को संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक और अभिजीत के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म जुदाई से। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार नदीम श्रवण।

इला अरुण, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म लम्हे से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार शिव हरी।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पीएम मोदी के 12 साल, मध्य प्रदेश बना चीतों का घर।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की यात्रा और विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की बढ़ती भूमिका पर। पिछले एक दशक से अधिक समय में देश ने आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति, सामाजिक कल्याण, कृषि, उद्योग, स्टार्टअप और आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे हैं। इन राष्ट्रीय पहलों का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
2: धन्यवाद दीपा जी।
1: और हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अक्षत शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सर।
3: नमस्कार।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अजय सर, पहला सवाल आपसे है, हम जानना चाहेंगे कि एनडीए सरकार के 12 वर्षों को आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए, एनडीए सरकार के जो 12 वर्ष हैं और मध्य प्रदेश का जो विकास, ये दोनों लगभग एक साथ चल रहे हैं
1: जी।
2: और मेरे ख्याल से ये एक और एक 11 वाली स्थिति ज्यादा है
1: जी,
2: क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भी कई करीब 115 योजनाएं कल्याणकारी तो मध्य प्रदेश सरकार चला रही है
1: जी जी।
2: और लगभग एक दर्जन के आसपास जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश के विकास में अपने ढंग से योगदान दे रही हैं। मेरे ख्याल से जो ये योजना जो केंद्र सरकार की है, खासतौर पर मैं इनका जिक्र करूंगा, ये 5 अलग अलग तरह की हैं। ये तो कृषि और कृषि किसान कल्याण की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा की योजनाएं हैं, बुनियादी ढांचे को विकसित करने की योजनाएं हैं, रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाएं हैं और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं
1: जी।
2: तो इनमें जो मध्य प्रदेश में काम हो रहा है अलग अलग तरीके से, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। और खास करके जो किसानों की योजनाएं हैं उसके अंदर तो ये है कि केंद्र सरकार के अलावा मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से एक थोड़ा योगदान उसमें दे रही है, तो किसानों को इसका दोहरा लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो मध्य प्रदेश का जो तेजी से विकास पिछले कुछ सालों में लगातार देखने को मिल रहा है, उसके पीछे ये है कि जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो उसी तरह से ये डबल डिब्बे जो हैं योजना के, मेरे ख्याल से ये आगे बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश को।
1: अक्षय जी, आपकी दृष्टि में इन वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं?
3: सबसे पहले तो 12 साल में जो हमने परिवर्तन इसमें महसूस किया है मोदी जी के 12 साल पूर्ण होने पे, कि उनकी जो नीति रही है वो हमेशा से राष्ट्र प्रथम की नीति पे वो चले कि मेरा देश सबसे पहले। और उसको यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें, जैसे कि आज की अपने चर्चा का विषय है, तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश ने अपने आप अपने विकास को अपने प्रगति को सबसे आगे रखते हुए और मोदी जी के कार्यकाल में अपने आप को सबसे तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। पहले वो शिवराज सिंह जी की सरकार रही और अभी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। इसमें दोनों ही, और जैसे अभी डबल इंजन की सरकार की बात हो रही थी और कई जगह तो लगभग ट्रिपल इंजन की सरकार

मध्य प्रदेश में ज़्यादातर नगर निगम नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी है, कई जगह तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो इस समय तो जनता की भी अपेक्षा है और शासन तंत्र भी उस तरह का है कि आपको विकास की

0: अनुकूल राज्य सरकारें हुई, केंद्र की सरकार हुई, तो उन्होंने सबने आपस में बैठ के समझौता किया और उस पर हम आगे बढ़े। हाईवे एक्सपेंशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी से हम उस पर काम किया है। बहुत सारे एक्सप्रेस वेज मध्य प्रदेश में बनने शुरू हो गए हैं और वो केंद्र सरकार के मदद से ही उसमें हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। इसके अलावा रेलवे को लेकर काफ़ी बड़ा एक मॉडर्नाइजेशन कैंपेन पूरे देश भर में चला है। इसमें भोपाल से दिल्ली, इंदौर, नागपुर इस तरफ का पूरा जो और वंदे भारत का बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे प्रदेश में शुरू हुआ है। तो इससे नेटवर्किंग में रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क, इन दोनों ने बहुत बड़ी उसमें हमें मदद करी है। एविएशन के सेक्टर में भी कई नए हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स खुले हैं। उस अभी कई वर्षों में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में पीएमसी हेली सर्विसेज, हेली पर्यटन सेवा शुरू, जिन्होंने धार्मिक केंद्रों को जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत मध्य प्रदेश के विकास में बहुत अहम भूमिका निभा रही
1: हैं। एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा मैं,
2: जरूर,
1: कि मध्य प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी ये केवल मध्य प्रदेश को नहीं जोड़ती है, क्योंकि मध्य प्रदेश चूंकि देश के बीच में बसा हुआ है तो हम अपने साथ और कई राज्यों को भी जोड़ते हैं। तो मतलब ये जो क्रॉस कनेक्शन है राज्यों का, ये भी अपने आप बढ़ता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे ख्याल से, कि हम केवल अपना ही विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अपने साथ दूसरे राज्यों को भी लेके चल रहे हैं।
0: एज ए कैटलिस्ट के रूप में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम हृदय प्रदेश में केंद्रित हैं, तो हम एक कैटलिस्ट के रूप में पूरे देश के विकास में कैटलिस्ट के रूप में।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
4: निश्चित तौर पर हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अजय सर, विकसित भारत 2047 का जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है और कहा है कि हम को प्रगति करनी है ताकि हम विकसित हो जाएं 2047 तक, जो अभी तक प्रगति हुई है उस दिशा में, आप उसे कैसे देखते हैं?
1: देखिए, जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है
4: जी।
1: 2047 का मतलब ये कि भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे
4: जी।
1: तो 100 साल में भारत को दुनिया के 4-5 जो विकसित देश हैं उसकी पंक्ति में लाना, उसका मतलब ये है कि हमारा सामाजिक विकास भी उस तरह से होना चाहिए, हमारा जो है वो आर्थिक विकास भी उस तरह से होना चाहिए, स्वास्थ्य भी है इसके अंदर, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, तो तमाम इन सारे पहलुओं को लेकर के और उस स्थिति में आए कि हम एक देश सुखी और समृद्ध देश, जिसके बारे में कह सकते हैं कि जहाँ पर रहने की, जीने की जो श्रेष्ठतम सुविधाएं वहाँ पर हों, भारत उस श्रेणी में आए जैसे कि कुछ दुनिया के देश 4-5 इसमें गिने जाते हैं, तो वो बड़ा लक्ष्य है। एकदम ये हासिल करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि उस दिशा में ये धीरे धीरे लगातार देश आगे बढ़ रहा है और उसी को चूंकि बड़ा टारगेट है
4: जी,
1: तो संसाधन भी उतना ही चाहिए।
4: बिल्कुल,
1: तो सरकार के पास जितने संसाधन है उसके हिसाब से जो कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत करने की कोशिश कर रहा है और मध्य प्रदेश का उसमें योगदान है, तो हम उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अगर इसी गति से काम होता रहा तो मेरे ख्याल से वो लक्ष्य प्राप्त करना कोई असंभव नहीं है।
4: सही कह रहे हैं सर। अक्षय सर, युवाओं की भूमिका आप कैसे देखते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है इन सब में युवाओं की भूमिका?
0: सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी का सबसे ज़्यादा फोकस उनके ऊपर रहता है और वो हमारे जो डिविडेंड, यूथ डिविडेंड की बात करते हैं
4: जी जी।
0: कई बार इस तरह की, हमारे पास सबसे ज़्यादा, विश्व की सबसे ज़्यादा युवा शक्ति हमारे
4: जी
0: पास
4: जी
0: में
4: जी।
0: तो उसको लेकर ही जो डिजिटल इंडिया का उन्होंने कैंपेन शुरू किया है, मेक इन इंडिया का कैंपेन शुरू किया है, ये युवाओं को केंद्र में रख के किया है, क्योंकि वो युवा शक्ति ही इसके पीछे ऊर्जा है। इसके कारण से हम अपने देश में भी रोजगार भी सृजन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उनके उस रोजगार के आधार पर हम अपने देश को एक एक, एक प्रगति के पथ पर, जिस 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम कल्पना कर रहे हैं भारत की, उसकी यदि दिशा में हमें बढ़ना है तो युवाओं को सबसे पहले शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार द्वारा, वो निश्चित रूप से उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल इंडिया का वाला जो कैंपेन है पूरा, उनको जनधन योजना के माध्यम से रोजगार के, उद्योग के अवसर प्रदान करने वाले जो कदम है, निश्चित रूप से उनको सशक्त करें, युवाओं को सशक्त करेंगे और वो देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाएंगे।
4: बिल्कुल, वाकई तो कह सकते हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने में। अजय सर, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका मध्य प्रदेश पर क्या असर देख रहे हैं आप?
1: देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि चूंकि 11 योजनाएं जो मेरी जानकारी में हैं
4: वो
1: उसका लाभ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मिल रहा है। अगर हम उसे अगर मोटे तो एक मोटा मोटी बात हम बात देखें तो प्रधानमंत्री किसान

0: सम्मान निधि जो किसानों को सीधे आर्थिक सहायता सालाना जो है 6,000 रुपए 3 किस्तों में देती है, तो इससे ही मध्य प्रदेश में करीबन 81 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसान की जो आय है वो फसलों पर निर्भर करती है, उसको पहले लगाना पड़ता है, फिर फसल आती बीजता है तो पैसे उसके हाथ में आते हैं। लेकिन इस फसल आने के बीच के दौर में जो है हाथ खर्चे के लिए पैसे कई बार उनको दिक्कत आती है, तो ये जो पैसा है भले ही ये राशि उतनी बड़ी ना हो लेकिन ये भी उनके लिए बहुत मायने रखती है।
1: बिल्कुल।
0: और खास बात यह है कि केंद्र सरकार तो दे ही रही है 4,000 रुपए जो है वो मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें ऐड कर रही है, तो जो 6,000 रुपए सरकार दे रही है केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार जो है किसान कल्याण योजना के तहत जो है उस 4,000 रुपए और दे रही है, तो किसान तक 10,000 रुपए सालाना जो है ये नकद राशि पहुंच रही है। तो मेरे ख्याल से किसान खासकर जो गरीब किसान परिवार छोटे किसान हैं उनके लिए 10,000 रुपए की राशि बहुत मायने रखती है। इसके अलावा जो फसल बीमा योजना है, अभी तक तो ये था कि पहले फसलें उजड़ जाती थी, ख़त्म हो जाती थी मौसम के कारण, आगजनी के कारण या किसी और कारण से भी, तो किसान तो बुरी तरह बर्बाद हो जाता था। तो कम से कम फसल बीमा योजना से इतनी राहत तो है कि उसके बदले में से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। मध्य प्रदेश में भी इससे करीबन 14 लाख से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिल रहा है, और अभी तक जो जब से ये योजना चल रही है करीब 26 करोड़ से ज़्यादा पैसा बांटा जा चुका है किसानों को, तो ये किसानों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर एक और बड़ी योजना आयुष्मान भारत वाली है, क्योंकि भोजन के बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य, और ये सभी के लिए है, बड़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है। तो गरीब परिवारों को जो है वो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज कराना मुफ्त में, ये मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती है। तो और इसमें अगला 70 के ऊपर तो सरकार ने जो है 5 लाख का टॉपअप भी दे रखा है, तो सभी के लिए है 5 लाख तक, बाकी का जो है वो तो खैर फिर भी एक निश्चित आय वर्ग के लिए है, लेकिन 70 के ऊपर सभी के लिए है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी सौगात है। और ये सरकार की संवेदनशीलता को जाहिर करती है कि भाई लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी चिंता है, और उनको मुफ्त में या बहुत कम पैसे में इलाज कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये उसका है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे हमने प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना है, उसके अंदर जो है वो सरकार बहुत नाम मात्र के प्रीमियम पर जो है वो 18 से 50 साल के लोगों का बीमा करती है
1: जी।
0: और जब भी मुसीबत में आए तो उसको जो है 2 लाख रुपए तक की राशि मिल सकती है। तो ऐसी अलग अलग कई योजनाएं हैं, तो उसका सीधा सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो वेलफेयर स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, कल्याणकारी सरकार जो कहते हैं, वो उसको कैसे काम करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये उसका उदाहरण है।
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने सर। अक्षय सर, निवेश और उद्योग की बात करते हैं तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं, किस तरह से हम लोग एमएसएमई, स्टार्टअप इन सब में आगे बढ़ रहे हैं?
2: जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों में इन्वेस्टर समिट्स का आयोजन किया गया, और इस बार तो रीजनल समिट्स का भी आयोजन, लगभग 7-8 स्थानों पर रीजनल समिट्स का भी, तो समग्र मध्य प्रदेश को उसमें शामिल करते हुए, वो क्षेत्रीय स्तर पे भी हो, संभागीय स्तर पे भी हो, और पूरे मध्य प्रदेश को एक वैश्विक प्लेटफॉर्म पे रखने वाली बात हो, तो उस रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है, और उसमें उनको अच्छा प्रतिसाद भी मिला है। कई बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी किया है, और केंद्र सरकार ने भी उसमें बहुत अपनी भूमिका निभाई है। एक आपने देखा होगा कि रीवा में एक अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट लगाया गया 750 मेगावाट का लगाया गया है, तो उसमें वो उसकी शायद एशिया के प्रमुख सोलर प्लांट्स में उसकी गिनती होती है, तो उसने हमें वैश्विक मानचित्र पे अपने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का एक मौका प्रदान किया है। ये सब इस तरह के जो प्रकल्प हैं वो सारे मध्य प्रदेश में जो एमएसएमई सेक्टर भी है और एसएमई सेक्टर है, इन सबको एक एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, उनको शक्ति प्रदान कर रहा है, और सरकार ने जितनी अपनी योजनाओं में उनको सहूलियत देने का प्रयास किया है, अपने उनको जमीन आवंटन के लिए है, उनको बिजली आवंटन के लिए है, पानी है, और कुछ सब्सिडीज हैं,
1: बिल्कुल
2: तरह तरह की सब्सिडीज नए उद्योग लगाने के लिए दी जाती है, फिर वो हर क्षेत्र में हो, सेमीकंडक्टर में हो या उसमें फ्लोरिकल्चर में हो या दूसरे किसी उद्योग में लगाना चाहते हो, युवाओं को उसके लिए प्रोत्साहित किया है, तो एक ऐसा ऐसा वातावरण बनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है कि इसमें मध्य प्रदेश के उद्योगों को, देश के और विदेश के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में आके उद्योग लगाने में सहूलियत मिले।
1: बिल्कुल कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास के अनुकूल पूरा वातावरण प्रदेश में

0: बनाया गया है ताकि जो बाहर उद्योगपति हैं वो हमारे यहाँ आए तो उनको हर तरह की फैसिलिटीज दी जा सके। सर, डिजिटल इंडिया अभियान का देखा जाए तो मध्य प्रदेश पे वोकिल सर क्या असर पड़ रहा है?
1: देखिए, डिजिटल अभियान का सबसे बड़ा दो उदाहरण यही है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन जिस तरह तेजी से बढ़ा है, मेरे ख्याल से दुनिया में शायद सबसे नंबर वन पर भारत पहुंच गया है, जिसमें इतने अभी शायद अभी पढ़ रहा था मैं 30 अरब करीबन ट्रांजेक्शन हुए। मतलब ये है कि अनपढ़ आदमी भी जो मोबाइल ऑपरेट कर लेता है और वो डिजिटल ट्रांजेक्शन से जो है पैसे का लेन देन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जिस देश में साक्षरता अभी 100% नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, वहाँ अगर लोग इतने मॉडर्न तरीके से, जो शायद अमेरिका में भी नहीं होता है आज की तारीख में, और इस पर जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से सरकार की भी सफलता है, सरकार की संकल्प शक्ति की सफलता है कि हमने जो है उसको लागू करके दिखाया और वो अब अमल में आ रहा है। दुनिया इसको लेकर के चकित है कि भारत जैसे देश में इतने बड़े पैमाने पर ट्रांजेक्शन के कैस ट्रांजेक्शन घट गया। उससे एक सबसे बड़ा फायदा हुआ कि सर रिजर्व बैंक को नोट भी कम छापने पड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ा फायदा ये भी है। और दूसरी बात ये है कि हम जिस आधुनिक जमाने में जा रहे हैं, वो जब AI का ज़माना आ रहा है, शुरू भी हो गया है, तो उस तरीके से अगर भारत उसी लाइन पर आगे बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल से हम उस स्थिति का भी मुकाबला कर पाएंगे। एक तरह से ये एजुकेशन है, एक तरह का डिजिटल एजुकेशन की तरह मैं इसको देखता हूँ कि एक शुरुआत है ये, कि आगे और जब जटिल चीज़ें सामने आएंगी तो लोग उसको भी धीरे धीरे अपनाएंगे।
0: बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं, हाल ही में खबर आई थी कि मई के महीने में सबसे ज़्यादा अभी तक UPI के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो एक नया रिकॉर्ड बना है अपने आप में। डिजिटल इंडिया में मध्य प्रदेश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अक्षत सर, देखा जाए तो सामाजिक जो कल्याण की योजनाएं हैं उनमें कैसे देखते हैं कि उनका जो केंद्र सरकार की सामाजिक कल्याण की योजनाएँ हैं उन किस तरह से मध्य प्रदेश में फॉलो की जा रही हैं?
2: उसको पूरी तरह से उसको मध्य प्रदेश में उनको लागू किया गया है। हम अगर जनजाति समाज को लेकर ही देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री ने ही शहडोल से इसका शुभारंभ किया था, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन उन्होंने किया था, और जिसमें कि ग्रामीण अंचलों में जो सैकड़ों कई लोग हैं जिनको क्या वंशानुगत इस तरह की बीमारी होती थी, उससे मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था और उसमें बहुत सफलता भी मिली है। हाल ही में हमने राज्यपाल जी को भी उसमें बहुत सक्रियता से भाग लेते हुए देखा। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान केंद्र के स्तर पे और राज्य सरकार के स्तर पे चलाया गया, जिसका कि मैदानी स्तर पे हमने उसका पालन होते हुए देखा, उसके परिणाम भी आते हुए देखे। कई तरह की जिस तरह की उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में जो पहले चूल्हे जलते थे उसके द्वारा गैस के कनेक्शन मिलने लगे हैं, तो अब उससे धुएं से होने वाली बीमारियों से निजात मिली है, प्रदूषण से भी निजात मिली है, और एक एक आत्मविश्वास का भाव जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और जनता के बीच में आया है इस योजना के माध्यम से भी। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बहुत जो गरीब व्यक्ति था वो भी अपने घर का सपना साकार होते हुए देख रहा है। तो ये सब योजनाओं के माध्यम से समाज में एक जो विश्वास का वातावरण निर्मित हुआ है उसने भारत को एक नई मजबूती प्रदान करी है, और जिस तरह की मजबूत बुनियाद हमें विकसित राष्ट्र के लिए चाहिए उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सर। अजय सर, उपलब्धियों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, साथ ही उपलब्धियां जब आती हैं तब चुनौतियां भी आती हैं, और आगे किन किन क्षेत्रों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है?
1: देखिए, कुछ बुनियादी बातें हैं जिसमें काम तो हो रहा है लेकिन अभी और काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि पीने का पानी, हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो जल मिशन के तहत काफ़ी काम हुआ है और काम हो भी रहा है, लेकिन अभी भी ये बड़ी चुनौती है कि हम जैसे कि कभी अटल जी ने कहा था कि हर गांव के हर व्यक्ति को साफ पानी उपलब्ध कराना हमारे लिए बड़ी चुनौती है, तो वो चुनौती अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो जाहिर है कि उसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, काम हो रहा है लेकिन उसको और तेज़ गति से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले 25 सालों के अंदर में भारत में लगभग हर घर हर व्यक्ति को साफ पानी हर परिवार को मिले, ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको न सिर्फ उस तरह के जो है वो जल संचय भी करना पड़ेगा और जल वितरण की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तो उस दृष्टि से काम होना है। दूसरी बात आवास वाली बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास तो सरकार दिलाई रही है शहरी और ग्रामीणों को, लेकिन अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो इससे वंचित हैं, तो मेरे ख्याल से उनको भी सरकार उसको लेकर आएगी और उनको भी ध्यान रखा ये लिया जाएगा। और तीसरा मुद्दा रोजगार का है, तो रोजगार के लिए भी सरकार जैसे वो जो स्व सहायता समूह वगैरह इस तरह की योजनाएं लेकर के आ रही है, ताकि खासकर महिलाओं के लिए
0: हर जिलों में रोजगार मेले भी आयोजित
1: वो भी है, दूसरे वह अंत्योदय जो है

0: कोई योजना है उस तरह के तहत कि हर 5 रुपए में भरपेट थाली भोजन लोगों को तो उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी है, तो काम तो काफ़ी हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि चुनौतियां तो हमेशा रहेंगी, जैसे काम जैसी उपलब्धियां बढ़ेंगी तो नई चुनौतियां भी सामने आएंगी।
1: चुनौतियां तो आएंगी, उपलब्धियां आ रही हैं, क्योंकि तो चुनौतियों का सामना करने के लिए देश और प्रदेश लगातार तैयार हैं। अक्षय सर, देखा जाए तो मध्य प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य में अपना और किस तरह से योगदान दे सकता है?
2: जैसा कि शुरुआत में हमने बातचीत करी कि मध्य प्रदेश जो है वो हृदय प्रदेश है हमारे देश का, और सभी जो कनेक्टिविटी है के माध्यम से भी, एक लॉजिस्टिक हब के माध्यम से भी हम जो है भारत के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम इसके लिए जो औद्योगिक संरचना, औद्योगिक विकास की आवश्यकता है, उस दिशा में हम आगे तो बढ़े हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत सारा काम करने की
1: जरूरत
2: आवश्यकता है। उसको और जिस तरह के महाराष्ट्र में या गुजरात में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट पहुंचता है, वैसा एक हमें उसके लिए कुछ हमारे पास में वो भी हैं, क्योंकि हम लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, वो बाकी सारे स्टेट्स के पास में समुद्र का जो किनारा है वो उनको व्यापार करने के लिए सहूलियत प्रदान करता है। लेकिन मध्य प्रदेश को हमें अपनी इसी जो हमारी पोजीशन है, हमारी जो अपने आप को लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप करने की जो एक प्रतिबद्धता है या हमारी जो एक नेचुरल पोजीशन हमें मिली हुई है, उसको हमें आगे बढ़ाएंगे तो हम पूरे देश को एक कैटलिस्ट के रूप में विकास की गति पर आगे बढ़ाने में प्रयास कर सकते हैं। और जैसा अभी मध्य प्रदेश के सरकार ने भी अपने एक और वो दिया था, स्लोगन दिया था, विरासत भी विकास भी
1: जी।
2: तो हम विरासत को सहेजते हुए विकास की राह में आगे बढ़ेंगे, ये जो सरकार की प्रतिबद्धता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पूर्व में हमारे जितने जो हमारे मानबिंद ऐतिहासिक या सांस्कृतिक मानबिंद रहे हैं उनको सहेजते हुए हम विकास के पथ पे आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो पिछले दिनों कल्चरल सांस्कृतिक केंद्र है या हमारे धार्मिक केंद्र है, महाकाल लोक है या राम राजा सरकार का लोक है, जैसे अनेक धार्मिक स्थानों को भी पर्यटन के रूप में बहुत बड़े स्तर पे स्थापित किया गया। और अब देखिए कितना उज्जैन में, महाकाल में कितना बड़े संख्या में पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस तरह की धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर भी हम विकास की गति को बढ़ा सकते हैं और उससे पूरा प्रदेश को फायदा पहुंचता है।
1: बिल्कुल, तो पर्यटन जो है मध्य प्रदेश को विकसित बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: जी।
1: अजय सर, जो युवा है 2047 तक भारत को विकसित होना है, वो अपना किस तरह से योगदान दे सकते हैं, आपका संदेश?
0: देखिए, युवाओं का तो क्या है कि अलग अलग तरीके से, बल्कि दे ही रहे हैं, बल्कि मैं क्या दे सकते हैं कि बल्कि अलग अलग तरीके से दे ही रहे हैं, चाहे वो उद्योगों की दृष्टि से हो, खेती की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। तो ये तो अभी आज की तारीख में भारत में करीब 35 करोड़ युवा हैं।
1: जी जी।
0: हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 20 साल बाद ये अधेड़ हो जाएंगे ये सब।
1: जी जी।
0: तो वो भी एक बड़ी चुनौती है, जो आज जैसे जापान जैसे देश इसका सामना कर रहे हैं, हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: तो ये दोहरी चुनौती है, अभी जो अलग अलग तरीके से लोग योगदान दे रहे हैं भारत को, अगर इतनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति आज की है, उसमें भी रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़े आए कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर रही है,
2: 7.8%।
0: हाँ, तो वो इसका मतलब ये है कि इन सब चीजों का भी हमने मुश्किलों को झेला है और अपनी जो रफ्तार को आर्थिक विकास की बनाए रखा है। तो और ये युवाओं के दम पर ही संभव है, बगैर उसका तो हो नहीं सकता है। तो समस्याएं तो हैं उसके, लेकिन फिर भी ये है कि मेरे ख्याल से युवा अपने अलग तरीके से योगदान दे रहे हैं, चाहे वो आर्थिक विकास दृष्टि से हो, चाहे वो व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से हो, खेलों की दृष्टि से हो, खेल में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान की दृष्टि से आगे हो, या और भी तमाम जो है अलग अलग क्षेत्र जितने भी हैं उसके अंदर लोग अपने ढंग से योगदान दे रहे हैं। और भारत दुनिया के अंदर एक बड़ी चुनौती दूसरे देशों के लिए बना हुआ है, ये हमारे लिए संतोष की बात है।
1: जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्षय सर, आपका क्या संदेश है?
2: संदेश मतलब जिस तरह के बताया अजय जी ने कि युवा अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन आने वाले जो समय में जो उम्र का असर उसमें आएगा, उसको लेकर हमें आज से योजना बनानी पड़ेगी। तो उस दिशा में सभी के प्रयास जारी भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आधारभूत संरचना, कृषि उद्योग, डिजिटल सेवाओं और सामाजिक विकास के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अजय सर और अक्षत सर,

0: कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
1: धन्यवाद दीपा जी।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
0: और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीएम मोदी के 12 वर्ष, मध्य प्रदेश बना चीतों का घर। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopairbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

0: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं पर समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच संबंध के लोगों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर पालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। सुश्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को जल्द ही 5 हिमालयी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बीच पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमतें में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में 14 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपये है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लिबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में लगभग $9 अरब की है, उसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना जर्मनी के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। इससे पहले कल रूस की मिरा एंड्रीवा ने माजाचवालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। इसी के अंतर्गत 7:30 पर प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इसमें आपके साथ होंगे डॉक्टर दीनानाथ धोते। विषय रहेगा मानसून के आगमन पर बगीचे एवं उद्यानिकी फसलों में सामयिक कार्य। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप डायल कर सकते हैं नंबर 2660902। साथ में भोपाल का एसटीडी कोड आपको लगाना है 0755। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में रात 8 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभार आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता। 8:35 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। दिल्ली केंद्र से ही रात 10:30 प्रसारित होगा कार्यक्रम अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इसमें विद्वान MSN मूर्ति का वायलिन वादन आप सुनेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। सोमवार 8 जून को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में कल सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 प्रसारित होगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर आनंद लीजिएगा लोक संगीत का। इसमें कलाकार आशा शर्मा के स्वर में अवधि लोकगीत आप सुनेंगे। 9:30 प्रसारित होगा उर्दू कार्यक्रम आईना। इसमें विशेष आप सुनेंगे सब खान का कलाम। ठीक 10:00 होगी जिले की चिट्ठी। 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत सागर। ये कार्यक्रम भारतीय प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रित रहेगा। 10:30 आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत की कार्यक्रम राग माला का। इसमें कलाकार रसिक लाल अंधारिया के स्वर में ख्याल गायन आप सुनेंगे। राग होगा कोमल ऋषभ असावरी। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में ही ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। इसमें विशेष आकर्षण होगा लोक रंग।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुबह 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष फोन आउट कार्यक्रम। फिल्म संगीत होगा दोपहर 2 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय रहेगा दोपहर 2:30 बजे। 12:30 बजे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेंगे रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार का तीसरा भाग। दिन के ठीक 1 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। इसमें डॉक्टर अभिनव साठे की भेंट वार्ता आप सुनेंगे। विषय रहेगा फिजियोथेरेपी से दर्द प्रबंधन के आधुनिक तरीके। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होगा। 1:30 पर आनंद लीजिएगा लोक संगीत का। इसमें कलाकार आशीष श्रीवास्तव और साथियों के स्वर में बुंदेली लोकगीत आप सुनेंगे। 1:45 पर आनंद लीजिएगा।

0: का सुगम संगीत का इसमें कलाकार राजेंद्र पारिक के स्वर में भजन और गीत आप सुनेंगे। सांधिकालीन सभा में शाम के ठीक 5:02 पर प्रसारित होगा युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल द्वारा शासकीय सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल में 5 जून 2026 को आयोजित तत्कालीन भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश आप सुनेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30 रात 8:35 पर। 6:45 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार दर्शन। 6:40 पर सुनेंगे आरएनयू भोपाल का कार्यक्रम आजकल। 9:30 दिल्ली केंद्र से पब्लिक स्पीक आप सुनेंगे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश रात 10:00। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
4: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
4: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद देश में मिल रही है सस्ती गैस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशे के खिलाफ एक सामाजिक जागरण करने पर दिया जोर। और प्रदेश में 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है मॉनसून। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों में खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेश है आकाशवाणी से एक विशेष रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के भारतीयों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की बड़ी जरूरत है, क्योंकि यह हम सबके उदर पोषण से जुड़ा विषय है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की सार्थकता हर नागरिक को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलने में है। प्राकृतिक खेती अपनाने से इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा।

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विश्व खाद्य सुरक्षा पर यह संदेश देते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उन्होंने इस विशेष दिवस पर प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आइए हम सब खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और इसके पोषक तत्वों के मानकों के प्रति सदैव जागरूक रहें। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए। साथ ही बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इंदौर में 9 से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण कृषि सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने रेसिडेंसी में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में सम्मेलन से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुरक्षा, आवागमन, आवास, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन तथा अतिथियों के स्वागत सत्कार सहित अन्य सभी आवश्यक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुसंधान, सतत कृषि विकास, आधुनिक तकनीकों तथा किसानों की आय वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। आयोजन के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र, विशेषज्ञ चर्चाएं, प्रस्तुतियां तथा अनुभव साझा करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचारों वक्त है कब छोटे से विराम का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचार में पुनः आपका स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर के आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा में सेवा का महायज्ञ दूसरे दिन भी जारी है। चिकित्सकों की टीम पूरी निष्ठा से हर नागरिक की जाँच और उपचार में जुटी है। श्री चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसको वैक्सीन के माध्यम से पूरी तरह से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ एक सामाजिक सख्ती का जागरण करना पड़ेगा।
2: अलग अलग ढंग के कैंसर देख जो तथ्य आए वो बेहद चिंताजनक। अब अगर 2598 में से 586 पॉजिटिव जिनको निश्चित कैंसर है निकल रहा, 254 सस्पेक्टेड है, तो आप कल्पना करो कि बीमारी कितने भयानक ढंग से फैल रही है। हो सकता है कई लोग नहीं आए हो और नहीं आ पाए। सबसे ज्यादा आए मौके कैंसर वाले। ये मौका कैंसर क्यों होता है? ये अपने आप नहीं होता, ये आफत हम खुद बुलाते हैं। ये होता है तंबाकू से। इलाज कराते कराते परिवार टूट जाता है। कई बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। कई बच्चे अपने पिता का अस्पताल के बाहर इंतजार करते हैं। बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं।
0: भारत सरकार खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना मिशन के तहत चलाए जा रहे फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान और विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम तथा फिटनेस रैली का आयोजन धार में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं सांसद सावित्री ठाकुर ने कहा कि
3: साइकिलिंग इसलिए हमारे जीवन में जरूरी है, एक्सरसाइज, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ और समृद्ध रहे, हम ऊर्जा के साथ काम करें और अंदर से व्यक्ति जब मजबूत होगा तो जीवन में वो हर काम को मजबूती से कर पाएगा। और आज इस दिवस की मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और जीवन में हर व्यक्ति को साइकिलिंग करना चाहिए, सभी से मैं आह्वान करती हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है। ये समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं और सबके जीवन में सद्भाव एवं आत्मिक शांति का संचार करते हैं। साथ ही ये मनुष्य को उसके कर्तव्यों और मानव सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला दिव्य ज्ञानामृत है। भारत ने कल गोवा के मडगांव में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। भारतीय महिला खिलाड़ी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 18 गोल करने की उपलब्धि भी हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भारतीय महिला फुटबॉल टीम को चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा भारतीय टीम की यह सफलता खेल जगत में प्रेरणा का नया अध्याय

लिखेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं। प्रदेश में मॉनसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। राज्य के सभी जिलों में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार केरल से देश में प्रवेश करने वाला मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को प्रदेश के उत्तरी जिलों में हीट वेव चलने की संभावना भी जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में संचालित देश के पहले महिला बंदी स्व सहायता समूह को डेयरी से व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया गया है। ये पहल महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने का अनूठा प्रयास माना जा रहा है। खंडवा में प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने खालवा में लगभग 1,20,00,000 रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी?
2: हाँ।
1: नए झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

घर आंगन कार्यक्रम सुनवी वारी सभी बहनन को वर्षा बहन की राम राम। बहनों कैसी हैं आप? हम उम्मीद कर रहे थे कि आप सभी अच्छी होंगी। बहनों, गर्मी को मौसम चल रहा है तो अपन को तो ऐसा लगा था कि फ्रिज को ठंडो ठंडो पानी पीत रहे। तो बहनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने हैं। कैसे जब भी प्यास लगे तो मटकी को शुद्ध ताज़ा पानी ही पिए। कैसे बहनों जी, पानी पीवे में तो अच्छा लगता ही है लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहते, तो खुद भी पिए और घर वालों को भी दें। और बहनों, हमें तो पशु पक्षियों को भी ध्यान रखनी है, तो ई के लिए घर की छत पर, घर आस पास मिट्टी के सकूरे रखें, उसमें पानी भर के रखें, दाना पानी रखें, ताकि पशु पक्षियों को भी दाना पानी मिल सके और वो जीवित रह सके। और बहनों, आज है 7 जून। 7 जून को हर वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इसलिए मनाया जाता है बहनों, ताकि सभी लोग जे दिन मनावे के महत्व को समझ सकें। जे दिवस मनावे को मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को जो दूषित भोजन से हुए वाले जो हानि है उसके बारे में सभी को जागरूक कर सकें और खाद्य सुरक्षा निश्चित करने के लिए कदम उठा सकें। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित करो जाते है। बहनों, खेत से लेकर थाली तक सुरक्षित भोजन सबको मिल सके, जे महत्व समझावो, ताकि अपन देखते हैं कि खाद्य जनित बीमारियों को रोको जा सके। अपन देखते हैं कि हर साल दुनिया भर में लाखों लोग दूषित

खाना खाबे की वजह से बीमार पड़त हैं। तो और जिनमें छोटे बच्चों का अनुपात बहुत ज़्यादा होता है, काय से छोटे बच्चों की जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, जे दूषित भोजन बच्चों पे जल्दी असर डालत है। तो सवन को सुरक्षित भोजन मिले, न केवल मानव को स्वास्थ्य बेहतर बने, जी वजह से जी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। और जाके संग संग जैसे बल कृषि व्यापार और आर्थिक समृद्धि में भी जैसे योगदान मिलत है। बहनों, हम आपको बता दें कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, यानी आज के ही दिन, विश्व भर में मनाया जा रहा है, जबकि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जे दिवस के माध्यम से लोगों को जागरूक करो जाते हैं कि वो पौष्टिक भोजन को चयन करें और जागरूक बने। सभी लोग सुरक्षित रहें, सबको पौष्टिक भोजन मिले, सब स्वस्थ रहें, जे दिवस मनावे को मुख्य उद्देश्य है। और जे दिवस के माध्यम से सरकारों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं को जे याद दिलावो भी है कि सुरक्षित भोजन हम सबन की जिम्मेदारी है, खेत से लेकर थाली तक। इस अवसर पर दुनिया भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, वेबिनार जे सब आयोजित करे जाते हैं ताकि खाद्य मानकों को पालन हो सके और वैश्विक स्वास्थ्य की रक्षा करी जा सके। शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लाने, देखो बहनों, संतुलित आहार तो बहुत ही ज़रूरी है। और संतुलित आहार में जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फलियाँ, दालें, मेवे, बीज, ताजे फल जैसे सेब, केला, संतरा, बेरीज, ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इनमें फलों में जो प्राकृतिक शर्करा होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरे होते हैं, जो शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और त्वचा को भी स्वस्थ रखते हैं। तो बहनों, यही सब चीज़ों को देखत भाई विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। और बहनों, यही से संबंधित भेंट वार्ता भी हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं जे लोकगीत आभा खरे की आवाज़ में।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भाइयों बहनों, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। बहनों, तो अब हम आपको विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सुनवा भी जा रहे हैं जी भेंट वार्ता। इको विषय है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर रश्मि वाजपेयी, और इनसे बातचीत कर रही हैं अपनी बहन आरती शुक्ला। तो बहनों सुनते हैं जी भेंट वार्ता।
4: किसान भाइयों एवं बहनों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का दिन हमें यही याद दिलाता है कि जो भोजन हम स्वाद लेकर खाते हैं वह हमारा पेट तो भरे ही, साथ ही स्वास्थ्य और सेहत की भी हमारी रक्षा करे। क्योंकि खेत से लेकर थाली तक भोजन की शुद्धता और सुरक्षा, ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। फिर चाहे वो हमारे किसान भाई बहन हो, व्यापारी वर्ग हो, या रसोई संभाल रहे हम और आप, खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है इसके नियम जानना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो सुरक्षित भोजन बेहतर कल, ये नारा तभी सच होगा जब हमारे पास सही जानकारी होगी। और इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, हम सभी को जागरूक बनाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रश्मि वाजपेयी। डॉक्टर रश्मि वाजपेयी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रश्मि वाजपेयी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में। तो डॉक्टर बहन, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: तो सबसे पहले चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, और इस बात पे हम जानना चाहेंगे कि जो खाद्य सुरक्षा की, जैसे अभी शुरू में हमने बात करी, ये हम सभी के जीवन में क्यों जरूरी है।
5: बिल्कुल, जैसा कि अपन शब्द को ही लें कि ये खाद्य सुरक्षा है ना। तो खाद्य मतलब जो भोजन है, वो केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट भरने के लिए है, बल्कि उसी से हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। हम जैसा कहते भी हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, है ना। और अगर हमारा भोजन सुरक्षित है,

सेफ है तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, और नहीं तो क्या होगा, हमें बहुत सारी बीमारी ग्रसित कर लेंगी। उदाहरण के रूप में जैसे कि आपका हैजा है, या जो हम कहते हैं ना कि फूड पॉइजनिंग हो गई जिसकी वजह से उल्टी हो जाए।

0: या कैसे दूषित है? तो जैसे सबसे पहले तो आप बात करें कि साफ सफाई की, है ना, जैसे हम जब कुक कर रहे हैं, जो भी हमारी महिलाएं हैं जब वो बनाती हैं तो सबसे पहले तो स्वयं अपने ही हाथ वगैरह साफ करें, क्योंकि आप अपने हाथों से ही बनाने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो आपका रॉ मटेरियल है, जो जैसे सब्जियां हैं, कई बार हम देखते हैं कि सब्जियां लाए और हमने उन्हें काट लिया, जबकि ये प्रक्रिया गलत है। हम काटने के बाद धोते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें काटने से पहले धोना चाहिए। फिर जो हम धो रहे हैं वो पानी कैसा है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पानी इतना महत्वपूर्ण है इसमें कि जब आप धो रहे हो वो भी अगर अच्छा पानी नहीं है तो एक समस्या है, और जब आप कुक कर रहे हो आपने किस तरह के पानी का उपयोग किया है उस पर भी आपका भोजन निर्भर करता है। क्योंकि यदि अच्छा पानी होगा, साफ सफाई से खाना बनेगा, तो हमारा खाना भी सुरक्षित रहेगा। इसके बाद अब जब आपका बन गया तो हम कहते हैं ना कि यार 2 घंटे के भीतर आप उस खाने का कंज्यूम कर लो, आप खा लो। अगर आप नहीं खा रहे हो और वो वैसे ही पड़ा है, किस तापक्रम पे पड़ा है, तो भी वो दूषित होने के क्यों, उसमें आप जर्म्स आ जाएंगे।
1: बिल्कुल, कई बहनें क्या करती हैं, खाना जब बनाती हैं और बना और ऐसे खुला छोड़ दिया।
0: बिल्कुल, अगर हम खुला छोड़ेंगे, ओपन छोड़ेंगे, तब भी उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जर्म जो है पैदा होंगे, और मक्खी वगैरह। हाँ, मक्खी तो नॉर्मल, अगर हम उसका प्रिकॉशन नहीं करेंगे, क्योंकि उसी के माध्यम से तो आ रहे हैं, वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, और सारी बीमारी आप देखो तो या तो वायरस से हो रही है या फिर बैक्टीरिया से हो रही है। तो इनको संरक्षित करने के लिए हमें प्रॉपर ढकना भी चाहिए और सही पानी का उपयोग करना चाहिए।
1: यदि
0: साफ करें, और यदि आपका खाना बच गया है तो आप उसे कूल रखें, मतलब फ्रिज के अंदर रखें, है ना। तो ये सारी छोटी छोटी सी सावधानियां हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक है एक भोजन को स्वस्थ बनाने में, क्योंकि जब वो भोजन आप खाओगे, अच्छा सुरक्षित भोजन खाओगे, तो आप भी स्वस्थ रहोगे।
1: कई हमारी महिलाओं की आदत होती है कि सब्जी पहले काटी फिर बाद में उसको धोना है। तो मैंने सुना है कि जो पोषक तत्व वगैरह होते हैं वो सारे चले जाते हैं, ये कहाँ तक सही है?
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि सुरक्षित भोजन, अब इसमें दूसरा आयाम हमें लेना चाहिए कि जो भोजन है, पहले तो वो भोजन सुरक्षित हो, लेकिन वो भोजन न्यूट्रिशन से भरपूर है या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज आप देख रहे होगे कुपोषण की जो बीमारी है, कुपोषण अपने आप में एक बहुत बड़ी महामारी है, है ना। इससे हमारे छोटे बच्चे, और स्पेशली अगर हम शहर और उन्हें वो जागरूक भी है, तो वो थोड़ा सा पोषकता का या न्यूट्रिशन का ध्यान रखता है अपने खाने में, लेकिन जो हमारे गाँव के बच्चे हैं वो उतना,
1: हाँ,
0: जो महिलाएं हैं वो उतना नहीं ध्यान रखती हैं, वो अपने पोषण में उतना सभी चीज़ों का समावेश नहीं कर पाती हैं, इसीलिए कुपोषण की समस्या आ जाती है। और सरकार भी इस पर बहुत सारे अभियान चला रही है। तो हमारे शरीर में एक कहते हैं ना संतुलित पोषक, जिसमें आपका हर चीज़ हो, ऐसा नहीं है कि जैसे आयरन है या कैल्शियम है या विटामिन्स हैं, है ना, तो कितने सारे, मतलब
1: आपके मात्रा भोजन में सब
0: जरूर होना चाहिए। आप जो भी खाएं, हम कहते हैं ना रंग बिरंगा खाना चाहिए। अगर आप जितना रंग बिरंगा खाएंगे, कलरफुल खाएंगे, आपके न्यूट्रिशन उतने ही उसके अंदर एक्सेस होंगे।
1: बिल्कुल सही बात है, जैसे आपने रंग बिरंगे की बात करी, भोजन में भी ये अच्छा महत्व तो देता ही है, साथ ही हमारे मन को भी बहुत खुश रखता है।
0: और कोई भी चीज आप बनाते हो ना, तो जब जैसे अपन एक उदाहरण दें, आप डोसा बना रहे हो या आप जो है उत्तपम बना रहे हो, जब आपके अंदर उसमें शिमला मिर्च लाल, हरी, पीली, है ना, या गाजर या मटर, ये सब रहता है,
1: तो वो अपने आप में टमाटर,
0: हाँ, हरा धनिया है, मिर्ची है, तो वो क्या है, पूरा उसका जो है न्यूट्रिशन बढ़ जाता है उसी चीज़ का। देखिए नियम तो ये कहता है कि जब भी आप खाना बनाएं, है ना, सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, जैसे हमने अभी जो भी हमने चर्चा की, इसके बाद जैसे ही आपका तैयार होता है खाना, आप 2-3 घंटे के अंदर उसको खा लें, है ना, क्यों, क्योंकि उसकी ताजगी उतने समय तक बरकरार रहती है। उसके बाद अगर हमारी मजबूरी है तो ही हमें फ्रिज के अंदर रखना है।
1: अच्छा।
0: कुछ चीज़ें हैं जैसे दूध है, दही है ना, ये वाली चीज़ें तो हम रखते ही हैं, लेकिन जो हम रूटीन का सुबह का जो रोज का खाना बनाते हैं, दाल सब्जी वगैरह, वो हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी पूरी कंज्यूम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप रात का खाना अगले दिन खाते हैं तो फिर उसके अंदर पोषक तत्व कुछ बचते नहीं है, है ना, और उससे हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं, जैसे कहते हैं ना अपच हो जाती है, कब्ज हो जाती है, तो ये समस्याएं उसी से कन्वर्ट हो जाती हैं। और कई बार फूड पॉइजनिंग भी उसी का रहता है, कई बार हम बाहर से लाते हैं कई सारी चीज़ें, उनके अंदर इतने जर्म्स रहते हैं, अब आपने उसके और मल्टीप्लिकेशन करा दिए, है ना, और फिर आप उसको रखा हुआ 1-2 दिन पुराना बासा जब आप खाना खाओगे, तो उसके अंदर की जो ताजगी है या न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें कुछ भी नहीं रहते।
1: आजकल देखिए आपके बच्चों को बाहर के खाने की बहुत लत हो गई है ना, और ये नहीं जानते कि ये शरीर को कितना नुकसान देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। अब आप बाहर के खाने की जब आपने बात छेड़ी दी है, तो आप देखिए बाहर आपका कुछ भी

0: खाना शुद्ध इसलिए नहीं है कि उसके अंदर एडल्ट्रेशन की लिमिट इतनी ज़्यादा है कि आपको मालूम ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ, जैसे आपने मान लो सॉस लिया है ना, अगर आप कुछ भी बाहर से खाते हैं, पेटीज खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, तो आप उसमें डालते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब ये सॉस में कहने को आप कहते हैं कि टमाटर का सॉस है या टमाटर का केचप है, अब आपको ये मालूम ही नहीं है कि कहो इसके अंदर टमाटर का अंश भी ना हो।
1: बिल्कुल,
0: आपको आपको लग रहा है कि ये टमाटर है, उसमें टमाटर का आपको ढूंढो नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कभी भी अगर फूड से, चूँकि फूड से रिलेटेड बात हो रही है, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जितना रॉ लें, है ना, जैसे कोई भी मसाला है, अगर आप पिसा हुआ मसाला लेंगे, आप मान के चलिए कि उसके अंदर एडल्ट्रेशन है। अगर आप उसी मसाले को रॉ लीजिए, जैसे आप हल्दी अपना खरीदिए, आप स्वयं पिसवाइए, धनिया आप स्वयं खरीदिए, पिसवाइए।
1: पर ये कि जो बाहर की जो चीजें हैं तो ज्यादातर उसमें मिलावट ही मिलती
0: है, मतलब संभावना 90 क्या मोर देन 90% है। इसी तरह से जैसे आपका पैक्ड फूड है ना, जो हम प्रिजर्व करते हैं और वो उसमें लिखा भी रहता है, हालांकि जागरूक नहीं है तो वो पढ़ती भी नहीं है कि उसमें क्या एक्सपायरी लिखी है। बहुत सारे आइटमों में एक्सपायरी डेट के बाद भी अगर वो कंज्यूम कर लेंगी तो फिर वो नुकसान ही करेगा, वो पूरा पूरी तरह से फूड जो है असुरक्षित है। और पैक्ड फूड में क्या है कि उसके अंदर ना ही तो न्यूट्रिशन है, है ना, और ना ही, बल्कि अगर वो आउट ऑफ डेट हो गया है, एक्सपायर्ड हो गया है, तो बजाय वो आपको जरा सा भी न्यूट्रिशन देने के, वो आपको अनहेल्दी हो जाएगा, अनहाइजीनिक है ना, तो उससे आपकी बीमारियां बढ़ना निश्चित है। वो जो हम कहते हैं ना मोटापा, या आपकी फैटी लिवर, ये जितने भी इश्यूज हैं आजकल जो आप नाम सुनते हैं, हाँ, बीमारियाँ हैं, तो वो 90% तो पैक्ड फूड के सेवन से हैं।
1: तो बेहतर तो यही है कि अगर हमें अपनी सेहत अच्छी रखनी है, सेहत दुरुस्त रखनी है, तो हम घर में ही पकाएं। डॉक्टर रश्मि वाजपेयी बहन, आप हमें इस विषय पर और प्रकाश डालें कि खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर किसान अन्नदाता को किन किन समस्याओं का, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हमारा अन्नदाता, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि हमारे किसान हैं, है ना, वही हमें भोजन या अन्न जो है उपलब्ध कराते हैं। जो हमारे किसानों को समस्याएं लेनी पड़ती हैं वो हैं, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज, जिसको हम कहते हैं ना जलवायु परिवर्तन, गर्मी में सर्दी का अनुभव हो रहा है, बरसात में जो है वो ठंड लग रही है, बारिश नहीं हो रही है, सर्दी में बारिश हो रही है, तो इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जो सीज़न था उस सीज़न में वैसी फीलिंग ना करके दूसरे सीज़न की फीलिंग आ रही है। तो ये इसी को हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज। अब हमारा किसान बेचारा फसल जो है सीजन के हिसाब से लगा रहे हैं, अब अगर वो सीजन अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से वो फसल उतना पड़ेगा, है ना। और हम देख भी रहे हैं, कहने का तात्पर्य है कि ये जो जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे कृषक भाई जो है काफ़ी परेशानी झेलते हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण, मतलब एक चुनौती है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो मिट्टी की फर्टिलिटी, क्यों? क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है, और वो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमें जो है प्रोडक्शन बढ़ाना है। किसान सोचता है कि अगर हमने 100 किलो यूरिया डाली है तो इतना हो रहा है, तो हम जरा ज़्यादा डाल दें, प्रोडक्शन हमारा और अच्छा हो जाएगा। अब वो हमारी मिट्टी उसका क्या असर डाल रही है कि वो धीरे धीरे धीरे धीरे बंजर हो रही है, और हो ही रही है धीरे धीरे हर स्टेट में जो है, क्यों? क्योंकि वो उर्वरक का उपयोग संतुलित नहीं कर रहे हैं।
1: इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे जो किसान भाई हैं वो किस प्रकार अपनी खेती करें,
0: हाँ,
1: जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन भी मिले, और जो भोजन है, जैसे कि ज्यादा उन्हें रासायनिक खादों का उपयोग ना करना पड़े, अन्न है, जो अनाज है, वो सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मिली है। देखिए, इसीलिए आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार भी और जितने भी हमारे जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है या हमारे जो कृषि विभाग वगैरह हैं, उद्यानिकी विभाग हैं, सभी की तरफ से आजकल बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, और उसमें हम जो है किसानों के पास यही मैसेज लेके जाते हैं कि मिट्टी को आपको सुरक्षित रखना है, मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, स्वस्थ बनाने के क्या तरीके हैं, जैसे आप जैविक खेती अपनाएं, है ना, आप प्राकृतिक खेती अपनाएं। जैविक खेती में क्या है, आपको मालूम होगा कि हाँ, इसमें खाद पड़ी है जो कि कार्बनिक है, ऑर्गेनिक है, ये आपकी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको अच्छा करेगी, है ना। और साथ ही साथ आप ऑर्गेनिक खेती अपनाओ जिससे आपकी मिट्टी अच्छी हो। प्राकृतिक खेती में हम कहते हैं जीवामृत दो, घन जीवामृत दो, ऐसे ही हमारा जो है ब्रह्मास्त्र है, अग्निअस्त्र है, है ना, या छाछ और हम मिर्च वगैरह को पीस करके भी एक बनाते हैं, अर्क बनाते हैं, या सप्तपर्णी दशपर्णी अर्क होता है जिसमें 10 तरह की पत्तियां लेते हैं और ग्राइंड करते हैं उसको, तो ऐसे बहुत सारे अस्त्र हैं, हाँ, हम जो है कीटनाशकों का उपयोग कम कर सकते हैं। अब हमारा स्वास्थ्य, हमारा भोजन कहाँ से सुरक्षित होगा, है ना, क्यों? क्योंकि उस भोजन में ये चीज़ मिल गई है, है ना, उस भोजन में जब जब वो खेत जो जो अपन बात कर रहे हैं ना कि खेत से थाली, तो जब खेत के अंदर ही जो अनाज हो रहा है उसके अंदर ही पोषक तत्व पर्याप्त नहीं है और उसके अंदर ही हमारे रासायनिक कीटनाशकों का मिलाव है, मिलावट है, तो वो हमारे भी भोजन में आ रहा है और हमारा भी स्वास्थ्य उसकी वजह से सुरक्षित नहीं हो पा रहा, असुरक्षित है। तो ये खेत से थाली तक की ये पूरी कहानी है। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि मतलब थाली सुरक्षित रहे। जी,
1: तो डॉक्टर रश्मि वाजपेयी बहन, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जो खाद्य का हम कैसे अपने भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं जो हमारे सेहत को और अच्छा बनाए, इस विषय पर जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी डॉक्टर साहिबा ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको समझ आई होगी और आप इसका निश्चित रूप से ध्यान देंगी, पालन करेंगी, ताकि सभी लोग स्वस्थ रह सकें। तो अभी अपन ने सुनी जी भेंट वार्ता विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर, जानकारी दे रही थी डॉक्टर रश्मि वाजपेयी और इनसे बातचीत कर रही थी अपनी बहन आरती शुक्ला। और बहनों, अब हम आपसे चर्चा करवे जा रहे हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में। बहनों, ये तो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको तरह तरह की योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। बहनों, ये योजना भारत सरकार की एक प्रमुख मातृत्व लाभ योजना है। इसके अंतर्गत जो भी अपने जो गर्भवती महिलाएं होते हैं, बहनें होते हैं, या जो स्तनपान करावे वाली माताएं होते हैं, उनको पहले बच्चे को के जन्म पर उनको 5,000 की नकद राशि दी जाती है और दूसरी संतान के रूप में यदि लड़की पैदा होते तो 6,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता उनको दी जाती है। और जो गर्भवती और धात्री माताएं हैं उनकी पोषण स्तर में सुधार करवे के लाने, या जो बहनें मजदूरी करत हैं उनकी जो आंशिक भरपाई भी जी योजना के माध्यम से करी जाते हैं। और जैसे पहले बच्चे के लिए कुल 5,000 राशि दी जाते हैं जो 2 किस्तों में दी जाते हैं, और दूसरी संतान अगर बेटी होते तो महिला को 6,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाते हैं। और जाके संग संग जो संस्थागत प्रसव सरकारी अस्पताल में या डिलीवरी होवे पे जननी सुरक्षा योजना को लाभ भी अलग से मिलत है। तो ऐसे कुल प्रोत्साहन राशि औसतन 6,000 दई जात है। भारत सरकार द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान करावे वाली माताएं हैं, जो भी हैं, ये इसके सब पात्र होते हैं। और इसके लिए बहनों, आप क्या कर सकत हो, जैसे जो आप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर जी स्कीम को पोर्टल के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं और जी योजना को लाभ उठा सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र जाकर वहां से आशा कार्यकर्ता या ANM से संपर्क कर सकते हैं और जी योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड और बैंक खाता का पासबुक और जो मातृ एवं शिशु संरक्षण कार्ड बना थे वो भी आपको बनवाना पड़ता है, और पहचान पत्र लगा था, जैसे कोई भी प्रमाण पत्र हो आपके पास, राशन कार्ड हो या आयुष्मान कार्ड हो, ई श्रम कार्ड हो या मनरेगा जॉब कार्ड हो, तो कोई भी कार्ड आप दिखा सकते हैं। तो बहनों, ये तो भाई प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में। और अब हम अपनी बहनों को सुनवा भी जा रहे हैं जी बहुत ही प्यारा सा लोकगीत उर्मिला पांडे की आवाज़ में।

बहनों कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। बहनों अपन तो देख ही रहे हैं कि अब जून को महीना चल रहा है और आ भी वालों है विश्व योग दिवस। बहनों योग को हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। कैसे अपन देख ही रहे हैं कि आजकल दौड़ भरी जिंदगी में चारों तरफ बीमारी, टेंशन, खान पान में मिलावट हो रही है। यही वजह है कि आज आवश्यकता जीवात की है कि हम योग को अपनाएं और योग को अपने दैनिक जीवन को हिस्सा बनाएं। नियमित योग करें, नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हम बीमारियों से बच सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि हम योग करें। एक बार अगर हम योग कर वो शुरू कर दें तो हमें धीरे धीरे ये हमारी आदत में आ जाएगा और जब हम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में अंतर दिखेगा तो हमें भी अपने आप में ही अच्छा लगन लगेगा और हम योग नियमित रूप से अपने अभ्यास में ज़रूर से लाएंगे। तो इसलिए बहनों आवश्यकता आज ये बात की है कि हम योग को ज़रूर से अपनाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, उनको भी प्रेरित करें और ख़ुद भी योग के महत्व को समझें और औरन को भी समझाएं। तो बहनों ये तो भाई बात स्वास्थ्य की और अब हम अपनी बहनों को सुनवावे जा रहे हैं एक और प्यारा सा लोकगीत विजयलता पाराशर की आवाज़ में।

बहनों, अभी अपन ने सुनो जी लोकगीत। और बहनों, अब तो अपन देख ही रहे हैं कि घड़ी की सुई इशारों कर रही है अपने कार्यक्रम को समय समाप्त हो रहा है। तो चलत चलत में आपकी वर्षा बहन आपसे विदा लेते हैं। राम राम।

0: प्रसारित किया जा रहा था। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभार आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता।
1: This is Akashwani. In the special series 12 years of the Modi government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
2: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
4: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानती हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम हैं। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो

0: दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारी ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे ना केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है। तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर
0: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं। और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है। और 100 करोड़ से ज़्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं।
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पहुँचने में बहुत कठिनाई है, जहाँ शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज़, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफ़ायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुँच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज़ किए, जैसे हमने कोविड पैंडमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो AI सपोर्टेड, AI ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहाँ पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पर इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल।
1: आज जो है भारत में 170,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं, जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 182,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ENT की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और NCD की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए, तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है, और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है। यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो GDP का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने TB और COVID-19 का भी जिक्र किया, तो आज TB के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, TB के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, TB एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है, ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है। लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जाँच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूँगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ COVID-19 की भी चर्चा करते हैं। COVID-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफ़ी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, COVID-19 पैंडेमिक पूरे दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की ज़रूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पर हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पर कहीं भी जो कमियाँ हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके ज़िले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो। जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है, तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब COVID-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से COVID-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहाँ तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है। और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिंस जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयाँ पहुँचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़ें, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, TB मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेज़ी से चल रही है। और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है। और इसके लिए ज़रूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं और से क्या कहना चाहेंगी?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार।
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी ज़रूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाज़त और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभार आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्री 420 से गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर में। गीत लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीतकार शंकर।

0: बोलो क्या, बोलो ना।
1: मो इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना।
2: किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी। गीतकार हैं मजरू, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
0: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
0: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
2: आपके साथ
0: आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: कवि हेमंत देवलेकर,
8: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी

0: में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस ने के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम

0: विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गाँव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 7 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने एक एक सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9।
5: The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
6: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. They also reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral fora. Dr. Jaishankar and Mr. Sugiono welcomed the upward and growing trajectory of bilateral relations. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years.

0: Vicky bagged bronze defeating Mongolia's Ghangkhuya Ganbaatar 4-0. In cricket, Afghanistan were 113 for 5 in their first innings at stumps on day 2 of the one-off test against India in New Chandigarh, trailing by 451 runs. Rehmat Shah remained unbeaten on 43 at the end of play. For India, debutant Manav Sutar picked up 3 wickets, while fast bowler Prasidh Krishna claimed 2. Earlier in the day, India declared their first innings at a commanding 564 for 8. Captain Shubman Gill led the charge with 126, while KL Rahul struck 100. Rishabh Pant and Sai Sudarshan contributed 81 runs each, and Washington Sundar remained unbeaten on 52. For Afghanistan, Salim Safi was the standout bowler, taking 6 wickets. In French Open tennis, men's single title clashes underway between Germany's Alexander Zverev and Italy's Flavio Cobolli at the Roland Garros Stadium. Second seed Zverev is playing fourth Grand Slam final of his career, while 10th seed Cobolli is featuring in his first Grand Slam final. Both players are chasing their maiden Grand Slam title. The Andhra Pradesh government is launched the Yogandhra 2026, a statewide campaign aimed at promoting yoga and healthy living ahead of the International Yoga Day. The 14-day program will culminate on 21st of June with a grand International Yoga Day celebration in Amravati, where thousands of participants are expected to perform yoga together. The campaign seeks to encourage widespread public participation and raise awareness about the benefits of yoga. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia hold joint commission meeting in New Delhi, discuss comprehensive strategic partnership across key sectors, including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Karsiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। मीटिंग में दिफा, तिजारत, तवानाई और कनेक्टिविटी समेत कई अहम शोबों में जामे कलीदी शराकतदारी पर तबादले ख्याल किया गया। मगरबी बंगाल की हुकूमत दार्जिलिंग, मिरिक, करसियांग, कलमपोग और सिलीगुड़ी के हिमालय शहरों के तौर पर तरक्की देगी ताकि सियाहत और इलाकाई मईशत को फरोग मिल सके। जनूब मगरबी मानसून वस्ती मरकजी और पूरे शुमाल मशरकी खलीज बंगाल की तरफ मजीद आगे बढ़ गया है और भारत के पहलवानों ने मंगोलिया में उलानबातर ओपन में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक्किद हुई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के उनके हम मनसब सुगियोनो ने मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत की। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने अपनी जामे कलीदी शराकतदारी के तहत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के मौके पर तबादले ख्याल किया। इन शोबों में सियासत, दिफा, सलामती, समंदरी सरहद की सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी, अद्वियात साजी और हिफ्जान सेहत, डिजिटल कारी, तवानाई, कनेक्टिविटी, खला, तालीम, सकाफती मामलात और आवाम से आवाम के माबैन रवाबित शामिल हैं। दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी तबादले ख्याल किया। उन्होंने इलाकाई और कसीर सतही फोरम पर करीबी ताल्लुक और तालमेल कायम रखने के अपने

0: दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार, लेकिन इस बदलते

0: हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
2: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
3: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूँगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज़ और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से

0: बाहरी व्यक्ति जो सामान्य पत्रकार हो अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज़ रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज़ रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है। हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
2: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were
3: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
2: Crisp white kurtas, so wonderful people and great memories of that time.
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
4: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया, चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
5: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज, लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी, तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज़ के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूँगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को

0: समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
1: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
2: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
3: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
4: हर हंसी ख्वाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
3: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुत अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
4: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
5: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
1: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
2: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
6: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरि से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जय जी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी। हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला दे के उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पर तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल

0: लिखे गए, पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों की रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
2: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
1: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के, सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
0: 60, 70 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
2: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास याफ्ता रसूल को, याफ्ता रसूल ने, और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे वो चौकर ने है वहां पे पहुंच गया अब्बास। अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में, और ये खेल खत्म। भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
1: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
0: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
3: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना। लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए, या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए, या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए। इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया, पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। कि खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
1: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं, बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
0: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
4: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था, क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी, और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं, मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां भारत ने 326 रन बनाए थे। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
0: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स स्कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
1: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
5: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी। और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट टॉर्नामेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तम पुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
0: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
6: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का, सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
0: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
1: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
0: Sri M.V. Subbarayudu aur Srimati M. Jalajakshi ke putra Sri M.S.N. Murthy sangeet ke pariveesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jalajakshi swayam ek sangeet kalakar rahi hain. Aapne sangeet ki shiksha sangeet sahitya kala nidhi गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एमएसएन मूर्ति को वायलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एमएसएन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री एमएसएन मूर्ति's एक्सपोजर टू म्यूजिक बिगन अर्ली। हिज मदर श्रीमती एम जलजाक्षी इज अ वेटरन वोकलिस्ट। रिकग्नाइज्ड एज अ चाइल्ड प्रोडिजी, श्री एमएसएन मूर्ति ट्रेन्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ संगीत साहित्य कलानिधि श्री एनसीएच कृष्णमाचार्यलु। ही सर्व्ड आकाशवाणी विशाखापट्टनम एज अ स्टाफ आर्टिस्ट फॉर टू डेकेड्स। ए वर्सटाइल म्यूजिशियन, Sri M.S.N. Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri M.S.N. Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri M.S.N. Murthy has performed extensively in the country and abroad in various prestigious centers of art and culture and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri M.S.N. Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramana Murthy on the Mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the Ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.
0: विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति आज के कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं अठाणा राग में पुरंदर दास की रचना सकल ग्रह बल नीने से, जो कि खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति बिगिंस दिस इवनिंग्स कॉन्सर्ट विद अ कृति ऑफ पुरंदर दास। इट इज एन अठाणा रागम खंड चापू तालम।

0: एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। इन टुनाइट्स रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री M हरिबाबू ऑन द घटम। Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

पहला था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। That was Tanyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

अभी तक आप रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $9 अरब की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर $45 अरब तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।